प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

ವಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಶಶಾಂಕವನ್ನಿನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ. सावन प्रभात की इस पुण्य के बेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन. भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना कर रहे हैं. भगवान शिव की उपासना करते समय भगवान के सानिध्य में रहने वाले संपूर्ण गणों का भी पूजन और प्रार्थना की जाती है. कह रहे हैं कि नंदी स्वरो महातेजा नगेन्द्र तनयात्मजः सनारायण देवेकै देवेर नित्यमभ्यर्च वंदितः. जो गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, भगवान श्री विष्णु आदि देवताओं के द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर पुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं, सर्वशांत पुरद्वारी सार्धम परिजने स्थितः सर्वेश्वर सम प्रख्य सर्वासुर बिन विमर्दन, और समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं. ऐसे भगवान शिव के जो गण हैं, सर्वेषां शिवधर्माणां अध्यक्षं त्वेभिषेचितः शिवप्रियः शिवाशक्तः श्रीमच्छूलवरायुधः. शिवधर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय हैं, शिव में ही अनुरक्त हैं तथा त्रिशूल और नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, शिवाश्रिते सुसंसक्तस्त्वनुरक्तश्च तैरपि सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समी कामं प्रयच्छतु. ऐसे भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर भगवान शिव और माँ पार्वती की आज्ञा को सिरोधार्य करके, हे भगवान नंदीश्वर, मेरी मनोकामना को परिपूर्ण करें.

अभिरक्षितु, दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही और रक्षा करें। शिव प्रिय शिवाशक्त शिवयोरर्चक सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञा समे दिशतु कांक्षितम्। हे भगवान शिव के प्रिय, भगवान शिव में उनकी और आशक्ति है, वे सदा भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा में लगे हुए हैं, हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करें। ओम शांति शांति।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। गुणों के कारण ही प्रसिद्धि और आदर। कौशेयम मृगजम सुवर्णमुपलादम दुर्वापी गोलोमत पंखातारमणम शाशम शश्वातम अधिरवंद गोमयात काष्टादिक्तरहे फलादीपम मणि गोपर्तो रोचनाम प्रकाशम स्वगुणम देयम गुणनिधो गच्छते किम जन्मनान। रेशम कृमियों से उत्पन्न होता है, स्वर्ण पत्थर से, गौओं के गोमय से दुर्वा, चिड़िया में से लाल कमल, समुद्र से चंद्र, गोबर से नील कमल, लकड़ी से अग्नि, सर्प के फन से मणि और गाय के पीत से गोरोच

0: जीवन उत्पन्न होता है। इनका उत्पत्ति स्थान अच्छा न होने पर भी अपने गुणों के कारण से प्रसिद्ध और आदर पाते हैं। कौन जीवित ही मरे के समान, नेहम यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पयेत् न तीर्थम पदम सेवाय जीवन्नपि मृतम हिमसे। इस संसार में जिसका कर्म न तो धर्म के लिए होता है, न वैराग के लिए, और न तीर्थपाद भगवान के चरण सेवा के ही लिए होता है, वह जीते जी भी मरे हुए के समान है। जितेंद्र के लिए घर वन एक सा, भयं प्रवस्त्वं तवेनं प्रसाद यत्स आसते हर्षं तपल्लव जितेन्द्रियस्यातिं मरते भूदस्यः गृहांस्यत् किं तु करोम व्यदे। जो प्रसाद गृहस्थ है उसे वन में रहने पर भी पतन का भय रहता है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा सभी श्रोताओं का इस पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज मंडे 24 अगस्त श्रावण मास का चतुर्थ एवं अंतिम सोमवार है। चलिए इस पावन दिन में हम शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हैं।

शिव जी सती माता को भगवान श्री हरि की रसमयी कथा कहने लगी। उस समय दक्ष प्रजापति हुई। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया।

जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बर जाग, नेवते सादर सकर सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया

दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियां सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले।

0: आना। चलिए आज इसको यही विराम दें, कल इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नि देहि चित्ति दक्षः सुभगस्त्वमस्मे पोषं ऋणां मरिष्टितं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्याम्। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। वेद मास की श्रृंखला में आर्य सभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत मेरा यह लघु वक्तव्य इस प्रकार है। यह मंत्र ऋग वेद की दूसरी मंडल के पहले सूक्त का छठा मंत्र है। सफल और खुशी जीवन के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है वे सब इस मंत्र में गिनाई गई है। भक्त ने प्रभु को इंद्र शब्द से पुकार कर अपनी आवश्यकता की सूची प्रस्तुत की है। मांगा उससे जाता है जिसके पास आवश्यकता से अधिक याचित वस्तु हो। इसीलिए यहाँ पर इंद्र से याचना की गई है। इंद्र परम ऐश्वर्य है क्योंकि उसके पास ज्ञान बल उत्तम स्वास्थ्य और पैसा भी ऐश्वर्य है। लेकिन कभी कभी ये भी मनुष्य को दुखी बना देते हैं। किंतु संसार की ठोकरें खाने के बाद जब विशुद्ध विद्या का नेत्र खुलता है तो दुनिया बदलती दिखाई देती है। इसी पर भर्तृहरि मुनि ने लिखा है,

गत, अर्थात यह है, जब मैं बहुत जानता था तब मदोन्मत्त हाथी की भांति घमंड से अंधा हो गया था और अपने मन में यह समझता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। परंतु जब बुद्धिमानों की संगति में कुछ कुछ ज्ञान हुआ तब पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। उस समय मेरा अभिमान ज्वर की भांति उतर गया। परम ऐश्वर्य में उस ज्ञान को ही पुकारा जा सकता है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुड़ा दें। शक्ति भी वही होगी जो कष्टों का निवारण करें। इसी प्रकार धन रूपी ऐश्वर्य की वही होगा जो अभाव ग्रस्तों का पालन करें। प्रभु में ये तीनों प्रकार के परम ऐश्वर्य है, वही इंद्र है।

महानी द्रविनानी देही, तू मुझे श्रेष्ठ उत्तम अत्यंत पवित्र धार्मिक बना दे। द्रविनानी तू मुझे धनैश्वर्य दे, अधर्म और अन्याय पतन का कारण होगा मुझे ऊपर उठाना है। उदाहरण, दुर्योधन ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर पांडवों को भेंट में आई अपार संपत्ति को लोभ के वशीभूत होकर अन्याय से जुआ खेलकर हड़प लिया, किंतु वही अपार धन धनैश्वर्य उसके विनाश का कारण बना। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर वेद संदेश श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते।

सैकि नैकि नमिषताओ विचष्टि। अर्थ, महान शक्ति परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वप्रकाशक होकर अपने भक्तों की बढ़ती करता और समस्त संसार की सुधि रखता है।

तस्य रूपेणि मे वृक्ष हरिता हरितस्रज। अर्थ, ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वरक्षक प्रसिद्ध हैं, उसी की दया से यह हरे हरे वृक्ष आदि प्राणियों को फल आदि से सुखदायक होते हैं।

पश्यति देवस्य पश्य काव्यम् न ममार न जीर्यति। अर्थ, जो विद्वान दृढ़ चित से परमात्मा को प्रत्यक्ष जानता है वह कभी दुखी नहीं होता, उसका आत्मबल सदा बढ़ता रहता है, यह ईश्वर का नियम है।

महत अर्थ कारण शून्य परमात्मा ने वेद द्वारा सत्य धर्म का उपदेश किया है और वे वेदवाणी परमात्मा का ही यथावत ज्ञान जनाती हैं।

0: चतुष्पदे।
1: हे अन्न का स्वामी परमेश्वर, हे अन्न स्वरूप भगवान, हे अन्नदाता, जगत के सारे पदार्थों का आप ही स्वामी हैं। आपकी कृपा से सबको अन्न प्राप्त होता है। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा खाया हुआ अन्न हमारे स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। संसार में अन्न उपजाने वाला एवं अन्न दान करने वालों की सदा उन्नति हो, उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो। दो पैर और चार पैर वालों को अर्थात मनुष्यों और पशुओं का जीवन अन्न से भरपूर हो, वह भक्षण करने योग्य अन्न प्रतिपल ऊर्जा देने वाला हो।

0: मनुष्यों को उचित है कि वह अपने रथ रूपी शरीर तथा रथवाहक इंद्रियों को बलवान बनावे। निर्बल इंद्रियों वाला मनुष्य अपने कार्य भली भांति नहीं कर सकता, परिणाम स्वरूप वह दूसरों के सहारे रहता हुआ दूसरे प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी दुर्बल देह वाले को परिवार के लोग भी उपेक्षा व घृणा के दृष्टि से देखते हैं, इसलिए अपने साथ साथ अपनी संतानों की शारीरिक दशा का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान बल का दाता है, बल एवं सामर्थ्य उसी से मांगना चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना उपासना से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है।
1: ओम अधीतिरध्यगादयम् अधिजीवपुरा अगंशतम् यस्य भीषजः सहस्त्रम् उत विरुधः।
0: जीवात्मा अनेक योनियों को प्राप्त करती हुई सुख दुख रूपी फल को भोगती है। उनकी यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। वे अपने कर्म के अनुसार अनेकों देह प्राप्त करती हुई जन्म मरण के बंधन में आती है। देह भवसागर को पार करने के लिए मात्र साधन है। जिस प्रकार दुखी पुरुष के रोग को दूर करने के लिए वैद्य और सैकड़ों औषधियाँ व जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसी प्रकार जन्म मृत्यु दुख को समाप्त करने के लिए ब्रह्म उपदेशक सच्चे गुरु सच्ची भक्ति और वेद ज्ञान रूपी औषधि की आवश्यकता होती है।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज सोमवार 24 अगस्त 2026 के प्रातःकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए एससी परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंता बढ़ा रही है। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा, जबकि गणित में केवल 37% छात्र ही पास हुए। स्थानीय सरकारी पाठशाला का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग प्यार से जैन के नाम से जानते थे। स्थानीय के इस बेटे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार जयन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। गोशवा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया है। मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी पर उसने कहा कि उसको शैतानी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसके कारण ये हत्या उसने की। और बच्चे का शव अभी अस्पताल भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, जबकि जांच जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसतन पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची। सब्जियों के दाम में गिरावट खास तौर पर तेजी रही, जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में उपभोक्ताओं को भी सब्जियाँ सस्ती मिली। आज सोमवार दोपहर 12 बजे से काजिनो दे मोरिस के कुछ कर्मचारी और उनके यूनियन प्रतिनिधि राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। करीब 600 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि काजिनो के संभावित टेकओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया के बाद से उन्हें अब तक आगे की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। सरकार डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर रही है और सरकारी पोर्टल तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइटों को एक ही स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी है। 21 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस पहल पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक आधुनिक तथा एकीकृत और नागरिक केंद्रित बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया है। जहाज पर सवा 24 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि 22 अन्य की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर एक कमज़ोर दबाव का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा, सिवाय दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल विकसित होंगे और अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। शाम के समय पश्चिम, उत्तर पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी और बाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और देर रात में

0: पूर्व तथा ऊंचाइयों पर थोड़ी देर के लिए वर्षा होगी। हवा हल्की बहेगी सुबह के समय तथा रात के दौरान पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटू पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग इसके मजमून जाहिर होने के मंतजर हैं? जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे, भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो न करें बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे इनसे सब

किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से आजीजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना, और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है।

और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हांक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीजा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है, और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करती हैं।

हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी बरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। फरमाया, ऐ कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैरखाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो।

से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए, मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे।

और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूं।

और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ।

हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे

हमारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं।

और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो सालेह ने कहा कि ऐ कौम अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजजा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोजजा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा।

0: और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो।
1: सदकल्लाहुल अजीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। मौज़े सामेईन, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसका देखना भी इबादत है, इसका छूना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, सुनना और सुनाना भी इबादत है, इस पर अमल करना भी इबादत है और इसका हिफ्ज़ करना भी बहुत बड़ी इबादत है।

ताकि आपको मालूम हो कि उन्हें फ़कत हुजूर से मोहब्बत नहीं, हुजूर सलाम की हर निस्बत से मोहब्बत थी। वो हुजूर के हर निस्बत का हया करते, हुजूर की हर निस्बत की इज्जत करते और उससे अपनी अकीदत का इजहार करते। उनमें से एक रिवायत ये भी है जो इसाबा में है। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शिफा बिन्त अब्दुल्ला को बुला भेजा। वो आई तो देखा कि आतिका बिन्त उसैद पहले से मौजूद है। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों को एक एक करके चादर दी, लेकिन शिफा की चादर कम दर्जे की थी, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं आतिका से ज़्यादा क़दीमुल इस्लाम हूँ और आपकी चचाज़ाद बहन हूँ। आपने मुझे ख़ास इस गर्ज़ के लिए बुलाया था और आतिका तो यूं ही आ गई थी। बोले, मैंने ये चादर तुम्हारे ही देने के लिए रखी थी, लेकिन जब आतिका आ गई तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत का लिहाज करना पड़ा। ये है फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अज़ीम लिहाज। इसलिए हम कहते हैं कि जो तारीख़ ने ग़लत मनगढ़ंत बातें उनकी तरफ मंसूब किए, जो बहुत बड़ा ज़ुल्म है उस अज़ीम मोहसिन पर, उस पर ध्यान न दें। जो सही रिवायात सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की हैं अहले बैत से मोहब्बत, उनके अदब, उनकी इज़्ज़त और एहतराम की, उन रिवायात को माने और उन पे फोकस करें। हज़रत हिंद बिन अबी हाला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे। सिर्फ इतना ताल्लुक से कि हुज़ूर सलाम ने उनकी परवरिश फरमाई। जब उनके बेटे का बसरा में ताऊन की बीमारी से इंतकाल हुआ तो पहले उनका जनाजा नहायत ही गुर्बत की हाल में उठाया गया। उस हाल को देखकर एक औरत ने पुकार के कहा कि वाह हिंदा, वाह हिंदा, इब्न रबीब रसूलिल्लाह। बस ये सुनना था कि लोग अपने मुर्दों की तजहीज़ व तकफीन छोड़कर उनके जनाजे में शामिल हुए, यानी हुजूर सलाम की इस निस्बत का उन्होंने इतना लिहाज किया कि अपने मुर्दों को कफनाना दफनाना छोड़ा और फ़कत इस निस्बत के खातिर उनके जनाजे में आकर शामिल हुए। कबीला बनू ज़हरा में चूँकि हुजूर सलाम के ननियाल थे, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु इस कबीले के पास खातिर का नहायत लिहाज करती। चुनाचे वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से नाराज़ हुई तो उन्होंने इसी कबीला के चंद बुज़ुर्गों को अपना सिफारिशी बनाया। उन्होंने सिफारिश की, अहले बैत के अलावा सहाबे किराम हुज़ूर इस्लाम के ख़ास दोस्तों की बहुत इज़्ज़त करते, उनसे मोहब्बत करते।

0: जिनसे हुजूर को मोहब्बत थी, जिनको हुजूर सलाम इज्जत की निगाह से देखते, तो सहाबा भी उनसे मोहब्बत करते, उनको इज्जत की निगाह से देखते। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उसामा का अतिया 3,500 और अपने बेटे रदी अल्लाह तआला अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु का 3,000 मुकर्रर फरमाया। तो बेटे ने एतराज़ किया कि आपने उसामा को मुझ पर क्यों तरजीह दी, वो तो किसी जंग में मुझसे आगे नहीं रहे। बोले, जैद तुम्हारे बाप से अल्लाह के रसूल को ज़्यादा महबूब थे और हुजूर सलाम उसामा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मैं अपने महबूब पर हुजूर के महबूब को तरजीह देता हूँ। देखें, ये है सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर सलाम की नस्बत से हज़रत उसामा से मोहब्बत। तो जब उनसे मोहब्बत का आलम यह है, तो फिर अहले बैत से हसनैन करीमैन से उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक उनकी तरफ मंसूब किए गए, फारूक आज़म की तरफ मंसूब किए गए मन गढ़त वाक़ियात से इस उम्मत को पाक फरमाए। अज़ीम आशिक़ रसूल थे, अज़ीम आशिक़ अहले बैत थे, हुज़ूर सलाम की हर हर नस्बत का ख़्याल फरमाते, हर हर नस्बत का लिहाज फरमाते। लेकिन बहुत से उनके मुकाम रुतबे से नावाकिफ लोग, बहुत से उनके दुश्मन मुखालिफ वो हुए और हैं, जिन्होंने उनकी तरफ नामुनासिब रिवायात मंसूब की, मौजू और मनगढ़त तारीख़ी वाक़ियात मंसूब किए, जिनसे उनका दामन पाक है, साफ़ है। उनकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरणें पूछती हैं। अल्लाह पाक हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम से, सहाबा से, आले बैत से और हर नस्बत मुस्तफ़ा से वालिहाना अकीदत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे जुमा मस्जिद पोर्टलुइस के खतीब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। मोहतरम सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र बुर्दबारी की सिफ़ात नबूवत की अजीम तरीन सिफ़तों में से हैं। हदीस पाक में है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़ाती मामला और मालो दौलत के सिलसिले में किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर उस शख्स से जिसने अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ को हराम करार दिया तो उससे अल्लाह ताला के लिए बदला लिया। मौज़े सामेईन, आइए समात फरमाइए एक ऐलान। मंगल यौमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सुबह के 9:10 से दिन के 11:10 तक आप सुन पाएंगे आलिमिया कॉलेज हाईलैंड से बराह रास्त लाइव ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा अशद व सख्त सब्र ग़ज़वा उहद में था कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगो मुकाबला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तरीन रंजोलम पहुँचाया, मगर आपने उन पर न सिर्फ सब्र फरमाया बल्कि उन पर शफ़क़त व रहम फरमाते हुए उनको उस ज़ुल्म व जहल में माज़ूर गर्दाना और फरमाया, तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरी कौम को राह रास्त पर ला क्योंकि वो जानते नहीं।

हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना डराया धमकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया, और अल्लाह की राह में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया गया, और एक दफ़ा 30 रात दिन मुझ पर इस हाल में गुजरे कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई चीज़ ऐसी ना थी कि कोई जानदार खा सके, सिवाय उसके जो बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बगल के अंदर छुपा रखा था। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। मौज़े सामेईन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: नमस्ते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आज के इस प्यारे से पावन दिन के लिए और आप सबका साथ जुड़ने के लिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, रेडियो मनोरंजन पर RM3 पे आप ही के भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के साथ। भक्तों, आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही भावुक है। पूरा एक महीना हो गया श्रवण मास को और हम सब मिलकर महादेव की भक्ति कर रहे हैं। किसी ने जल चढ़ाया होगा, किसी ने बेलपत्र रखा होगा और मन से पुकारा होगा। ये जो आखिरी दिन है, इसको कह सकते हैं हम छोटी सी प्यारी सी, कितनी कांवड़ हमने देखी, कितने शिवरात्रि वाला जैसा माहौल बना यहाँ पर। और सब लोग अपने अपने लिए बहुत कुछ मांगने गए उस परमात्मा से, उस प्रभु से, उस शिवा से और सभी देवी देवताओं से कि सबको भक्ति और शक्ति दीजिए। तो आज बस हमें और कुछ नहीं उनको कहना, आज बस सिर्फ महादेव को एक ही शब्द कहना है कि महादेव, आपने बहुत कुछ दिया, आप बहुत कुछ देते रहते हैं और आगे भी देंगे। इस सब चीज़ों के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलो चलो शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम आप सब के लिए। ओम नमः शिवाय।
1: RM3 Radio.

0: 11:09 हो चुके हैं भक्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम भक्ति में शक्ति के साथ और मैं इस समय हूँ आपके साथ पूनम। भक्तों जब हम पूजा करते हैं तो अक्सर सिर्फ मांगते हैं परमात्मा से, ये नौकरी दे दो, ये रिश्ता ठीक कर दो, ये मुझे चीज़ें चाहिए, घर चाहिए, बस ये तकलीफ हटा दो। गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने परमात्मा से, अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? महादेव को भी अच्छा लगता है, पर जब उनसे हम बात करते हैं, लेकिन भक्तों आप ज़रा अलग तरीके से सोचो। आज बस इतना करो, महादेव को जो कहना है आपको सिर्फ इतना कहना है कि परमात्मा आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो आप आगे देंगे उसके लिए भी धन्यवाद। बस यही काफ़ी है भक्तों। जानते हो सबसे बड़ी पूजा क्या है? जब आप बिना मांगे बिना शर्त के सिर्फ धन्यवाद कहते हैं तब महादेव सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो बिना मांगे धन्यवाद करता है उसे भगवान भी देखते हैं। भगवान कहते हैं इसको मांगना नहीं आता, इसको पता ही नहीं मांगते कैसे हैं, तो मैं इसका पिता हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है इसको देने का। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा के सामने झोली ज़रूर फैलाओ पर मांगो मत, उसका इच्छा होगी वो ज़रूर देगा।
1: RM3 Radio.

भक्त 11:16 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं आज भक्ति में शक्ति की। जब हम बच्चे थे हमारी माँ को पता होता था हम सुबह उठने से पहले क्या खाएंगे। उठते ही हमें इधर उधर भागते थे और हमको सब खाना तैयार मिलता था। हमने मांगा नहीं था पर वो पहले से तैयारी होती थी क्योंकि माँ जानती है बिना बिताए बिना मांगे बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना। ठीक वैसे ही शिव जी और माँ पार्वती हमारे सबके बड़े माता पिता हैं। वो जानते हैं किस उम्र में हमें क्या चाहिए, कब दर्द देना है और कैसे सहना सिखाना है, कब खुशी मिलेगी और इनाम देना है। हम सिर्फ भरोसा रखें, वो सबसे पहले जानते हैं हमारे पास किस चीज़ की कमी है। भक्त जब ज़िंदगी में कुछ ना मिले तो ये सोचो भगवान ने भुला दिया, बस ये सोचो माँ अभी कुछ बेहतर बना रही है। इंतज़ार रखो, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बना के देगी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। और हर उम्र में सब कुछ अच्छा ही मिलता है, माँ कभी भूलती नहीं। उसी तरीके से पिता जो होते हैं वो भी जैसे राशन लाते हैं, जब सामान लेकर आते हैं घर में उन्हें पता होता है बच्चों का पसंद की चीज़ क्या है, हर चीज़ वो ला के रखते हैं। आप कितने भी छोटे हों, आप कपड़े हों, आपके खाने पीने की चीज़ें हों, आपके खेलने कि कुछ खिलौने हो, या आपके लिए कहीं पर बाहर ट्रैवल कराना हो, या आपको पढ़ाई के लिए कहीं भेजना हो, पर सबसे पहले बस वो देखते हैं कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं।

भक्तों 11:24 हो चुके हैं और सबसे बड़ी और सबसे प्यारी सी बात हमने आपसे करनी है। भगवान को हमसे क्या चाहिए? बड़ा मंदिर, महाप्रसाद, लंबे लंबे मंत्र नहीं। शिव जी और माँ पार्वती को बस ये चाहिए, जो माता पिता चाहते हैं वो करो, उनकी सेवा करो, उन्हें खुश रखो, जिंदगी को खूबसूरती के साथ जियो, रोज कुछ अच्छा करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने लिए कुछ अच्छा सोचो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो। यही असली भक्ति है, यही शिव पार्वती की सच्ची पूजा है। भक्तों, आश्रवण मास के आखिरी दिन एक वादा करो अपने आप से, प्रभु अगले साल जब सावन आए मैं सबसे बेहतर इंसान बनकर तुम्हारे सामने आऊं। मेरे में बहुत गलतियां होंगी पर मुझे गिरने मत देना, मुझे कहीं ना कहीं से संभाल लेना, मुझे ऐसे लोग देना, मुझे ऐसे परिवार का साथ देना, जो मेरे साथ नहीं भी है उनको भी मेरे साथ खड़ा कर देना, और मैं तेरे सामने आके बस इतना कह सकूं कि इंसान बहुत अच्छे हैं, इंसान सबका ख्याल रखते हैं। यही माँ पार्वती और भोलेनाथ का प्यार हम सबको मिलता रहे, मैं आपको यही कहूँगी। और उसके बाद मेरे बाद आपको मिलेगा साथ डेविड का। मुझसे पहले थी अमृता जी आपके साथ और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम करती हैं, तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप भी डेविड का साथ दीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, और आप सबको हर हर महादेव। RM3 Radio.

0: सुनते हैं समाचार राशिता के साथ नमस्कार
1: नमस्कार गिरी शाश्वतों को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए एससी परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंताजनक हैं। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी इंश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के अनुसार 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा, जबकि गणित में केवल 37% छात्र ही पास हुए। स्थानीय सरकारी पाठशाला का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कताई के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग प्यार से जैन के नाम से जानते थे। स्थानीय के इस बेटे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार। जैन कताई ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। घोषबा में सात महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया है। मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि जांच जारी है। पता चला है कि उसकी मां के साथ ही 30 वर्षीय जॉन डैनियल पिरिन घर में आया। कुछ देर बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद मां बच्चे को देखने कमरे में गई, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। काफी तलाश करने के बाद उन्हें कपड़ों के ढेर के बीच एक चादर गांठ लगी हुई मिली। चादर खोलने पर बच्चा उसके अंदर खून से लथपथ हालात में मिला। वह सांस नहीं ले रहा था और उसकी दाहिनी जांघ पर कट का निशान भी दिखाई दिया। घबराई हुई मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें पूरा संदेह है कि उनके साथी डैनियल पिरिन ने उनके बच्चे की हत्या की है। हम आपको याद दिला देते हैं कि मौके पर पहुंचे पुलिस डॉक्टर ने बच्चे की मौत की पुष्टि की। मामले की जांच अभी जारी है और आपको ये भी हम याद दिला देते हैं।

0: हैं कि इस शिशु का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और उसके पिता पर कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है। अन्य खबरों में स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसतन पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची। सब्जियों के दामों में गिरावट खास तौर पर तेज रही, जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार या सुपर मार्केट में उपभोक्ताओं को भी सब्जियाँ सस्ती मिली है। और चलते चलते हम आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि इस 7 महीने के शिशु के हत्या के मामले में लैंगिक समानता मंत्री आर्यन नवो मारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस हत्या को बहुत दर्दनाक बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर कानून सख्ती से लागू किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया है, जहां पर सवार 24 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि 22 अन्य की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं फ्रांस में 19 जून से अब तक डूबने की घटनाओं में 301 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की एक मंत्री ने बताया कि पिछले साल की तुलना में मौतों में हुई इस तेज बढ़ोतरी का सबसे लंबे समय से जारी हीट वेव से है। फ्रांस के खेल और युवा मंत्री ने बताया कि मौतों का ये आंकड़ा 2025 की तुलना में 14% अधिक है। फ्रांस, स्पेन और इटली इन दिनों भीषण गर्मी की लहरों की चपेट में है। इन गर्मी की लहरों के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी है, जिससे हजारों हेक्टेयर जमीन भी जल चुकी है। कई जानलेवा हादसे ऐसी जगहों पर हुए हैं जहां तैराकी के लिए अनुमति नहीं है या जहां निगरानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुनते हैं शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मोसलमान सेनविल रिवियर दी एंगुमे लो नंबर 1 मोसलमान सेनविल रिवियर दी एंगुमे 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्री जगमाया बोगा पुताना जिन्हें नायडू के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3 बजे उनके घर रिवियर दी एंगुमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ताया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टू दिया 3 PM रॉयल रोड लालूगा सैंपिया में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री अमिताभ दुर्जन जिन्हें माचिंगो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर लालूगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टू दिया 2 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

12:16 हो चुके हैं दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन और नमस्कार सभी को। दोपहर आ गई और साथ में आ गई मैं कुछ जाने पहचाने नगमे लेके। पहले आप बताओ सब कैसे हो, सब ठीक हो, इंजॉय कर रहे हो इस प्यारे से दिन को। दिन की शुरुआत वीक की जब मंडे को होती है बहुत ही अच्छी लगती है। और कहते हैं ना कि जब भूले बिसरे गाने और वो धुनें चलती हैं, जब थोड़ा सा ये टाइम दोपहर का होता है जहाँ पे थोड़ा सा सुकून चाहिए, वहाँ पर आ जाते हैं हम आपके लेके बंडल में बहुत सारे गाने। तो मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो जो कर रहे हैं करते रहिए, घर के काम हो, ऑफिस के काम हो, ड्राइव कर रहे हो करते रहिए, पर हमारे साथ जुड़े रहिए। सुहाना सफ़र आपका प्रोग्राम है और यहाँ पर आ गए हम लेकर आए हैं बहुत सारे गाने। अगर आपको भी आपकी कोई फरमाइश है या कोई स्पेशल डेडिकेशन है, कोई विशेज़ हैं किसी के लिए दिल से जो निकलती हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे 5250620 पर। और थोड़ी देर में हम लाइंस ओपन करेंगे, आप तब हमें कॉल भी करके अपनी फरमाइश, अपनी बातें गप्पे शप्पे कर सकते हैं 4028070 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने। RM3 Radio.

0: 12:31 हो चुके हैं दोस्तों। कहते हैं ना, हर खुशी के लिए कोई कारण ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। ऐसा किसने कहा कि कोई कारण होना चाहिए? कभी कभी किसी का खाना अच्छा सा पेश कर दो सामने, किसी के एक अच्छा सा गाना चलवा दो, या किसी के लिए एक स्पेशल सा मैसेज कह दो कि प्लीज़ ये चला दीजिएगा, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब अपने लोग अपने दिल की कोई बात कहते हैं किसी को, तो एहसास होता है हाँ भाई कितनी इंपॉर्टेंस है उस इंसान की हमारी ज़िंदगी में। तो चलिए इसी साथ में एक प्यारा सा मैसेज ले लेते हैं। एक दो सीता जी साथ दे रही हैं, उनके देवर के बेटे केविन राम भुजन जी, जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, निशा जी के साथ में उनकी प्यारी चारों बेटियों को भी विश कर रही हैं और कह रही हैं तुम चार बेटियां हो इस परिवार में और तुमने इतना प्यार दिया है। और हम तो यही कहते हैं कि सीता जी आपने ये मैसेज जो किया है ना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। किसी ने किसी को याद रखा, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम भी यही कहेंगे, हमेशा खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को। कुछ स्पेशल गिफ्ट हो तो ज़रूर दिलाइएगा अपनी वाइफ को। और वाइफ को ये नहीं हम कहते कि भाई तुम मत दिलाओ, सिर्फ एक्सपेक्ट करो कि सिर्फ आपको मिलेगा। एक आप भी उनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट ले लीजिएगा। गिफ्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं किरण पुरी जी, साथ दे रहे हैं कनाडा से, इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से। और उसके साथ में हमारे एक बहुत प्यारी दोस्त हैं वीना जी, नोबल फोन से साथ दे रही हैं और प्यारे प्यारे से गानों की फरमाइश कर रही हैं। किरण जी, जब भी आपका मैसेज आता है मुझे एहसास होता है कि आप कितना पुराने गानों को पसंद करते हैं। तो जब गाने इनको पसंद कर रहे हैं तो अपने गाने की फरमाइश भी बतानी चाहिए थी। तो कहाँ है, अपनी फरमाइश को भेजिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: 12:44 हो चुके हैं दोस्तों। ये गाने जो है ना, एक खुशबू की तरह होते हैं, बस ऐसे ही फैलते चले जाते हैं और एहसास दिलाते हैं कि हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है। कई सिंगर्स ने उस ज़माने में गाने गाए, वो सिंगर्स नहीं रहे पर उनकी आवाज़, उनकी यादें, उनके वो एक्शंस, चाहे वो एक्टर के रूप में आए, चाहे वो सिंगर्स के रूप में आए, जब वो एक्टर्स को आवाज़ देते थे तो खुद भी कई बार स्टूडियो के अंदर एक्शंस करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कौन सा एक्टर किस तरीके के स्टाइल कर सकता है, किस तरीके की बातें कर सकता है। और जब वो गाने उसी तरीके परफॉर्म किया जाता था तब एहसास होता था हाई, ये सिंगर्स में और एक्टर्स में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे उस ज़माने के जो लेजेंडरी एक्टर्स हों, जैसे किशोर दा, बहुत ही खूबसूरत उनकी ज़िंदगी रही और कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके सब सबके लिए गाया, आज भी वो एकदम फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स जैसे लगते हैं गाने, क्योंकि उनके अंदर इतनी चीज़ों की एक फ्रेशनेस आज भी महसूस होती है। तो इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सुरेश शर्मा, साजदा जी साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फूलवंती जी, जैसे सच में फूलवंती जी की आवाज़ इतनी प्यारी है कि फूलों जैसी ही लगती है मुझे। परी जी साथ दे रही हैं और कई दो बार तो मुझे लगा कि मेरी परी है, यानी कि आरजे परी। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं जान, मैं हूँ, मेरा नाम परी है। तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि आपका नाम परी है, आप परियों जैसी ही हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। इस समय बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, हम लेंगे एक एक करके। पर ये जो गाना है ना, स्पेशली बहुत ही खूबसूरत गाना है किशोर दा की आवाज़ में, और आर डी बर्मन ने बनाया था ये, तो इन्जॉय कीजिए इस गाने को।
2: RM3 Radio.

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। 12:56 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम सुहाना सफर के साथ, और इस समय हूँ मैं आपके साथ पूनम। आप जानते हैं 50s की बात करें, 60s, 70s, 80s में तब तो ऑटोट्यून नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में महीनों लग जाते थे एक ट्यून बनाने के लिए, महीनों लग जाते थे एक तरंगों को इकट्ठा करने के लिए, फिर उसके आवाज़ के हिसाब से ही उस सिंगर को ढूंढना, फिर उसके हिसाब से ही उस एक्टर के साथ में वो काम करना, और महीनों महीनों सालों सालों तक स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना, फिर एक एक एक्शन के ऊपर काम करना, और फिर कॉस्ट्यूम की बात आए तो खुद ही लेकर आना पड़ता था एक्टर्स को, कभी प्रोडक्शन हाउस नहीं देते थे और वो इकट्ठे करने उस ज़माने में सब लोग घर में ही बनाया करते थे, इतने टेलर्स नहीं होते थे, इतनी चीज़ों का एहसास और पता नहीं था। तो ये था हमारा वो टाइम जहाँ पे उन लोगों ने अपना नाम बनाया, अपना हमको वो एक स्टाइल दिया, चाहे उन्होंने वर्ल्ड के कहीं से भी कॉपी किया पर हमारे पास हमारे कहीं ना कहीं से तो उन्होंने वो चीज़ें लेकर आए जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा चेंज आया। ये उन्हीं के दिन है और हम यही कहेंगे जो भी जैसे भी समय हमने गुजारा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा, इंजॉय कीजिए गानों को, साथ में थोड़ी सी बातें शातें होती रहेंगी, उसके बाद न्यूज होगी और उसके बाद लेंगे हम आपके मैसेजेस।
1: RM3 रेडियो।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार गिनीशा. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. एक नन्ही सी जान जिसका जीवन अभी भी शुरू हुआ था और अब वो नहीं रहा. कल रात खुशबुआ में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला. हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है. उसे कल रात ही पोटवी नोफ की CID ने गिरफ्तार किया. जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकार किया कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया. उसने कहा कि उसे उस वक्त शैतानी आवाज़ें सुनाई दी और उसने ये भी स्वीकारा कि उसने ड्रग्स लिया हुआ था. कटर को जब्त किया गया है. आज सुबह जीतु अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया. कल बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा. हथियारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया है. बच्चे की मां ने पुष्टि की है कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री यागया नवामाही ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि जाँच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा. मॉरिशस के खेतीहरों ने अप्रैल से जून के बीच अपनी फसल कम कीमत पर बेची है. ये जानकारी इस वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी कृषि पैदावार पर आधारित रिपोर्ट में सामने आई है. और सब्जियों के मामले में कीमतों में गिरावट 2026 के पहले 3 महीनों की तुलना में कई अधिक रही. उदाहरण के लिए गाजर की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है. खेतीहरों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की कमी आई है. ठंड के मौसम को इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है जिस वजह से फसल अच्छी रही. विदेश की खबरों में इन दिनों चीन में कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको वापस बुलाया जा रहा है. इसका कारण उसका हैंडल है. खासकर टेस्ला गाड़ियां जिसके दरवाजे के हैंडल में कई समस्याएं हो रही हैं. इस बीच इस समस्या को जल्द ही सुलझाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज में 60 साल के 60 इयर्स ओल्ड के श्री ईश्वरदत्त श्यामलाल जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके भाई आनंद कुमार श्यामलाल के मकान नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM. रॉ रोड लालोहा सेंट पियर में 48 साल के 48 years old के श्री अमिताभ दुर्जन जो मातेंगो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान

0: अनहुत होया ललोहा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 पीएम। लॉट नंबर एक मोसेलमान सैनविल रिविया दे जांगी में, लॉट नंबर एक मोसेलमान सैनविल रिविया दे जांगी में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जगमाया बोरापुताना, श्री जगमाया बोरापुताना जो नायडू के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके मकान लॉट नंबर एक मोसेलमान सैनविल रिविया दे जांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 पीएम। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम सुहाना सफर के साथ। इस समय आप सुन रहे थे आशा भोंसले और अनवर की आवाज़ में सोनी मेरी माही सोनी। क्या गाना है, मतलब जो इसके बीट्स हैं, जो इसका ढोल है, नगाड़े हैं और जो तरंगे हैं उठती हैं, दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश कर देती हैं। तो ऐसे बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इंजॉय कीजिए, अपने जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयश्री जी और एक

0: कह रही हैं उनकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती हैं अपनी मामा को खुश करना, तो हम भी बिल्कुल चलाएंगे उनके लिए वो प्यारा सा गाना जिससे आपकी मम्मी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाए और हम भी कहेंगे जल्दी से आप ठीक हो जाओ और ये सब टेंशनें बिल्कुल मत लो, आराम से इंजॉय कीजिए गानों को। बाबू अनंतवा जी भी साथ दे रहे हैं और एक तरह से गाने की फरमाइश की है और अपने पूरे परिवार को कहना चाहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहो। क्या बात है, सच बात है। देवयानी जी साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं गानों को और ये अगला गाना है, बहुत देर से वेट कर रहे होंगे हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त, ये उनको पता चल जाएगा जिनके लिए मैंने ये गाना चलाना है। कहाँ गए हमारे हमारे हमारे किरणपुरी जी। किरणपुरी जी आपका गाने की फरमाइश बहुत देर से थी, ये आपके लिए।
1: RM3 रेडियो।

0: सुहाना सफर।
1: 1:29 हो चुके हैं। हमारे ऐसे लिसनर्स भी हैं जो छुप छाप कहीं ना कहीं सिर्फ रेडियो ऑन करते हैं और सुनते रहते हैं, और चाहे वो खेतों में काम कर रहे हों, चाहे धूप कड़कती धूप हो, चाहे बारिश हो, कहीं ना कहीं वो बस कहते हैं गाने चलते रहें, किसी का साथ मिलता रहे, आराम से ऐसा एहसास होता है कि कोई बात कर रहा है। और क्योंकि वो इतने अकेले उस समय होते हैं, क्योंकि अपने आप में इतने मसरूफ़ होते हैं, उनको बीज देखना है, उनको पानी देखना है, उनको देखना है कि कैसी ग्रोथ हो रही है, तो ये सब चीज़ें जब इम्पॉर्टेंट होती है उन खेतों के लिए, उन किसानों के लिए, सबसे अच्छी बात होती है और बड़ी बात होती है। तो हम उनको कहते हैं, अगर आप टाइप भी नहीं करते, हमें कोई मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें खाना देते हैं, आप हमें रोटी पानी देते हैं, इसलिए हम तो आपको बस यही बोलेंगे कि आप हमारे स्वामी हो। तो चलिए भाई, स्वामियों के लिए एक प्यारा सा गाना चलाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर गाने हमने अपनी लिस्ट में रखे हुए हैं। अभी भी हमारे पास 10 मिनट के लिए गाने के लिए 2 गाने हैं। हम किसी के गाने ले सकते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर।
2: RL Free Radio.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: एक बजकर 1:40 हो चुके हैं दोस्तों और सुहाना सफ़र चल रहा है। ये प्रोग्राम आपकी पसंद के गाने भी चल रहे हैं, कुछ मेरी पसंद के भी गाने चल रहे हैं, पर हम आपको ये बोलते हैं कि जब ये दोपहर का टाइम होता है ना, इस टाइम में कुछ ऐसे खाया पिया कीजिए जो आपकी हेल्थ को अच्छा करे। कई बार ऐसा होता है कि जो मिलता है, जो रेगुलर बनता है, वही हम खाते हैं और हम जब कोई बात होती है तो कहते हैं अरे हमने खाया तो था। अरे नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी जैसे दोपहर है, आप थोड़ा सा ग्रीन टी पी लीजिए, थोड़ा सा लस्सी पी लीजिए, थोड़ा सा कुछ नींबू पानी पी लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और ये टाइम ही है ये चीज़ें करने का। दही खा लीजिए, पर कई बार हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वही चीज़ें रात को खाते हैं। तो ये चीज़ें रात के लिए नहीं बनी है, दोपहर के लिए बनी है, और अगर भूल जाते हैं तो इसलिए हम आपको याद दिलाते हैं कि ये चीज़ें करते रहा कीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हर सेहत है तो सब कुछ है। और ये गाने और ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, पर आपकी जो खुद की जो ज़िंदगी है इसको ऐसे ही नहीं चलाना, इसको खूबसूरती से चलाना है। तो ये गाने बहुत ही प्यारे प्यारे चल रहे हैं आपकी पसंद के, तो हम आपको इतना ही बोलेंगे। जो नेक्स्ट सॉन्ग आएगा SP बाल सुब्रमण्यम का, बहुत ही प्यारी सी आवाज में है, एंजॉय कीजिएगा।
2: RM3 रेडियो।

0: आज आरएम टू और आरएम थ्री की पहली सालगिरह है। आप सभी लिसनर्स के प्यार और साथ ने इस एक साल को खास बनाया। दिल से धन्यवाद और हैप्पी एनिवर्सरी टू आरएम टू और आरएम थ्री। तो हम भी कहेंगे आपको आरएम टू और आरएम थ्री की तरफ से बहुत सारी विशेष। तो दोस्तों, आज का सुहाना सफर यहीं तक, आपका साथ मिला बहुत अच्छा लगा और इसके बाद आप सुन पाएंगे संस्कृति की बातें। जो बने रहिए आरएम थ्री रेडियो मनोरंजन के साथ। मेरी तरफ से बाय बाय।
1: आरएम थ्री रेडियो। अरे

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक दोपहर के 2 बज रहे हैं।
4: निशा सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। एक नन्ही सी जान जिसका जीवन अभी शुरू हुआ अब नहीं रहा। कल रात खुशबुआ में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला। हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है। उसे कल रात ही पोटलिनोव की सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकारा कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया। उसने कहा कि उसे कुछ शैतानी आवाज़ें सुनाई दी थी। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने ड्रग्स लिया था। कटर को जब्त किया गया है। आज सुबह जीतू अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया। कल बच्चे का अंतिम संस्कार होगा। हथियारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया। बच्चे की मां ने पुष्टि की कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था। इस भयावह वारदात पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री याहिया नवामाही ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा। श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में गंगा तलाव में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर गणेश पंचमुखी मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजा का आयोजन किया गया। डिवाइन म्यूजियम में इसका निर्माण किया जाएगा। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गोविंद के अनुसार अगले साल महाशिवरात्रि पर्व तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। विदेश में सूखे के कारण सोमालिया में नया मानवीय संकट पैदा हो गया है। विश्व खाद्य फेडरेशन के अनुसार ये दुनिया के सबसे गंभीर खाद्य संकटों में से एक है। सोमालिया में वर्तमान में 60 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जो अफ्रीका के इस देश की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई भाग है। इनमें से करीब 20 लाख लोग आपातकालीन स्तर की गंभीर भूख से जूझ रहे हैं। ये संकट बार बार आने वाले जलवायु संबंधी झटकों और लगातार वन्य सुरक्षा की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। फ्रांस में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी साहिदा बुकस पेराशी नाम कादेर का इंतकाल हो गया है। वे पहले शुमे ग्रोनिये की थी और क्यूपिप में रहा करती थी। उनकी अर्थी आज जनाजा आज फ्रांस में ही उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM इन फ्रांस। सैमा लोबे जुटोंबो में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहन प्रसाद राम सरन जो लोंग प्रोफेसर लिकल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके मकान सैमा लोबे जुटोंबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दिपहत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रारोद पिथित्रिविया में क्षमा करें नंबर 7 सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटलुई में नंबर 7 सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटलुई में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती

0: जो धन श्रीमती परमावती जो धन जो परमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1:30 बजे लाशा पेलाओ दौंत मुगारवाल रोड पर चित्रिव्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैन जॉर्ज लिसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे पंचानवे दशमलव छः अठानवे दशमलव दो आप सुन रहे हैं RM3। संस्कृति की बातें, संस्कृति की बातें।
3: नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम को आप इस समय रेडियो मनोरंजन पर सुन रहे हैं लाइव और फिर इसका प्रसारण एमबीसी टीवी के तीसरे चैनल पर भी होगा और फिलहाल इसको आप एमबीसी प्ले पर भी देख सकते हैं। संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह ये कि संस्कृति जो है, हमारी जो संस्कृति है उसमें ज्योतिष विद्या का क्या स्थान है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे देश के जाने माने ज्योतिषी और मेटाफिजिशियन श्री प्रकाश लच्छन जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। पंडित जी नमस्कार।
4: नमस्कार,
3: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: हम सबसे पहले आपसे ये सुनना चाहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है हमारी, इसमें ज्योतिष विद्या का क्या स्थान है।
4: देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चार वेद हैं।
3: जी हाँ।
4: और वेदों के जो 6 अंग हैं उसमें से एक अंग ज्योतिष है।
3: जी,
4: तो
3: मतलब शास्त्र में ज्योतिष विद्या है।
4: ज्योतिष विद्या वेद से ही निकला है ज्योतिष विद्या। कैसे कि ग्रहों का क्या स्थिति होती है, हमारे जीवन में किस प्रकार से ग्रह का असर होता है। जैसे कि आप देखेंगे वेद में पुरुषोक्त नाम का एक सूक्तम होता है जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा मनसो अजायत, कि मनुष्य जो होता है उनको जो चंद्रमा है उनके मन का कारण होगा। तो ये हमारे संस्कृति में, हमारे जो
3: शास्त्र
4: में कई करोड़ों साल पहले ऋषियों ने बताया था।
3: जी हाँ।
4: और अभी आप देखेंगे कि लोग एक कहावत बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है तो लाते पावो वो, क्योंकि चांद फो है।
3: हाँ।
4: तो ऐसा कुछ बोलते हैं
3: जब भी पूर्णिमा होती है।
4: हाँ।
3: तो कहते हैं कि इसका सीधा असर दिमाग पर
4: होता है। और यहाँ कहते हैं कि डॉक्टर भी, मेडिकल भी ये मानते हैं कि जिस समय वो हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष क्लेडुलिन बोलते हैं, तो उस समय से जो मेंटल पेशेंट होते हैं उस पर डिस्टर्बेंस होना शुरू होते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। वेदों में जैसे 6 अंगों में कैसे कर्मकांड है आदि सारे कुछ, यजुर्वेद है, अथर्वेद हैं, तो ये सारे चीज़ों में ज्योतिष का एक प्रमुख स्थान माना गया है।
3: ठीक है, अब हमें ये बताइए कि ज्योतिष विद्या एस्ट्रोलॉजी ये है क्या चीज़। अगर इसका डेफिनेशन देना चाहेंगे, इसको परिभाषित करना चाहेंगे तो आप कैसे क्या कहेंगे।
4: देखिए, अगर हिंदी में उसको लेते हैं हम ज्योतिष, तो ज्योति ज्योति और ईश्वर, यानी ईश्वर के जो ज्योति है जो हम पर लगता है, उनकी ज्योति उनकी दृष्टि, उनको ही हम ज्योतिष बोलते हैं।
3: अच्छा।
4: तो ज्योतिष को कई भागों में बांटा गया है। एक होता है फलित ज्योतिष, एक होता है गणित ज्योतिष। तो फलित का मतलब होता है कि पहले क्या था, जब टेक्नोलॉजी कम था और ऋषि मुनि पहले जब चले गए तो कुछ लोगों ने उनको इन्वेंशन किया जैसे कि फलित, कि तुम इस चौकोन होता था कागज, ऐसे स्क्वायर्स होते थे कि इस पर उंगली रख दो, कैसे हनुमान ज्योतिष नाम का एक बहुत प्रसिद्ध था जो पहले के सारे पंडितों के कैसे बोलते हैं उनके साथ रहता था। वो जब भी आप जाओगे तो वो आप कहेगा कि एक पर उंगली रखो, फिर एक नंबर लेता था, फिर उसको डिवाइड करके आपको बोलता था कि ये होगा। और वो भी होता था। क्यों होता था वो फलित ज्योतिष? क्योंकि जिस समय वो व्यक्ति उस पंडित के पास जाता है और जिस समय वो नंबर सोचता है तो उसका जो ब्रेन होता है वो उसी नंबर को बताएगा जो होने वाला है।

0: इसको हम लोग बोलते हैं अभी होरेरी एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि होरा चक्र। होरा चक्र का अर्थ होता है, अगर आप हमारे पास आए और आपने मुझसे कहा कि देखिए ज्योतिष की सबसे बड़ी चैलेंज वहाँ होता है जब कोई आपके पास आ जाता है और कहते हैं मेरी पत्नी अभी तीन सप्ताह हुआ पता लगा कि ये प्रेग्नेंट है, गर्भवती से है और हमारे पास दो बेटियां हैं, आप ये बताकर दिखाओ हमें कि ये बेटा है या बेटी है।
1: अब शायद वो ऐसे स्थान पर एक ऐसे समय पर जबकि विज्ञान भी ये नहीं पता लगा पाएगा कि बेटा है गर्भ में या बेटी, ऐसे में एस्ट्रोलॉजर के पास आकर पूछते हैं।
0: हाँ, और उस समय ये चैलेंज होता है वो एस्ट्रोलॉजर को, अगर वो कह देगा बेटा है और बेटी हो गया तो जीवन भर उसको गाली सुननी पड़ेगी
1: और उस पर से विश्वास भी उठ जाएगा।
0: Exactly.
1: लोगों का।
0: तो उस समय हम लोग होरा कुंडली और जन्म कुंडली बना करके एग्जैक्टली वो बता सकते हैं कि ये जो गर्भ अभी आया है, जो अभी डेवलप भी नहीं हुआ है, ये लड़का है या लड़की है और ये चैलेंजेबल है, ये हम बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कैसे, ये फलित नहीं है, ये गणित ज्योतिष है, इसमें काफ़ी गणना पड़ना पड़ता है। जिस समय वो व्यक्ति आया उस समय का जो क्या बोलते हैं उसके कुंडली को बनाना पड़ता है, जिसको हम होरा कुंडली बोलते हैं, उसमें स्टॉल आउट होता है यानी कि नक्षत्र अधिपति और नक्षत्र अधिपति की और अधिपति को निकाल करके यानी इन सब को जोड़ करके तब उसको बताया जा सकता है। तो ये ज्योतिष का चमत्कार होता है।
1: जी, अभी जब आप चमत्कार की बात कर रहे हैं और फिर लोगों का किस तरह से एक विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें या कुछ भी कह लें, लोगों का दिन ब दिन एस्ट्रोलॉजी पर, होरोस्कोप पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा है और सब लोग जानना चाहते हैं कि अगले क्षण क्या होने वाला है, जैसे ही कोई संबंध जुड़ा तो आगे चलकर क्या होगा। खुद पर उनको कम विश्वास है लेकिन एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। ऐसे में बहुत सारे नकलची, बहुत सारे आप सहमत होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिस पर आप अंधविश्वास के साथ जाते हैं और फिर पैसे भी खर्च करते हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष विद्या है, क्या वो ईश्वर की देन है या उसको सीखना चाहिए अन्य विषयों की तरह, या फिर ईश्वर का भी देन है और फिर आपको सीखना भी चाहिए?
0: देखिए, एक तो ईश्वर का देन ये हुआ है कि उनका आशीर्वाद है
1: जी,
0: लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई कह सकते हैं कि मुझे वरदान मिला है।
1: हाँ, मैं माँ के पेट से सीख कर आया
0: हूँ। नहीं, ये कदापि झूठ होगा, क्योंकि अब पता नहीं अगर हजारों में से एक ऋषि मुनि हो तो हो, लेकिन मेरे दृष्टि में नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कक्षा होता है, उनको यूनिवर्सिटी लेवल पर लाया गया है। हाँ, अभी देखिए मैंने KP Still एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया, फिर अभी हम लोग PhD तक की इसमें आ गया है जो योगा यूनिवर्सिटी अमेरिका से है, बनारस यूनिवर्सिटी से है, फिर अभी आंध्र यूनिवर्सिटी से है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी का भी कुछ अंग इसमें आया है। तो इनको सीखना पड़ता है आपको, केवल ज्योतिष नहीं, क्योंकि ज्योतिष का मुख्य प्रभाव जो होता है वो मनुष्य के शरीर पर पड़ता है
1: जी।
0: तो इसलिए जो आयुर्वेद का डॉक्टर्स होते हैं या जो योगिक लोग होते हैं, ये उनको वो लोग पहले ये सीखते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति आया है वो बीमार है, ये कि ना कि झूठ मूठ के उसको कह दे कि उस पर भूत है या पता नहीं पड़ोसी ने कुछ फेंका वेंका है, इस पर मान्यता बहुत कम बताया गया हमारे ज्योतिष में
1: जी।
0: हाँ, पितृदोष को लेकर बताया गया है कि अगर आपके राहु नवे घर में है सूर्य के साथ तो पितृदोष के साथ आपका जन्म हुआ है, लेकिन इन सब के लिए पढ़ना ज़रूरी है
1: जी।
0: और इसमें सर्टिफिकेट से लेकर PhD तक होता है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये काफ़ी कठिन होता है,
1: एक बहुत ही वैज्ञानिक विषय है।
0: हाँ, और बहुत मैथमेटिक आपको आना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि एक डिग्री में 4 मिनट होता है। तो आप एक बात को लीजिए, इससे आप ज्योतिष की उस धारणा को देख सकते हैं जो बता सकते हैं कि बिना पढ़े हो ही नहीं सकता
1: जी। हाँ,
0: जब कोई जुड़वा बच्चा जन्म लेता है तो दोनों तो एक ही समय जन्म लिया
1: जी,
0: 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर, मान लीजिए 3 ही मिनट लगकर चलिए,
1: एक ही समय तक गर्भ में रहे हैं
0: एक ही समय तक, और जन्म हुआ तो केवल 3 मिनट का ही फर्क हुआ उसका
1: जी, लेकिन भाग्य अलग अलग होता है।
0: एग्जैक्टली, यही होता है ना कि अब ऐसा तो नहीं कि दोनों का बच्चा एक साथ हुआ, दोनों ने एक ही काम किया
1: जी,
0: होता ही नहीं
1: है।
0: तो फिर कहाँ गया हमारा ज्योतिष
1: जी?
0: अगर आप उनका कुंडली

0: बनाएंगे तो 100% ट्रेडिशनली कुंडली जो होता है, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, कोई फर्क नहीं आएगा. आप प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकते.
1: अच्छा.
0: कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि चंद्रमा जो है 2 दिन आधा लेता है एक राशि बदलने के लिए.
1: और ये दोनों एक ही समय में पैदा हुए.
0: अगर हो
1: राशि में,
0: हाँ, अगर लग्न को लो तो 1 घंटे के अंदर लग्न बदलता है
1: जी.
0: तो 3 मिनट में क्या बदलेगा?
1: कुछ भी नहीं.
0: हाँ.

0: कृष्णमूर्ति पद्धति चेन्नई से हैं। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने वहाँ एक डॉक्टर का जन्म हुआ जो वेणुगोपाल नाम का है, काफी विख्यात डॉक्टर है।
1: कृष्णमूर्ति थ्योरी का मतलब आप कह रहे हैं?
0: कृष्णमूर्ति नाम का एक महानुभाव थे।
1: हाँ,
0: उनका ज्योतिष उन्होंने करना शुरू किया, तो उसका दोस्त था वेणुगोपाल करके, तो एक दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, तो उनको लगा कि अगर मैं ज्योतिष करता हूँ तो एक बड़ा डॉक्टर और एक कमिश्नर ऑफ पुलिस क्यों बना, अलग अलग हुआ,
1: दोनों को एक ही क्षेत्र में होना चाहिए था।
0: तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने जो स्टेला है, जो जो नक्षत्र हैं, उनको डिवाइड करना शुरू किया कि अगर एक मिनट में यह नक्षत्र इतना जा रहा है या एक घंटे में, तो आधे मिनट एक मिनट में कितना वो जाएगा। मान लीजिए, कैसे मैं आपको समझाऊं कि देखिए, हम लोग को टूपी बोलते थे ना पहले, वो नचाते थे, तो हमें लगता था वो गोल घूमता है
1: जी।
0: वास्तविक में वो गोल नहीं घूमता, बल्कि थोड़ा बहुत मतलब लेफ्ट राइट करता रहता है। तो उस ऑप को लिया उन्होंने, जिसको हम आयान आमसा बोलते, फिर उससे उनको पता लगा कि तीन मिनट या दो मिनट के अंदर भी एक किसी का किस्मत बदल सकते हैं
1: जी।
0: और मैं आपको एक बात बताऊं, उस पुस्तक का नाम है UTTH, यूनिवर्सल टेबल ऑफ ऑल हाउसेस, जिसमें हर एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के प्लैनेट को दिया गया
1: जी।
0: और अभी नासा उसी को लेकर के वो देखते हैं कि चांद कितने डिग्री पर कौन से ऑर्बिट पे आ रहा है, अभी उनका यूज हो रहा है।
1: तो मतलब कि बहुत ही साइंटिफिक विषय है,
0: बहुत साइंटिफिक। अगर आप, अगर कोई ज्योतिष कर ही रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा कि पढ़ाई पहला शुरू करो
1: जी,
0: और उन्हें मेडिकल भी पढ़ना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: हाँ, मेडिकल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आपके पास आ गया और उसके सिक्स हाउस में सूर्य चल रहा है और सूर्य की महादशा है, मंगल ग्रह की दशा चल रहा है, तो आप उनको बिना झिझक के बता सकते कि देखो पूजा तो करेंगे आपका, ठीक है, लेकिन पूजा में हम साइन करके दे तो नहीं सकते कि मैंने जो किया आप तुम ठीक हो जाओगे, ये तो भगवान का काम है
1: जी।
0: लेकिन एक बात हम उसको गाइड कर सकते हैं कि तुम डॉक्टर के पास जाओ
1: जी। तो आपके पास जो भी हम मरीज नहीं कहेंगे, जो भी आपके पास आते हैं समस्या लेकर, वो चाहे कोई भी समस्या हो, अगर आपको देखकर आप बता सकते हैं, मतलब आपको पता चलता है कि किसको मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत है या किसको नक्षत्र से उनको समस्या हो रही है, क्या आप ऐसा निर्देश देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पर आपका समाधान नहीं है?
0: ये बात कई बार मेरे पास आया, मैं आपको एक मज़ेदार कहावत बताता हूँ। एक बात ऐसी आई थी जो आज तक मैं भूला नहीं, मुझे एक व्यक्ति, मुझे पता है उनको, मुझको भाई प्रकाश बोलता रहता है, लेकिन मैं मॉरिशस में नहीं था, तो वो उनको दर्द हो रहा था लेफ्ट किडनी की ओर तो और कमर में, तो उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर को देखा, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा उसको कि तुम हर संडे को काले कुत्ते को बिस्किट खिलाओ
1: जी। और ये प्रथा बहुत प्रचलित हो रहा है देश में कि वीकेंड में काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए।
0: तो अब हुआ क्या, इनका ये कुत्ते को खिलाना शुरू किया
1: जी।
0: फिर मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मैं गया था, आप नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर कुत्ते को बिस्किट खिलाना है। तो मैंने कहा देखो, मैंने उसका चार्ट बनाया, फिर मुझे लगा कि एट हाउस जो होता है आठवां घर में, शुक्र और शनि एक साथ था, तो जब शुक्र और शनि एक साथ होता है और उसका शनि का महादशा अंतरदशा चल रहा था, तो उन्हें सर्जरी में जाना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हें स्टोन हुआ होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें कमर का बीमारी है, तुम मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत फेमस डॉक्टर हैं, कहीं वो सुनेगा तो पता लगेगा कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो मैंने उस डॉक्टर के पास भेजा, तो डॉक्टर ने मुझको कॉल किया, कहा कि अरे प्रकाश, तुमने क्यों भेजा इसको? मैंने कहा कि स्टोन है, तो तेरे पास क्यों आया था? मैंने कहा कि पंचांग दिखवाने। तो वो हंसने लगा, कहा कि तुम काटो मत, मैं इनका एको कर रहा हूँ अल्ट्रासाउंड और तुम्हें तुरंत बताता हूँ। तो कहा कि ओके, तुम्हारा प्रेडिक्शन ठीक है, अब ये बताने की कोशिश करो कितना स्टोन होगा। मैंने कहा कि दो से ज़्यादा नहीं होगा। कहा कि एग्जैक्टली दो है। तो उस समय उस डॉक्टर ने उसे कहा कि अभी तुम मर जीते तो रुआ कुत्ता खत। तो मैंने कहा कि देखो, कभी भी क्या होता है कि हमें मिसगाइड किया जाता
1: जी
0: है।
1: हाँ।
0: तो इसी कारण से ज्योतिष को लोग कभी ठग विद्या भी बोलते हैं
1: जी। हाँ।
0: मैं इसको मानता हूँ।
1: हाँ, इसको ठग विद्या कहते हैं।
0: ठग विद्या बोलते हैं कि लोगों को पैसे आंटने के लिए होता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हम उनको सही दिशा नहीं बताते। देखिए, अभी मैंने लोगो बनाया मेरा, मैंने कहा कि हम किस्मत नहीं

0: बदल सकते हैं, ये सही है। आप बोलेंगे मैं देख कर क्या करूँगा, तो देख करके मैं आपको गाइड कर सकूँ बेटर डेस्टिनी के लिए, लेकिन भाग्य जो है
1: बदल नहीं सकते,
0: नहीं बदल सकते। अगर आपके जीवन में लिखा है कि आपको दिल की बीमारी होगी, तो आपको दिल की बीमारी।
1: और बहुत सी बातें ऐसी भी हैं, आप मानेंगे पंडित जी, कि कर्म के हिसाब से हमारा जो फल होता है उसको तो हमको भुगतना ही है।
0: अब देखिए, कुंडली में नवग्रह होता है
1: जी,
0: नेपच्यून यूरेनस को निकाल देते हैं
1: जी, हाँ।
0: नवग्रह जो हमारे ऋषियों ने बताया, उसमें तो सात ग्रह हमें पता है, जो सोमवार से लेकर रविवार से लेकर सोमवार से रविवार तक आता है। इनका इफेक्ट तो हमारा होता है, ये भगवान का देन है, हम बदल नहीं सकते कि आज बुध चल रहा है तो नहीं आज उसको गुरुवार बनाते हैं,
1: हाँ।
0: तो ये ज्योतिषी भी नहीं कर सकता
1: नहीं।
0: अगर मुख्य ग्रह है ये सातों ग्रह, देखिए अगर किसी स्त्री के कुंडली में पांचवें घर में सूर्य है तो उसको कभी बेटा नहीं होगा, ये मैंने इस पर PhD का रिसर्च किया है।
1: अच्छा,
0: उसको बेटी ही होगी, डेफिनेटली बेटी होगी, ये गारंटी है। अभी भी कोई कॉल करके भी पूछ ले तो मैं उनको बता सकते हैं कि ये होगा। और अगर मान लीजिए शनि ग्रह चला गया एक पुरुष के कुंडली में पांचवें घर में या बारहवें घर में, तो ये शनि के कारण वो कभी बाप नहीं बन सकता। ये अब ये बोलने के बाद आपको पुष्टि करना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। तो प्रमाण कैसे देंगे उसको, उनको टेस्ट करवाओ
1: जी।
0: ऐसा नहीं कि उनको कहो कि तुम इतने दिन तक पूजा कर लो, इतने दिन तक व्रत कर लो, ये नहीं कर सकते। हाँ, पूजा पाठ करने से भगवान कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार हैं, लेकिन अब ये सात ग्रह तो आपने बता दिया, लेकिन दो ग्रह बच गए आपका, हाँ। एक हुआ राहु और एक केतु, ये कर्म का फल होता है
1: जी।
0: कि जो आप
1: जो किया हाँ, है उसको तो भुगतेंगे ही,
0: उसको तो भोगना पड़ेगा आपको। तो इसलिए राहु और केतु ही हमारा डेस्टिनी होता है, और भाग्य जो होता है ये सातों ग्रह होते हैं। अगर हम कहेंगे व्हाट इज डेस्टिनी फेट, तो हम कहेंगे फेट सन मून मार्स मर्करी जुपिटर सैटर्न यहाँ तक, और हम कहेंगे व्हाट इज डेस्टिनी तो हम कहेंगे राहु और केतु।
1: अच्छा, बहुत दिलचस्प बातचीत चल रही है। आज हम सुन रहे हैं ज्योतिष विद्या का क्या स्थान है हमारी संस्कृति में, और संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अभी इस विषय पर हम और बातचीत करेंगे, दिलचस्प बातें करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस प्रोग्राम का प्रसारण होता है MBC और आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह ये कि हमारी संस्कृति में ज्योतिष विद्या का क्या स्थान है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और मेटाफिजिशियन डॉक्टर प्रकाश लच्छन जी। एक बार फिर नमस्कार पंडित जी। हम ये देख रहे हैं कि आजकल एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी परंपरा चल रही है जहाँ पर हर कार्य शुरू करने से पहले एस्ट्रोलॉजी को देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाया जाता है। वो चाहे शादी ब्याह हो, चाहे वो घर का गृह प्रवेश हो, या फिर किसी गाड़ी की खरीद हो, इन सभी के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर की जो सेवा है उसको प्राप्त करते हैं। अब इसके अलावा कोई समस्या भी हो, चाहे वो दंपत्ति में समस्या हो या फिर बच्चे की पढ़ाई को लेकर, बच्चे आजकल ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, AI की भी दौर चल रही है, तो इन सभी समस्याओं से जो अगर आपको निपटना हो तो हमसे आप क्या क्या कहेंगे? क्या ये सारी समस्याएं आज सच में हैं? एस्ट्रोलॉजी का सच में इतनी बड़ी मांग है या पहले तो ऐसा नहीं था, तो फिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है आज?
2: देखिए, जो पहले लेते हैं शादी की बातें
1: जी,
2: अभी जो है बहुत ही कम उम्र में आप देखते हैं बच्चे को कहे क्योंकि उसको प्यार हो गया। एक तो हमारे मोबाइल का कार्यक्रम चलता रहता है सभी के हाथ में
1: जी, हाँ।
2: एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, कई ऐसे बच्चे भी हैं और कई ऐसे बच्चे नहीं भी हैं। उसमें क्या होता है कि अब अगर हम संस्कृति की बात करें तो ज्योतिष को अगर हम अलग रखें, अगर हम अपनी भाषा को समझें
1: जी,
2: अपने धर्म को माने
1: जी,
2: और हमें पता लगे कि हमारे रामायण, गीता या शिक्षा पत्री आदि जो है क्या सीख देता है, तो सबसे प्रथम जो है

0: माँ बाप को अपने घर में संध्या रखनी चाहिए
1: जी,
0: लेकिन अभी होता नहीं है। अभी क्या होता है कि अब हम 99% ऐसे हैं कि उनका दिन होता है कि जो जीतवा तो जो आलिमला लाओ, वो उसका नहीं है ये इसका है। तो ये कारण पहले होता है कि उसमें निगेटिव वाइब शुरू हो जाता है। अब जब निगेटिव वाइब शुरू होता है और उधर उनके कुंडली में अगर बच्चे का जन्म हुआ और उनका कुंडली एक अच्छे ज्योतिषी से दिखा है, तो उनका जो लाइफ पाथ है उनको हम गाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उनको डेस्टिनी बदल सकते हैं, नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ किस्मत बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये बता सकते हैं कि देखो कि इसके पांचवें घर में सपोज़ एक बच्चा का जन्म हुआ तो हम लोग तीन घरों को देखते हैं पढ़ाई के लिए, तीसरा घर, चौथा घर और पाँचवा घर, फिर नौवा। तीसरा उनको बताते हैं इंटेलेक्ट, कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कहते हैं कि वो दिमागी है
1: जी,
0: टेक्निकली वो बहुत काम करता है। फिर एक होता है फोर्थ हाउस, चौथा घर, जो माँ बाप से संबंध रखते हैं कि माँ बाप उस बच्चे को किस शिक्षा की ओर भेजेगा और उसके ब्रेन को कैसे ट्रेन करेगा। चौथा घर जो होता है वो कैंसर का होता है, कर्क राशि का, और उसका प्लैनेट होता है चंद्रमा। तो उसमें क्या बताया जाता है कि माँ बाप को किस प्रकार से बच्चे के साथ रहना होता है
1: जी।
0: अगर शनि ग्रह है तो माँ बाप को किस उम्र में बच्चे को स्ट्रिक्ट लेकर आना होगा, और अगर मंगल ग्रह है तो माँ बाप के, अगर माँ और बाप है तो जो ग्रह वहाँ पर है बच्चा किसके साथ ज़्यादा लगाव रखेगा, माँ या बाप के साथ। और उसमें अगर राहु ग्रह आ गया तो वो बच्चा किस प्रकार से पढ़ाई में घिरेगा, कब वो नहीं पढ़ेगा। कभी कभी ऐसा बहुत से बच्चे आते हैं और प्रसन्न होकर जाते हैं क्योंकि उनको पूजा से ज़्यादा उनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइड करते हैं,
1: मार्गदर्शन
0: करना चाहिए। क्या हम उसे तीन चीज़ पूछते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहते हो या नहीं, दूसरा क्या तुम पढ़ाई करते लेकिन तुम्हें कुछ वो
1: आता नहीं,
0: मेमोराइज नहीं होता, या नहीं पढ़ना चाहते। तो क्या कहते हैं कि नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसे बच्चों को फिर उस ग्रह को देखा जाता है कि अगर कहीं उसका जो गुरु ग्रह है या बुध ग्रह, मैक्यूर जुपिटर, कैसे अगर उनके कुंडली में कोई भी, अभी अपने आप पर देख सकते हैं, लेकिन अगर वो जुपिटर और राहु आ गया तो उसको गुरु चंडाल योग बोलते हैं, तो वो बच्चा कोशिश भी करेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा
1: जी।
0: तो ये एक होता है कि अगर हम अपने आप को ज़्यादा के ज़्यादा, और मेटाफिजिक्स में एक बात बताया गया है इनर्जी, जो हम इमोशन बोलते हैं, तो अगर हम राइट इमोशन को लेकर चलते हैं, अगर माँ बाप उस इमोशन को कंट्रोल करके, दो प्रकार इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन ना, तो उनका जो अगर इमोशन को कैप्चर करके बच्चे को, एक तो ज्योतिष का उन्होंने सहारा लिया, दूसरा अपने आप को उनको पता लगा कि क्या करना है, तो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। अब रह गई शादी की बात, शादी की बात बहुत पुरानी आती है तो उसमें 8 प्रकार के गुणों को देखा जाता है, अष्टकूट। तो अभी वो हम जो नए कहेंगे, जो नए दौर चल रहा है साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी से, हम उनको उतना नहीं मानते
1: जी।
0: क्यों नहीं मानते? अब एक कहते हैं एक राक्षस से एक मनुष्य है, तो चलो मान लेते हैं कि एक राक्षस से एक देवता है, लेकिन दोनों तो मांसाहारी हो गया, फिर इसमें क्या फर्क? फिर पहले वर्ण देखा जाता था कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, लेकिन अभी आप देखते हैं कि दोनों जो हैं, दोनों डॉक्टर हैं या दोनों प्रोफेसर हैं, तो इसमें तो वर्ण नहीं आएगा
1: जी।
0: या फिर एक प्रोफेसर हो गया और एक डॉक्टर हो गया। फिर आता था पहले वनचर जलचर कि ये गाँव में रहती हैं या शहर में, तो उसका अभी लेन देन नहीं है, ये भी हट गया। लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर्स होता है, जैसे कि भकुट बोलते हैं कि राशि मैच करते हैं, मतलब एक आग है और एक पानी है ये। और सबसे अंतिम जो होता है, जो लोग शादी कर रहे हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर मैचिंग पॉइंट में 36 आना चाहिए, 36 गुण बोलते थे ना, तो अगर 36 नहीं आया, सपोज़ 18 ही आया या 17 आया, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर नाड़ी, एक चीज़ का नाम होता है नाड़ी, जिसको हम नाड़ी बोलते हैं, नव परीक्षण। देखिए ऋषि मुनियों ने पहले क्या किया हमारे संस्कृति, हमारे धर्म में, उन्होंने ज्योतिष विद्या को डायरेक्टली आयुर्वेद में रखा
1: जी।
0: कि नाड़ी अगर

0: इनका ओ प्लस है, उनका ओ प्लस है, तो बच्चा नहीं होगा, कंसीव नहीं हो पाएगा, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पैथोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अगर दोनों का नाड़ी को मिला करके 8 आना चाहिए, 8 पॉइंट, अगर 8 पॉइंट ना आ करके वहाँ पर 0 आ गया, तो मैं गारंटी देता हूँ, आप चेक करके देखेंगे, कई लोग ऐसे हैं बिना कोई मेडिकल इशू के दोनों ठीक हैं
1: जी,
0: लेकिन बच्चा नहीं है
1: जी।
0: ये बहुत दुख की बात होती है। तो इसलिए क्या होता है, पहले शादी से पहले इसको देखा जाता है कि कुंडली मैच हो रहे हैं कि नहीं। फिर शादी में और क्या देखते हैं, मतलब मांगलिक दोष। अब जहाँ तक रह गया मांगलिक दोष का, तो कई प्रकार की बात आती है।
1: ये मांगलिक दोष है क्या चीज़, आजकल बहुत सुनने को मिलता है।
0: मांगलिक दोष मंगल ग्रह को बोलते हैं
1: जी। हाँ,
0: अगर मंगल ग्रह पहला घर में आया तो वो जो व्यक्ति है ना, वो थोड़ा चिड़चिड़ापन में रहेगा, मतलब कुछ खराब नहीं होगा लेकिन शादी देर से करेगी और चिड़चिड़ापन। दूसरा घर में आया तो ये थोड़ा खतरनाक होता है, किस कारण से, बोलने की इतनी क्या बोलते हैं,
1: कटु वचन,
0: हाँ कटु वचन, टॉकेटिव, और इतना आउट स्पोकन हो जाते हैं कि वो जो अच्छा भी बोलेगा लेकिन तरीका जैसे बोलेगा
1: गलत होगा,
0: वो बहुत ही मतलब सुसाइडल टॉक बोलते हैं उसको
1: जी।
0: तो ये दूसरे का क्या, अगर चौथा घर में आया तो सास ससुर के या फिर इन लॉज में कुछ ना कुछ खराबी चलता रहेगा उसका। और सातवें घर में अगर मंगल है तो उसमें क्या होता है कि जो शादी किया तो हस्बैंड पे बड़ा कंट्रोल रखेगी वो। आठवें घर में जो आता है वो कभी कभी होता है, वो बहुत क्या बोलते हैं इसको, बारीकी से देखना पड़ता है कि कभी हो सकता है कि वो जो मंगल वो दशा था कब वो इफेक्ट करता है, जब महादशा अंतरदशा एक साथ आता है और प्रत्यंतर दशा, मान तीनों को मिलाप होता है उस हाउस में। तो अगर आठवें घर में वो आया, सपोज बच्चा का 5 साल था और वो चला गया, फिर उसको देख करके कई ज्योतिषी कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड मर जाएगा, लेकिन ये देखना चाहिए अगर सपोज वो आ रहा है 110 साल बाद तो हस्बैंड तो मरेगा ही तो 110 साल तो है नहीं, फिर अगर हो सकता है वो पहले चला गया। तो इसमें अभी हाल में मेरे पास एक समस्या आई, वो किसी ने बहुत गलत किया, नाम तो नहीं बता पाएंगे लेकिन बहुत गलत किया, ये मैं आग्रह करूँगा सारे सहयोगियों से कि यह ना करें, कि बेटी जो थी मूढ़ नक्षत्र में थी, तो मूढ़ नक्षत्र में आने से कुछ ख़राब नहीं होता, बल्कि उसकी पूजा होती है, हिंदू धर्म से हैं तो मानते हैं। और बच्ची जो है अभी ग्रेजुएट हैं, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आई थिंक सो, कि बहुत बड़ी अहदे में है, तो उसने देखा और कह दिया कि जो लड़के वाले गए उसके पास देखने कि ये लड़की मांगलिक है, शादी करेगी तो हस्बैंड टपकेगा और ये तो अपने बाप को मार देगी। तो बहुत कटु वचन है ये,
1: ऐसा नहीं
0: बोलना चाहिए। अब उस बाप को कैसा लगेगा, और मैं आपको बताऊं, ये बात सुनने के बाद 1 महीना था उनका शादी, वो टूट गई। तो ये काफ़ी गलत करते हैं जो लोग ज्योतिष को बहुत लाइटली पढ़ते हैं या नहीं आता है उनको, लेकिन इंटरनेट में AI में चेक कर लेते हैं। अभी काफ़ी लोग काफ़ी गलत सोच लेते हैं कि मेरा मैं एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो लोग क्या करते हैं कि कई एस्ट्रो सेजर्स हैं, कई ग्रुप ऐसा है, उसमें अपना कुंडली खुद पढ़ लेते हैं।
1: आजकल तो ऐसा दिन आ गया है कि हर सुबह आपको या तो फेसबुक पर हो या फिर इंटरनेट पर हो या फिर कोई भी मीडिया हो, सुबह सुबह आपको सुनाते हैं आज आपका दिन कैसा बीतेगा। और इस चक्कर में कुछ ऐसा भी कहा जाए कि आज आपका दिन बहुत बुरा जाएगा, आज आपको ये नहीं करना चाहिए, और ये सुनकर ही लगता है कि ऐसी बातें क्यों सुने सुबह सुबह, नहीं भी होना हो तो आपकी मानसिकता में ये बात आ जाती है।
0: और देखिए, वो सूर्य ज्योतिष से है
1: जी,
0: वो सन साइन से है
1: जी,
0: तो सन साइन को हम मानते भी नहीं है कि वो केवल हम, अगर हम बोलते हैं हॉरोस्कोप जो हम देखते हैं जूनाल में या फिर ऐसे हम सुनते हैं, वो सन साइंस हैं, वो उसमें हम केवल ये सुन सकते हैं कि हमारा कौन सा दिन चलता है, कौन सा दिन लकी डेज है, या फिर हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता।
1: वही वो प्रेडिक्शन खास तौर पर अगर गलत हो तो क्या संस्कृति के अंतर्गत ऐसी बातें कहनी चाहिए, क्या अपशब्द कहने चाहिए सुबह सुबह लोगों को बता दें कि आज आपका दिन बहुत बुरा जाएगा, ये क्या संस्कृति के अंतर्गत ऐसी बातें सिखाई जाती हैं?
0: देखिए, हमारे ज्योतिष में हर एक का जीवन अलग होता है
1: जी।
0: अब उनका चंद्र कुंडली देखना चाहिए तो कब कितने लोगों को देखा जाएगा
1: जी।
0: और एक दिन में मैं आप बता दूं जो लोग सुन रहे हैं, एक घंट

0: होरा में अगर सूर्य को ले लें तो हर एक घंटे में सूर्य एक राशि को बदलता
1: है,
0: एक ग्रह में जाता है
1: जी,
0: एक एक ग्रह में चलता जाता है वो। अगर चंद्रमा को लें तो वो हर ढाई घंटे में एक राशि को बदल देता है
1: जी, मतलब कि कुछ भी हो सकता है,
0: कुछ भी
1: संभावनाएं बहुत है।
0: वो तो केवल पिन पॉइंट करके केपी ज्योतिष में एक खूबी है, मैं अपने आप पर बता रहा हूँ
1: जी।
0: मेरे यहाँ मेरी वाइफ जो थी वो गर्भवती थी, तो डॉक्टर मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको कहा कि बच्चा जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा, उन्होंने कहा नहीं होगा, ये जनवरी में है। फिर 31 दिसंबर आ गया, मैं बार बार अपनी वाइफ से पूछ रही हूँ, पत्नी से, कि दर्द हो रहा है, तो वो गुस्सा करे, अरे मैं तो ठीक हूँ, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बाजार जाने के लिए, लावे लाने हैं। एकाएक 10 बजे ऐसे उनको पेन हुआ, तो मैं क्यों उसे बार बार पूछ रहा था, जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो मुझे एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी का पता था कि उन्हें 31 दिसंबर 6 बजे से पहले उनका बच्चा होना चाहिए
1: जी।
0: और जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर कह रहे हैं तुम कुछ करके तो नहीं आए हो ना मैंने कहा नहीं, फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि एक लड़की होगी और बिना सीएस के, तो कहा कि नर्स इसको बाहर निकाल कर फेंको, इसको भीतर मत आने देना। तो वो गिनना पड़ता है, बिना गिने किसी को बोल दो कि आज तुम्हें ये होगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनको बता दिया गया है कि उनका मृत्यु जल्दी हो जाएगा, मेरे पास भी आते हैं, और जब वो लोग आते हैं तो इतनी
1: परेशान,
0: हाँ वो तो लगता है कि कल ही वो चली जाएगी। तो ये सब झूठ बात है, कभी भी ज्योतिष को अनप्रोफेशनल नहीं करना चाहिए
1: जी। और अभी शुरू में ही आपने कहा कि हमारी संस्कृति में, वेदों में, शास्त्रों में ज्योतिष विद्या का प्रावधान है, और आजकल हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति, उसमें भी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष को बहुत महत्व दे रहे हैं। तो वहाँ पर उस संस्कृति में जिस बात को लेकर ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब वहाँ किस बात को लेकर वो उनका जो प्रेडिक्शन होता है या उनका जो कैलकुलेशन होता है, क्या वो भी हमारे शास्त्रों से ही आया है या उनका कोई अलग रेफरेंस होता है, इस पर कुछ कहेंगे?
0: मैं आपको बताऊँ, अगर भारत में जाकर ज्योतिष पढ़ेंगे तो शायद ही आप वहाँ से एग्ज़ाम पास करके आ जाओ, लेकिन अगर यही एग्ज़ाम इंटरनेशनल साइंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में करेंगे तो 99% ये है कि हम फेल हो जाएंगे। फिर एक है अमेरिका एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन, फिर एक है ओपाक करके, एक है कैल्पा करके, इतना कठिन है वो विषय, उसका जो मेन बुक्स होता है कोई भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, वो उसका नाम होता है पहका नाम का एक बड़ा किताब होता है, और वो इतना कठिन होता है, और उसमें वो लोग ये भी देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वैदिक शास्त्र, एक पुस्तक है जिन्होंने शिल्पोन ने लिखा है, राइटर शिल्पोन, वो अमेरिकन था, उसका नाम था हिंदू ज्योतिष, हिंदू मेटोलॉजी एंड ज्योतिष, उन्होंने ये बताया उसमें कि कोई भी देश ज्योतिष नहीं जानता था एक्सेप्ट इंडिया के अलावा
1: जी।
0: और उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि ये जो ज्योतिष शब्द निकला या एस्ट्रोलॉजी जो है वो हिंदू धर्म से ही आया
1: जी।
0: और आज वो लोग इतना अच्छा उनको करते हैं और इतना कठिन है उनकी परीक्षा कि उनका जो सॉफ्टवेयर, अभी तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का नाम होता है सोलर फायर, जो सुन रहे जो लोग ज्योतिष कहते हैं उसको डाउनलोड करके देख लो, वो उसको डाउनलोड करने के बाद अब डिलीट करोगे उसको,
1: क्योंकि इतना कठिन है,
0: बहुत कठिन है, एक मिनट के अंदर ग्रह कितना वो डिग्री कितना ऑप्स जा रहा है उसको आपको बताना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग
1: बहुत प्रेसिजन के साथ करना,
0: और वो लोग बहुत अच्छे बताते हैं
1: जी।
0: मैंने कहता इंडिया नहीं, इंडिया में भी इतने कुछ ज्योतिषी हैं जो सही में इस प्रकार से बोलते हैं कि आप चौंक जाएंगे, इतना गहनता से बोलते हैं। लेकिन जो भी सॉफ्टवेयर होता है पाश्चात्य देशों का बनाया हुआ, उसमें कलन होता है जिसमें होता है कि लहरी, देखिए ज्योतिष करने से पहले घराना तो जानना चाहिए
1: जी,
0: जैसे गाने वालों को घराना पता है
1: जी।
0: तो हमारे ज्योतिष में भी पहले आया भृगु ऋषि, फिर आया पराशर, उससे पहला आया था युक्तेश्वर, फिर श्रीपति आया, फिर भृगु आया, फिर इधर आया हमारा पराशर, फिर पराशर के बाद रमन, रमन के बाद केपी, केपी के बाद चौधरी। तो ये सब को फॉलो करना चाहिए, कोई भी ज्योतिष करते हैं तो आप

0: से पूछो कि तुम किस धारणा को घराना के हो, तो उसको ये जानना चाहिए। अगर उसको खुद घराना ही पता
1: नहीं बता पाएगा,
0: जैसे कि कोई मेडिकल डॉक्टर होता है तो पहले आप उससे पूछते नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है
1: जी।
0: अगर आपको कोई कह दे कोई ऐसा देश जो आपको सुन करके लगे ये तो होता ही नहीं वहाँ, तो आप खुद उस डॉक्टर। इसी प्रकार से किसी भी ज्योतिषी के पास जाने से पहले आप ये पहले पूछ लो उससे कि आप किस ज्योतिषी को, किस ज्योतिष को मानते हो, भृगु करते हो, पराशर करते हो और किस घराना से हो, तब जा कर के वो ज्योतिष कर पाएगा
1: जी।
0: ऐसा तो नहीं कि उनको थोड़ा आ गया या बुक डाउनलोड कर लिया, ये हो ही नहीं सकता
1: जी। अभी आप सुन रहे हैं संस्कृति की बातें और इसके अंतर्गत हम ज्योतिष विद्या पर बात कर रहे हैं, किस तरह से यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक समय था जब हमारे पूर्वज यहाँ पर थे, हमारी दादी परदादियाँ, वो हाथ देखकर कुछ बताने की कोशिश करते थे, माथा देखकर कुछ कहते थे, कुछ लोग होते थे जो आँखों में दृष्टि डालकर आपको कुछ कह सकते थे। तो ये सारी बातें और फिर आज की जो ज्योतिष विद्या है इसमें क्या तालमेल है, इस विषय को हम अभी थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: संस्कृति की बातें,
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संस्कृति और ज्योतिष विद्या, और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रकाश लच्छन जी। डॉक्टर जी, अब आप हमें ये बताइए कि मैंने जैसा कहा कुछ समय पहले, एक समय था जब हमारी जो दादी जो वृद्ध होते थे गांव में या परिवार में, लगता था कि कैसे कहते हैं ना कि उनमें एक ज्ञान की बातें होती थी, साजेस विजडम वाली होती थी या होते थे, और उनको देखकर अब जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको लगता है कि हमारी जो संस्कृति में ऋषि मुनियों की जो प्रथा है वो बहुत सारे, उनको इतना ज्ञान होता था कि वो कुछ कह सकते थे जो कि होने वाला है, और हमारी जो दादियाँ थी वो माथा देखकर कुछ कहती थी, ये बहुत गुस्सेला है, इसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, या हाथ देखकर कुछ कहने की कोशिश करते थे कि आपकी जीवन की जो लकीर है वो कितनी लंबी है, कितने बच्चे होंगे, शादी कब होगी। तो एस्ट्रोलॉजी का पाल्मिस्ट्री या फिर माथा देखना या फिर आँखों में देखकर कुछ बताना, क्या इसमें कोई संबंध है और इसमें वास्तविकता है?
2: देखिए, जो कुछ है सब ग्रहों पर होता है
1: जी।
2: अगर हम हाथ भी देखें या माथा देखें तो ग्रह, अब हाथ में क्या देखा जाता है, ये सही है, समुद्र का ज्योतिष इसी को बोला गया। तो समुद्र का ज्योतिष जो है समय से कभी बदलाव नहीं हुआ, वो सेम के सेम ही रह गया। तो हस्तरेखा वही देख सकते हैं जिसको बहुत ही प्रेसिजन होना चाहिए,
1: ये भी विद्या है, हाँ, सीखना चाहिए,
2: बहुत ही प्रेसिजन होना चाहिए। एक छोटा सा लाइन अगर वो ट्रायंगल बन गया तो उसको ट्रेन बोलते हैं, अगर छोटा सा गोल हो गया तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो ये इसीलिए इतना कठिन होता है कि केवल हाथ पकड़ के देख लेना बड़ा मुश्किल होता है
1: जी।
2: तो इसमें तीन, जो आपके हाथ में जो तीन रेखाएँ होती हैं, जो मेन रेखाएँ होती हैं, एक होता है लाइफ लाइन, जीवन रेखा, मस्तक रेखा और हृदय रेखा। तो इन तीनों को, और एक लाइन होता है जो बीच में आता है जिसको हम कहते हैं कि भाग्य रेखा। तो इन चारों को बेसिकली सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक उंगली जो है वो भी ग्रह से लिखा हुआ है, यानी कि ये गुरु ग्रह हो गया, जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, फिर नीचे में आपका शुक्र है, यहाँ मंगल का आ गया, फिर वीनस का आपका रिंग बन गया। तो ग्रह ही है वो, लेकिन उन ग्रहों का मेल कराना बड़ा मुश्किल होता है हस्त समुद्रिका से। वो वही कर सकते हैं जिन्होंने बहुत ही स्टडी किया है
1: जी,
2: और बारीकी से। अब एक चीज़ और है आपके हाथ में, एक तो ये चार लाइन होता है, और एक होते हैं जो आपकी शादी की लाइन होती है जिसको आप लोग ज़्यादा देखते हैं, दूसरा होता है आपकी अंगूठा और सारी उंगलियों को। अब देखिए, ये हमारे हाथों का जो है, हम किसी का किस्मत किसमें देखते थे, हाथों में, किस कहाँ से आया, वेद से आया, समुद्र का ज्योतिष, और यही पाश्चात्य देशों ने पाल्मिस्ट्री बोल दिया इसको। और आप देखिए, एक आदमी चेहरा बदल सकता है प्लास्टिक सर्जरी से
1: जी।
2: लेकिन आप बताएं पुलिस में क्या नहीं बदलता उनका, क्या हम उनका चिन्ह रखते हैं,
1: फिंगरप्रिंट अटेंडेंस के लिए भी आजकल यही चलता है, दस्तखत नहीं।
2: एग्जैक्टली, जब देखा ना कि हर एक का उंगली अलग
1: जी,
2: इसमें क्या होता है, आप देखेंगे उंगलियों को बारीकी से, तो इसमें चक्र है, एक होता है गोल बनार होता है, और एक होता है सीप जिसको हम शंग बोलते हैं, और एक नाक, केवल तीन प्रकार के चिन्ह हमारे हमारे उंगलियों में,
1: लेकिन हर एक का अपना एक अलग होता है।
2: शायद किसी का पाँच है, पाँचों उंगली में एक है, किसी का दो में एक है, किसी का सिमिलर नहीं हो सकता। तो ये हमारे हिंदू धर्म का, हमारे जो सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उनकी चमत्कार है, जो हमने बहुत पहले ही दे दिया था इसको
1: जी।
2: और हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा में कुछ नहीं है, चंद्रमा जो है देखने में खोखला है। तो ये सारे जो अभी इन्वेंशन हो रहा है, देखिए अभी मैंने सुना कि एक बार मैंने उनको मेल भी किया था कि आदमी जब सोता है तो चंद्रमा के आधार से, तो ये तो हमारे वेदों ने कहीं पहले बताया
1: जी। हाँ,
2: ये वेदों ने पहले बताया। आज आप देखिए मेंस्ट्रुएशन, अगर आप ले मासिक धर्म लें जो महिलाओं का, तो वो 28 डेज का ही है
1: जी,
2: चंद्रमा के आधार से
1: जी।
2: तो ये जो मस्तक रेखा होता है,

0: रेखा होता है सब प्लैनेट से जुड़ा होता है
1: जी। ग्रेगोरियन कैलेंडर का इससे कोई संबंध नहीं, पर्वों का भी यही स्थिति है। हम चंद्र के आधार पर या सूर्य के आधार पर अपने पर्व मनाते हैं।
0: कोई भी धर्म हो
1: जी,
0: आप देखें वो चंद्रमा को मानता है
1: जी,
0: क्योंकि चंद्रमा क्यों, चंद्रमा सारे लोग चंद्रमा को लेते हैं क्योंकि चंद्रमा हमारे धरती से काफ़ी निकट है। जब एक चांद समुंदर पर असर कर सकता है तो हमारे शरीर में तो 70% पानी है, तो हमारा दिमाग पर असर क्यों नहीं करेगा।
1: इसीलिए कहते हैं कि जब पूर्णिमा आती है तो लोगों का मन विचलित होने लगता है, कुछ लोग गुस्सा करने लगते हैं और फिर जो मानसिक तौर पर बीमार हैं उन पर इसका और असर पड़ता है।
0: इसी कारण हमारे हमारे हमारे ऋषियों ने कहा कि पूर्णिमा के दिन तुम व्रत करो
1: जी।
0: हाँ, ये पूर्णिमा व्रत इसीलिए आ गया साइंटिफिकली, तुम वही भोजन करो जो आपके शरीर को अग्रेसिव ना करें, मतलब
1: शांत
0: रखें, और आप वेट करो शाम तक, थक जाओगे फिर सो जाओगे, गुस्सा आदि नहीं करोगे, ब्रेन आपका स्टेबल रहेगा।
1: ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि पूर्णिमा के दिन क्यों व्रत रखते हैं, ताकि मन शांत रहे, शरीर शांत रहे,
0: आप गुस्सा नहीं करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, और जब तक शाम होगी चंद्रमा देखते देखते थक गए आप सोने चले जाओगे
1: जी। हाँ,
0: तो
1: और फिर एक नई मतलब कि बात आने लगी है मैनिफेस्टेशन का। कहते हैं चंद्रमा की रात या दिन आप जिस दृष्टि को भी अपने मन मस्तिष्क में लाएंगे वही सत्य होगा, इसलिए अच्छा सोचे।
0: ये सही बात है। एक विधि होता है एक जिसको हम ट्राटक बोलते हैं, जिसको हम किसी चीज़ को फिक्स करते हैं, किसी डॉट को या किसी चीज़ को अपने आँखों और दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए। और अगर किसी को सुंदर ही बनना है तो उनको चाहे जिस समय चंद्रमा दिख रहा है, पूर्णिमा चतुर्थी मतलब कि एक दिन पहले और एक दिन बाद और एक दिन उसके बाद भी कर सकते हैं, मतलब कि तीन दिन आप चंद्रमा को फिक्स करो। आप चंद्रमा पर कपड़े को थोड़ा ढीला कपड़ा पहन लो और उसको फिक्स करो ऐसा,
1: एक मेडिटेशन जैसा।
0: हाँ, कि उनके जो एनर्जी है, उनका जो ग्लो है अपने आप पर, तो ये बात सही होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ ये बात सही।
1: पंडित जी, आज आप स्टूडियो में आए, हमारी बातचीत देखिए देखते देखते एक घंटा होने को है, बातचीत पूरी भी नहीं हो पाई, तो हम ये वादा करते हैं कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे किसी अन्य प्रोग्राम में, जिसका इंतज़ार मुझे यकीन है हमारे श्रोताओं को भी रहेगा। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सारी बातें बताने के लिए बहुत बहुत हम आपके कृतज्ञ हैं, और हम आपसे विदा चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, ज्योतिष विद्या का हमारी संस्कृति में क्या स्थान है। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। संस्कृति की बातें।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ये दुखद खबर जो कल से सबको झकझोर रही है, एक नन्ही सी जान जिसका जीवन अभी शुरू हुआ था अब नहीं रहा। कल रात खुशबुआ में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला। हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है। उसे कल रात ही पोटलिनोफ की CID ने गिरफ्तार किया। जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकारा कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया था। उसने कहा कि उसे उस समय कुछ शैतानी आवाज़ें सुनाई दी। उसने ये भी स्वीकारा कि उसने ड्रग्स लिया था। कटर को जब्त किया गया। आज सुबह जीतू अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया। कल बच्चे का अंतिम संस्कार होगा। हत्यारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया है। बच्चे की मां ने पुष्टि की कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था। इस दुखद घटना पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री यागया नवामारी ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की औपचारिक शुरुआत 7 अक्टूबर को मॉरिशस में की जाएगी। ये फैसला अफ्रीकी संघ के स्तर पर चलाए गए एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद लिया गया। मॉरिशस सरकार के अनुसार इस महाद्वीपीय रेटिंग एजेंसी की मेजबानी के लिए मॉरिशस का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में देश की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। साथ ही इससे अफ्रीका की वित्तीय व्यवस्था में मॉरिशस की भूमिका और सुदृढ़ होगी। मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इस फैसले पर गौर किया। विदेश में ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद अब न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र वाले नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहां की सरकार द्वारा इसके लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। इस पहल का मकसद है नौजवानों की सुरक्षा करना, खासकर सोशल मीडिया के खतरों के खिलाफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी होगी नौजवानों की उम्र का आश्वासन लेना। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमुसेस में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपक रघुबर जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे उदय रघुबर के मकान लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमुसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वरदत्त श्यामलाल जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके भाई आनंद कुमार श्यामलाल के मकान नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4:30 PM। रॉयल रोड पिथित रिविया में, क्षमा करें, नंबर 7 सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटली में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती जोधन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1:30 बजे लाशापेल और दौ दो मुहा रॉयल रोड पिथित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज ले सालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:01 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: RM3 Radio.

सबको के नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में सबको के स्वागत बाटे। हाँ, हमने हमेशा हद लेंदी के हमने बात करी लाजा खेती बारी के बारे में, और कई जना हमने से भेटालन जब बोले लन जा कहे

पढ़ने बतियाबस हौ तो पिकवा पढ़ने बतियाब त आज हमनी के ढेर मांग मिलल बाते ढेर रिक्वेस्ट मिलल बाते फिरों से हमनी बतियाईली जा एकर बारे में आज तनी सुन और देताय पर हमनी बतियाब जा और ऊ है घरेलू जन बगीचा माने कि हाउस होल्ड गार्डनिंग कैसे तू अपन घरे सकबा एगो बगीचा स्थापित करे कौन चीज चाहेला करे के कैसे करबा कौन कौन मदद मिलेला कौन कौन कृत्य बा इस सब के बारे में जस्ती जानकारी दे।

0: मिलल बाते रिक्वेस्ट मिलल बाते है तो पिकवाय पर बतियाए के हाउस होल्ड गार्डनिंग जे सोच पर कई जना करी लन हमेशा से करते आवत हुआ तनि सुन कुछ ना कुछ प्लॉटे लन रुपाई करी लन अपन घरे उस सब पर आज एकर स्थापित करे से आगे ओकर जो नीव जो फाउंडेशन है कौन ची है हाउस होल्ड गार्डनिंग की।
1: अच्छा घर पे आज कोई भी कुछ एगो रुपाई करे के तो हमार देखे में एगो चीज सबसे महत्वपूर्ण बा वो है कंपोस्ट।
0: अच्छा
1: काहे कि तोहर आंगन भी होई यानी कि एगो टुकड़ा जमीन बा घर लाइक घर के पास तो वो माटी के उपजाऊ रखे खातिन तो चाहेला ना माचे उगानी को कमें डाले के तो कंपोस्ट तक कामे आए। और फिर ढेर कोई ऐसा है जो जेकर पास गंदा एगो टुकड़ा जमीन नहीं बा वो एगो ऐसा जगह में रह ता सकेला फ्लैट में रहत हुई अपार्टमेंट में रहत हुई तो वो कंटेनर गार्डनिंग करत हुई तो अपन बालकों में या ओकर जो छत बा ओकर पर रूफ कर ओकर रूफ गार्डनिंग करत हुई तो अब जब ऐसा रोपाई कर बा तो परी थोड़ा जो छोटा मोटा कंटेनर बा रेसिपियों बा ओकर में माटी डाल के रोपे के ना तो वो माटी में जो न्यूट्रिया बा वो तो समाप्त हो जाए गते गते गंदा माटी में जो जैसे बोला जोड़ बातें वो नहीं रही तो वो जोड़वा आने खातिर ओकर में परी कंपोस्ट ओकर में आए या माचा उगाने को कर में डाले के तो कंपोस्ट हमारे देखे में सबसे महत्वपूर्ण बा। फिर बा पानी भी तो वो तो सबको जाने ला कि चला सिंचाई वगैरह करे के लेकिन जो कंपोस्ट नहीं रही तो माटी बढ़िया नहीं रही और माटी में जो जोड़ रही न्यूट्रिया रही वो कमें कमी आए तो नहीं तो नहीं सब निमन से आए पौधा जो निमन से डेवलपे नहीं हुई।
0: तो जब कंपोस्ट की बात करत हो तो एगो बढ़िया कंपोस्ट तैयार करे खातिर कौन ची चाहेला ओकर से आगे जितना जना हमने संगे जुड़ल होवन जे कुछ हो पूछे के बात है हमने के नंबर है 402-84-85-402-80-85 और जो टॉपिक पर हमने बताया था ऐसा वही पर कोनो प्रश्न रही तब पूछ तो हाँ भाई शंभू एगो बढ़िया कंपोस्ट तैयार करे खातिर हमेशा बोले ला जो हमने छिलका सब इस्तेमाल करी ला नहीं चाहेला फेंके के तो ये सब के अलावा कौन ची चाहेला करे के कंपोस्ट तैयार करे खातिर।
1: अच्छा तो रसोई घर में से जितना जन छिलका वगैरह मिलेला जन माचा ऑर्गेनिक रहेला तो ओकर से सब सा कंपोस्ट बनाए ओके कंपोस्ट बिन में डाल दी लेकिन ये सब जन रसोई घर से जन छिलका वो सब रहेला जन वेस्ट रहेला ऑर्गेनिक वेस्ट तो वो गन्ला ओकर में पानी ढेर है और वो जस्ती ओकर में गन्ला आजुत नाइट्रोजन जस्ती है ताजे ओकरे खाली कंपोस्टिंग करते जब सर दिखबा जे कंपोस्ट बिन में डाल दे बा तो रोज अगर ऑर्गेनिक वेस्ट किचन से ओकर में डलते जब जब तो दिखबा हमेशा भिन जलवे रहेला
0: जी
1: और बिन में जब दिखबा तो भिन जलवे रहेला ओके घुमाई भू कर बा तो दिखबा भिन जलवे रहेला और क्योंकि रोज भी रोज टू रसोई घर में से एगो चीज आन के कंपोस्ट बिन में डालत हुआ तब ना ओके चना सरे के ओके समय भी दे के ना तब रोज जो कमें डलते हुआ तो दिखबा तो जस्ती समय भी लेवेला तो हम बोलती पहला तो रसोई घर का दिन दूगो कंपोस्ट बिन रखे के ताकि जब एगो थोड़ा सुन भर गल तो दूसर में जब भरबा तो एगो आके ओके समय मिली सरे के
0: तैयार होके।
1: अब लेकिन केवल रसोई घर के ओकर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रयोग करबा जैसे बोली तब भिन जल धीरे रहेला समय लेवेला तो इदेयाल में जैसे पूछल तो चाहेला ओकर में तुन सूखा चीज भी डाले के सूखा ऑर्गेनिक वे जो सूखल बातें तो वो कहाँ से आए वो गल आंगन तोहर हो तो आज पत्ता बातें सूखल
0: हाँ
1: या फिर डाली बा कुछ सूखल कोनो चीज सूखल बातें
0: लकड़ी
1: लकड़ी भी हाँ लेकिन मोटा मोटा लकड़ी नहीं बहुत समय ले आज लकड़ी हुई तो परी ओके छोटा छोटा तोड़ के भैंजी जैसे बोला सा एने उने तोड़ के या फिर ओकर ओकर से कैसे बोला सा लकड़ी के चिप्स बना के छोटा छोटा तब ओकर में सब डाल दे लेकिन मोटा लकड़ी बहुत समय ले सूखा लकड़ी चला रह के तब बुझ बुझ ओकर तोड़ के तब सब ओकर में डाल दे तो लगभग अब एगो निमन कंपोस्ट बनाए खातिर गनला आज वॉल्यूम से आज देखब तो आज एक पैया किचन वेस्ट डालनी तो दू पैया लेके जो सूखल बा उ डाल दिया ये सबसे निमन रही
0: एगो रेशो का रेशो

0: एगो रेशियो कहते बा लाने के हाउ जन सुखल बा ओकर में बोला सा कार्बन ज्यादा बा और जन गन्ना ताजा बा जन किचन से होता रसोई घर से होता ओकर में नाइट्रोजन ज्यादा बा तो दू गो वॉल्यूम जन सुखल बा और एक गो वॉल्यूम जन नहीं सुखल बा गन्ना जन
1: कंचावे बा
0: हरियर बा हाँ तो वॉल्यूम वॉल्यूम के हिसाब से देखा तो रेशियो होगा कार्बन के दू गो और नाइट्रोजन के एक गो ये इडियल रही लेकिन घर पे निश्चय नहीं है कि गन्ना इडियल ही चला रहे कि अब नए हुए उतना
1: नए
0: हुए आज उतना सुखल जितना भी हो लेकिन लेकिन डाल लिया एक वॉल्यूम एक ही एक होल तो वो चाह हम नीचे कंपोज बनाए कि ना तो वो से बन जाए लेकिन आज रोज ओकर में डल्ले जेबा कंपोज में डल्ले जेबा डल्ले जेबा डल्ले जेबा तो के सरे के बहुत समय ले खाते अच्छा रहा दूगो कंपोज बिन रहत एगो में जब भरते जेबा तब एगो कैसे बनी एगो वॉल्यूम एक पहिया रसोई घर के तब दूगो पहिया सुखल एक पहिया रसोई घर के दूगो पहिया सुखल ऐसे डल्ले जाब सब ज्यादा अच्छा रहा
1: जी तो हमने के बतावा जो कंपोस्ट घरे तैयार होला और जो हमने किनी लासा जो बैक द सॉइल उस सब किनी लासा वो काहे जस्ते अच्छा बाटे
0: अच्छा एक ऐसे आगे और एक चीज जो कंपोस्ट बनाप सा घरे जब सर जला निमन से तो कर ओकर ओकर दुर्गंध नहीं रहेला
1: अच्छा
0: हाँ वो अच्छा महकेला
1: कितना वक्त लेवेला है वो कंपोस्ट तैयार होके
0: आज तो लगे कंपोज भी ना तीन महीना के अंदर ही सके हो जाए नीमन से सर जाए तब सकबा कंपोज बिन में से निकाल के थोड़ा बाहर छोड़ दे तब वो सकबा तामीने भी कर दे या नहीं हो तामीने कर बा कोई बात नहीं बात अब कंपोज बिन तो अनेक प्रकार के बा एक बार जैसे वो वेस्ट बिन कहते रहला रखल रहला एक आध गुह तुनो की तरह गन्ना लटकावल है लेविए में तो के गन्ना हुले कर बा निकाल दे के जब कोंटाक माटी पर रही माटी माटी में कोंटाक रही ऐसे जब पहला से जब डल कमे तब माटी में कोंटाक बा अब जब कैसे बोलनी रेशियो 2:1 जन ग्रीन बा जन हरियल बा तब जन सुखल बा तो हमेशा जब ऐसे कर दे बा तनिशुन माटी ऊपर से फेंक दिया
1: हाँ तो खाली चाहेला तनिशुन माटी हो जन जन रसोई की चीज हमने इस्तेमाल करे थे सब जन सुखल पता उस सब लकड़ी उस सब हाँ ये चाहेला
0: हाँ हमेशा जन ऑर्गेनिक बा
1: ऑर्गेनिक बाते जी
0: अब जन प्रश्न पूछला काहे घरे के जन बनावल कंपोस्ट उ जन सकेला जन किनत हुए बा टॉपसॉइल जन टॉपसॉइल जन किनेला जन साक में भरल बा उ सकेला हम घरे के जन से निमन बा तो जब टॉपसॉइल खरीदा तो तब बोले के तहत टॉपसॉइल
1: तो वो तो कंपोस्ट में नियम बात है ना
0: तो वही खातिन वही खातिन
1: तो सेम प्रक्रिया जन तरीका
0: नहीं नहीं आज कोई कंपोस्ट किनत हुए उद अलग उज सा चीज एगो स्टोंडा सब रहला कंपोज खरीद जाता था वो अच्छा बा अब आज कहीं से माटी खरीद जाता था जैसे बोला सा टॉप सोइल तो एक आदमी तो एगो क्वेश्चन मार्क रहला ना कि हो टॉप सोइल वा कहां से आलबा उस अकेला टॉप सोइल होई लेकिन निर्भर करेला ओकर क्वालिटी निर्भर करेला कहां से हो टॉप सोइल निकालल बा
1: जी
0: आज ऐसे ने कोई जगह में से हो टॉप सोइल वा निकालल बा जहां पर पूछो नहीं मन से जमती नहीं रहल तो यानी कि तो टॉप सोइल अपने आप में गन्ना ओकर में कमी बातें अब तू खरीदा तो तू नहीं जानते ना कहाँ के है ओकर ओरिजिन कैसे है अब तू लेके वही लेके गन्ना अपन पो में डलबा या अपन आंगन में लेके डलबा तो निश्चय नहीं बाकी जन खरीद ला वो निमन रहल घरे जन तू तैयार कर ला तू तो जाना तो ना घरे से हो किचन वेस्ट डल ले हुआ आंगन में के जन पत्ता वगैरह बा सब मिला के वो बनलवा तो जानता वो तो हाँ नीमन क्वालिटी के रही ऊ खातिन गन्ना हाउ हाउ की तो हाउ अनुभव बातें कैसे तैयारी होल बा तो ऊ खातिन घरे के कंपोस्ट नीमन बा लेकिन आज कोई तोरा हाउ गाँव चुवा सकी दे तोरा हाउ पीस ऑफ माइंड सकी दे कि देखा जहाँ से हम जो टॉप सोइल बा हम निकले हैं नीमन बा या फिर हो टॉप सोइल में हम अपन से कोनो फीमिया कोनो कंपोस्ट मिला दे ले हैं ता अच्छा बात है
1: तो उमे कोनो कुन कुन कुन चीज रहेला हो जो न डालत हो कंपोस्ट बनाए खातिर कुन चीज रहेला बैक्टीरिया रहेला कुन चीज होबा उमे।

0: Voltige, qu'on peut se mêler. Et gota décibola microbes. Qu'on peut se décibola d'organelle.
1: Je.
0: Niman qu'on peut se d'organelle. Et go, niman sugan mêla. Hat mêlika, aïlika magba, la chamakila. Ihi, sanket kerela, ki compost me ganla niman microbate. Aje compost me maru microbra hi, ta durgan rehi. Ab niman microbe punchi ha. Niman
1: microbe. Kaise pata
0: chali? Netas, ai, bahakla ta niman makata na. Ab niman microbe punchi ha, niman microbe, ai sa nego chi ja, jon mati me ganla, jon machi organi ma fe turata, ai, lea me se jon nitrogen ba, ta ekargo microbe ha, jon nitrogen fixing karela, ou karela, yani ke décomposer karela, ekote, kana nitrogen fixing bi karato e, ekargo, dusa, solubilizing bi karela, vagera, vagera, i rahal, i karan, microbe importa ha. Ab dusa chiz kun chim jela, jab compost karela, kaise mali carbon, nitrogen, manau kame, or, dher chiz bate, kaise, potassium bhi mili, phosphate bhi mili, ta ho compost me, हमने के पौधा के जो रोपाई कर अब सा ओके न्यूट्रिएंट भी मिले तो दो प्रकार के बा तब ये होल कि अब घर पे आज कंपोस्ट कर ला तो तोरा नए परि जाके फर्टिलाइजर खरीदे के
1: जी
0: क्योंकि हो कंपोस्ट में थोड़ा भी बा आए खाए के लेकिन मिल जाए पौधा के
1: तो ये सब जो बैक्टीरिया वाले जो फंगस उस सब उमे रहेला और लोग के संख्या के बढ़ाए खातिर कौन सी चाहेला करे
0: हाँ। तो अब गनला या तो बगीचा में डाला या तो फिर वो कंटेनर में डाला शुरू में माटी में कंपोस्ट मिला के डाल देना अब शुरू में तक कंपोस्ट ओका में बाते यानी कि तनी सुन ओका में तक मिक्रोब आल ना अब आज तो आके सिंचाई कर बा सिंचाई ऐसा करा तो कि गनला पच पच माटी हो जाता बाहर में भी या कंटेनर में भी तो वो ठीक नहीं है
1: जी
0: जब पच पच माटी रहेला तो कौन चोला माटी में जो हाउ आएगा शो हा तब पानी से और जन कनाल आए आशु ने ना पो उस सब भर जला जब भर जला तब ऑक्सीजन के मात्रा जन बाते कम हो जला जब कम हो जला तब जन मिक्रोब अब जब रहा निमन मिक्रोब रहा ना ये लोग एरोबिक माइक्रोब समझ सा यानी कि ऑक्सीजन ये लोग के काम रहेला तब जन मिक्रोब निमन बाते वो मिक्रोब जन बा मरे लगेला तब एक और चीज बा जब सिंचाई कर बता जमा ठीक से करे के ना कम ना ज्यादा है एगो अब दूसरी चीज ओ मिक्रोब के जिए खातिन ओकरे भी तो अब ऑर्गेनिक मात्रा चाहेला अब जब कंपोस्ट के तैयारी कर ले हो तब एक कुछ तब मिक्रो आए कंपोस्ट डाल देला लेकिन अब दूसरा कुछ जब रोपाई कर बा या फिर देखो ऐसा ना कोई चीज रोप ले हो जो कि जैसे बोला सो का लाइफ साइकिल लंबा जैसे मिर्ची के या फिर बैगन के उतर देखो 10 महीना 12 महीना मिर्ची तो 1 साल से भी ज्यादा भी रह जाला ठीक से आपको देख रेख कर बा तो 6 महीना के बाद 7 महीना के बाद 4 महीना के बाद एगो ठीक एगो फिक्स समय नहीं है लेकिन साल साल में 1-2 बार ओकर जड़ी लगे टेंशन कंपोस्ट लेके डाल दिया आजे आजे कंटेनर में हो तो कंटेनर के टेंशन माटी हटा के ओकर में टेंशन कंपोस्ट डाल दिया
1: यानी कि कंपोस्ट जन बातें जन गांछू सब बातें रुपाई की जन खेती बाड़ी बातें उन लोग के और बढ़िया बनावेला अब एगो प्रश्न तो हर से पूछती बाय संभो कि कबो कबो हो लाचा हो जाला ढेर जन खेती हर उस सब बोली लंजा हम खाद डालत हैं हम कंपोस्ट डालत है तबो पे हमर जन जन गांछी के पत्ता बातें वो सब पियरा चला ई काहे
0: हाँ तो देखा आज एगो माटी बढ़ियार बाते यानी कि ओकर में ऑर्गेनिक मैटर डालत हो जैसे कि कंपोस्ट डालत हो अब ओकर इलावा ऊपर से आज खाद भी डालत हो आज एगो समस्या होता जैसे तू बोल पत्ता पी जाता वगैरह वगैरह तो वो सकेला एक दूगो चीज खाती नहीं हुई एगो तो सकेला हो जन माटी हुए बाते ओकर में एगो कोनो एगो समस्या बात है जैसे कि सकेला लासी जीते हुए प्यास हुई
1: प्यास
0: के गो समस्या बात है तो वो चला जाने के लेकिन दरी में आज निमन से आज कोई कंपोस्ट डालत हुए तो ये प्रॉब्लम चला नहीं हुई के हाँ क्योंकि आज नहीं जे नहीं डाला था ओके सकेला हुई मैं जे कंपोस्ट के प्रयोग कर रहा था जे गाय के फीमिया प्रयोग करता ओके है प्रॉब्लम कबू नहीं हुई
1: तो एगो एगो खेती हर जो प्रोफेशनल बात है वो तो जानी अब धरला एगो गार्डनर को कोनो कोनो जो कैसे बोला सर हॉबी गार्डनर

0: वो अपन माटी अपन आंगन में वो कैसे अपन माटी के पीएच चेके करी कैसे जानी वो सब।
1: हाँ देखा, हमने लगे था ये फैसिलिटी है चेक करे के, लेकिन मॉरिशस में आज 400,000 घर हुई रेजिडेंशियल, अब 400,000 रिक्वेस्ट आज आए, तो इतना मुमकिन नहीं है ना, थोड़ा एग्जाजरे बातें। तो हम बोलती अनुभव के साथ थोड़ा पता चल जाए आज माटी में वो प्रॉब्लम हुई कि नहीं, क्योंकि आज तू ठीक से कॉम्पोस्ट की तैयारी कर ले हो, ठीक से कॉम्पोस्ट के दरी में डल ले हो, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं लौकी। लेकिन आज कोई ये नहीं करत हुई जे कॉम्पोस्ट नहीं डाला था, जे गन्ना फीमिया नहीं डाला था, जे ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला था, ओके ही सब लौकी, तो ओके संकेत मिला था कि तुहर माटी में कुछ नहीं छपाते, बढ़ियार नहीं बातें चला माटी के बढ़ियार बनाए के, तब चाहला ये सब डाले के। अब कॉम्पोस्ट में एगो चीज और मिलेला, जब बोले खाए के मिला तब मिको एलिमा भी मिलेला। कभी कभार होला कि जब एगो रोपाई कर ले हुआ खेत में, खेतों में भी जो खेतीहर करेला, तो सकेला खेत में एगो मिको एलिमा कमती हुई, तो ये सब समस्या होला। लेकिन फिर से बोलता है जे कॉम्पोस्ट के प्रयोग करेला, जे फीमिया के प्रयोग करेला, खासकर गाय के फीमिया के, हम हो जैसे बोला सा मुर्गी के फीमिया ओकर बात नहीं बोलता है, वो बहुत आजोती रहेला, वो तो एगो खाद हुई गई है, तो जे ऐसा फीमिया गाय के फीमिया या कॉम्पोस्ट के प्रयोग करेला ओके ऐसा समस्या नहीं हुई।
0: तो चलो हमने संगे जुड़ल हवा साथ दिया जा, तनी देर में हमने वापस आ जा।

0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हुआ। तो हाँ, आज हमने बताया था ऐसा, बात कर रहा था ऐसा कि कैसे घरे तू अपन बगीचा के स्थापित करबा, जो नींव बातें वो हा कॉम्पोस्ट इतना चीज बाइकर पर बतियाए खातिर। और हमने के मेहमान हुआ फिरों से सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर फागेदाने से श्रीमान शंभू जी। और भाई शंभू, हमने बात कर रहे थे जा कॉम्पोस्ट, ढेर जना हमने जानी ला जा वो लोग खाद वो सब खरीदे लन जा, तो वो लोग के कौन ची बोलबा जे कॉम्पोस्ट घर ये बनावत हुआ तो एक जरूरत है बाहर से किने के?
1: ओकर से आगे और एक क्वेश्चन बोल लेला।
0: हाँ,
1: हाँ, घर पे आज है जन पत्ता पियराला सके और दो कारण खातिर सकेला, दो कारण खातिर हुई। एगो तो आज गन्ना कंटेनर वगैरह में हुए या कोनो कोना में हुए तो ज्यादा सिंचाई आज करत हुई, जैसे बनी पचपच माटी पचपच बातें तो आए घासों कमती हुई। अब पानी जब देर डलब तो माटी में जन न्यूट्रिया बा उधोवा के चल डाला,
0: तो हयो चाहेला जाने की कब चाहेला पानी डाले की कितना चाहेला।
1: हाँ, तो जब देखब माटी गन्ना उम्मीद बातें गन्ना सुखल सुखल ने माते में इमीज बात चला सिंचाई नहीं करे के ये नहीं है कि चला रोज के रोज चला पानी डलते जाए कि जमे मटिया एकदम से भिंजले रही, ऐसे नहीं। पचपच एगो माटी की पकड़ब गोला कहते हो जाए भिंजल गोला कहते नहीं छाओ वो यानी कि पचपच बात है। तो ये कारण से कि हो या तो फिर सकी पिलवा रहे
0: अच्छा।
1: बीमारी चला हो तो वो खातिन सकेला कि कैसे पत्ता के नीचे आजे कैसे पिलुआ हुई व्हाइट फ्लाई या फ्रिप्स वगैरह तब पता से कि पियर हो जाए, या फिर एक आध मलादी या जो बीमारी या जो आवेला तो उसे भी पता पियर सकेला हो जाए। हाँ, तो अब जन प्रश्न पूछता जे खाद खरीदता देखा घर पे आज तू कॉम्पोस्ट बनावत हुआ कॉम्पोस्ट के प्रयोग करता तो वही काफ़ी बात है।
0: अच्छा,
1: हाँ, ओकर में और कुछ खाद वगैरह डाले के आवश्यकता नहीं बात है। एक अब तोहरा मन आज कॉम्पोस्ट नहीं बात लगे उ खातिन खरीद ई सकल सकल ओके एक में समस्या नहीं बात है। लेकिन हम के रहत कोई के बोले के रिकमोनाशों करे के तो हम बोलती देखा खाद के प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि घर पे खाद खरीदे खातिन पैसा भी जला ना।
0: हाँ,
1: एक गो पैसा जाता यहाँ पर ही तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो रसोई घर के तो फेंका तो जो सकता गन्ना रिसिकले करे तो अब जब रिसिकले करे तो पर्यावरण और विगन खातिन ये भी तो अच्छा बा ना। अब ओकर में तो आए जो न्यूट्रिया बा ओकर में मिली
0: जी।
1: अब एक और एक चीज बा खाद जो बा जो खरीदा तो फेच दीजा जो बोला जा वो तो सीमिक केमिकल है ना। अब यानी कि तू जाके एगो पदार्थ रासायनिक पदार्थ जो बाते एगो भोज सीमिक जो बाते वो खरीद के आना तो अपन जन सब्जी बाते जन पौधा बाते फल बाते ओकर देख रेख करे खातिन तक आज कॉम्पोस्ट के प्रयोग करता तो जन तरह सब्जी मिलल खाए के जन तरह फल मिलल खाए के तो ओकर में तो यानी कि हो रासायनिक पदार्थ नहीं बाते
0: जी।
1: तो जस्ती अच्छा नहीं बाते एगो एगो एक जना कि सब्जी मिलता खाए के
0: पैसा वो नहीं जाता।
1: हाँ, पैसा वो नहीं जाता और स्वास्थ्य खातिन गने बोला तो जिसपा ओकर में भोज सीमिक नहीं बाते तो ओकर जन स्वाद जन तरह मिली ओकर में जो मिठास मिलेगा जो एगो चीज में रासायनिक पदार्थ में जो में पेस्टिसाइड नहीं हुई
0: जी
1: ओकर ओकर जो स्वाद रहला वो अलग रहला। बाजा अपन घरे तू भी तू तू भी सकब एक पर है जीविकोस जन बा है अपन से देखे
0: जी एगो सैटिस्फैक्शन मिलेगा।
1: हाँ, वो भी मिली है। लेकिन सब्जी में मंडी में एगो सब्जी खरीदा ऐसे एगो एगो लीची खरीदा। अब घर पे एगो लीची तू बोले हुआ रोपले हुआ और वो लीची में खाली कॉम्पोस्ट

0: pesticide ned hal, fertilizer ned hal. How le chik haya aur jan mandi mein milal u khaya.
1: Ji.
0: Dekhiya kon okar mein fark rahela. Aur fir jaise bola एको सैटिस्फैक्शन रहला तो तू अपन से हो ले चुवा लेके हां अपन हाथ से कुछ कर ला वो जाने तो का मेरे को पोजीशन में कोई बात है दो गो मिला तीन गो मिला चार गो मिला दस गो मिला जस्ती मिला जैसा के ला तो अब है अपन परोसी संगे बांट दे बा
1: जी
0: कोई आए तो ओके दे दे बा वगैरह वगैरह लेकिन हो जान सैटिस्फैक्शन आ मिले ला तो उतना जन खरीद के अनला उस खाई ला कमी नहीं मिले ला और एक चीज रहला खरे आज तू इसे बोली जा आज के टॉपिक है हाउस होल्ड गार्डनिंग तो घरे आज तू कोई ना चीज के रूपाई कर तो तुहार खाते को व्यायाम कहते चला को एक्सरसाइज कहते चला तो ओकर एक एक्टिविटी रहेला तो हो एक्टिविटी से तुहारो जन स्वास्थ्य रहेला वो ठीक रहेला
1: जी
0: फिर ओकर में जब हो हो एक्टिविटी के साथ हो जन सैटिस्फैक्शन लेके मिलाइबा हो जन पीस ऑफ माइंड मिलेला हो स्ट्रेस सब भाग जला
1: जो स्ट्रेस हार्मोन वो कम ती हो जला
0: सब भाग जला तो और खातिन बेहतर रहेला
1: तो देख ला जितना जना अभी गार्डनिंग करत हुआ चाहे प्रोफेशनल हुआ कि नहीं कुछ न कुछ करबा मूवमेंट में रहबा एक्टिविटी करबा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेला और बढ़िया खाना मिलेला सैटिस्फैक्शन जैसे हमने बोला था जा वो सब मिलेला तो भाई सबू हमने के बोला जो घर के अंदर जो उगावल छोटा गौचू सब बातें तो वो तनि सुन लंबा पतला और कमजोर काहे हो जाला
0: हाँ तो देखा ज़्यादा तक जोन मंडी में देखी ला जा जोन चीज मिले ला कैसे एगो टमाटर लिप सा उसके ला वो टमाटर जैसे बुला सा उसे मौस इब्रिड से रहल कैसे हम वाइटे सबके नाम नहीं मिले लेकिन सके ला इब्रिड रहल कैसे हम ये करेला छोटा छोटा करेला रहला ना ऐसे हाँ। छोटा बॉम्बे रहला थोड़ा अब देखा मंडी में अब जब लंबा लंबा करेला मिलेला पतला पतला लंबा लंबा ये सब इब्रिड
1: है कि लोकल नहीं है
0: लोकल नहीं है ऐसे ही अनेक चीज ऐसा बा सब्जी जोन मंडी में मिलेला जोन के बोला सब वाइटे इब्रिड है अब जोन वाइटे लोकल रहेला तो वो वाइटे इब्रिड कहते ना बड़ा नहीं होला अब जोन वाइटे इब्रिड है वो किसी बोला था रिसोर्स डिमांडिंग है एनर्जी एफिशिएंट नहीं है तो ओकर खातिर पहला जस्ती खाए के डाले कैसे खाद डालाए जस्ती देख रेख करे क्योंकि जस्ती सकेला समस्या हो तो पिलुआ वगैरह के चला कंट्रोल करे के नहीं तो परफॉर्म नहीं करी अब फिर से आला सा हाउस होल्ड घर पे अब घर पे चला है सब इब्रिड सब दे रुपए के हमने तो कोम्पोस से
1: काम चला
0: हाँ काम चला होते हैं सर तो हमने के चला जैसे बोला सर हमने के जो वैसे लोकल बा ओके चला रुपए के यानी कि ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स घर पे यानी कि तू ही सकबा अपने से जो बीज निकाले तू ही सकबा अपने से भुचिया निकाले हवे के चला रुपाई करे के अब जब एक रुपाई करते हैं जा ठीक से करते हैं जा लेकिन रुपाई जब करते हैं जा तो जो कॉम्पोस्ट बा या जो फिमिया मिनरल बा वो कैसे करते हैं सर तो गन्ने तो बियो गल बा नॉन केमिकल हो गल बा तो एक जो परफॉर्मेंस जो बा हमने फोर्स नहीं करते सर कैसे बोले सर हाउ एक आध को सुनने में आवेला जब घोड़ा के दोपे का दोनों दस्ती भाग गया था सब्जियों के भी हमने तो कुछ दोपास कुछ नहीं माना कमें नॉन केमिकल बातें कॉम्पोस्ट से बातें तो वो जो मिलल बात चला हो में से वो सैटिस्फैक्शन वहाँ आने के सके ला कैसे जस्ती बेहतर हो या जो निमन से माटी के देख रेख कर लें सर निमन से आय राशन कर सके ला इम्प्रूव हो समय के साथ लेकिन सैटिस्फैक्शन वहाँ हुए में से चला निकाले
1: और जैसे बोले थे वो पानी चाहे ला घमा वो चाहे ला ना
0: हाँ घमा वो चाहे ला बस घमा आज घमा नहीं रही तो जो जो पत्ता रहेला उतना निमन से डेवलपे नहीं होला जो डाली रहेला डेवलपे नहीं होला तो जो हो क्लोरोफिल रहेला जो हो जैसे बोला फोटोसिंथेसिस चला करे के तो वो पौधा नहीं सकेला उसे निमन से करे
1: तो कभी कभी हमने देख ले ऐसा जो खेती और उसे वो लोग बोले लंसा कि कभी कभी जो ग्रीन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल होला खाद के इस्तेमाल होला उसे जस्ती फल कुछ नहीं मिलेला पर पत्ता बिगेला ढेर पत्ता बिगेला ये वो प्रॉब्लम है
0: हाँ कैसे कि देखा जब एगो पौधा के बहुत खायो के मिलेला तो नहीं छा और खास कर जो आजुत रहेला नाइट्रोजन तो ग्रीन मैन्यूरिंग जैसे बोलें तो कहना कहना कैसे पॉलिश की बातें जो ताक बातें तो अलग ही बात है अब तो के चॉप चॉप करके तो के अब माटी में मिला के डाल दे तो पौधा जो बा ओके मिली खाए

0: में ज्यादातर आपके नाइट्रोजन की मिली तो कहते हैं आप जस्ती वेजर फेंकी लालियान फेंकी एक कोई अच्छा बा आज तू कहला थोड़ा मन में कोहरा के भाजी खाएगी तो चला जाने के कैसन पौधा के तू कुंची देव देवी कर
1: तो
0: खाए
1: तो ओकर से आगे चाहे ला जाने के जब कोम्पोज बना हुआ था ऐसा धरला सुसु बाते भाजी बाती उमे कौन ची बाते
0: हाँ लेकिन जब कोम्पोज डालते ऐसे तो उसर गलवा ओकर में सकेला ओकर में आजोत भी ज्यादा हुए लेकिन उसर गलवा और ओके तो डाला सर एक ही बार
1: जी
0: हाँ लेकिन हम रहते हैं आज बार बार आज डलवा ऊपरे से ऊ में जन गन्ना सरल नहीं बाते ऊ लेके डाला तो तब जाके गन्ना एक चिंदे बालों से सकी कर दी तो हमने कोम्पोज जब प्रयोग करब सर जब तैयारी करब सर तो चलाओ कि सरल रहेगी
1: जी तो हजा पर एगो प्रश्न तुहर से पूछब जो पौधा के प्रोपेगेशन हमने बोली रहा सर जब हाउस होल्ड गार्डनिंग करत हुआ तब प्रोपेगेशन कैसे चाहिए करे के
0: हाँ देखा घरे पहला जो खरीदा था मंडी में से जब कुछ खरीदा कैसे को टमाटर खरीदा थोड़ा निमन से एकदम से गनला खूबसूरत लौका था तो ओकर में से कबो बिया निकलवा तो दिखबा पौधा हुए लेकिन थोड़ा ओकर में टमाटर ठीक से नहीं हुआ नहीं हुए तो वो संकेत करा कि तू एगो इब्रिड में से निकल ला
1: अच्छा
0: एगो उदाहरण जो होता है कैसे वो इब्रिड में से इब्रिड जो सब्जी है ओकर में से चलना बिया नहीं निकाले कि आज थोड़ा बिया के काम हुए आज थोड़ा एगो हाउस होल्ड गार्डन मन हुए करे के तो हमने के कृषि मंत्रालय के बर्कली एक्सपेरिमेंट स्टेशन लगे जा या ओकर जन शाखा हो वहाँ जाइया वहाँ पर जितना बिया मिलेला हमने के मंत्रालय द्वारा वो सब ओपन पोलिनेटेड है वो इब्रिड नहीं है
1: जी और वो सब हॉट वाटर ट्रीटमेंट करा गल बाते
0: ओकर ट्रीटमेंट ओकर में होल बाते ओकर में हॉट वाटर ट्रीटमेंट नहीं नहीं ओकर में नहीं होल बाते क्योंकि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जब कर बता चला तुरंत या एक दिन में चला रुपाई करे के लेकिन जितना बीज मिलल बा वो ठीक से ओकर तैयारी करल बा वो खरीद के सकबा फ्रिज में रख दे ओकर में से प्रयोग कला फिर जो बचल सब फ्रिज में डाल दे निमन से बंद करके वो रही ओकर में समस्या नहीं बातें ओकर में को दिक्कत नहीं बातें तो घर पे आप गनला तू कैसे लालू रूप ला आप ओकर से बिया निकाले तो हमेशा जो पहला फल बा टमाटर की हुई पहला फल बा हमेशा वो पहला निमन फल बा वो छोड़ दिया
1: अच्छा
0: तब ओके जब टमाटर गन्ना खूब लाल हो गल बा पौधा पर ओके ओके देमिमिया कुछ नहीं खूब लाल हो गल बा पौधा पर ओके लेके तोड़िया
1: अच्छा।
0: जब जन लालू बाते लालू लेके निमन से है सुख गल बा गांची पर पहला लालू जन बा वो लेके निकल जा कोहरा रोपे लाला तो कोहरा रोपे लाता तो कोहरा में तो जब खाए के बखत हो तानो सकब सा खाए लेकिन जब खाए के बखत हो तब तो पकली बाते भीतर हाँ। में तब भीतर में से जो हो बिया बाते वो लेके निकाल के पहला सूखे के डाल दिया तो लालू के जो लालू के बिया बाते उतर पौधा में सूख गल बा उस रख दे टमाटर के छला बिया निकाल के सुखाए के कोहरा के छला सुखाए के ऐसे ही वगैरह वगैरह जितना चीज बा जो इनके निकाला तो आज सुखल नहीं चला खमा में डाल के सुखाए के तब निमन से रख दिया तब थोड़ा थोड़ा लेके सब बजा सेमे करे तब वो कर उपाय कर दिया तब बाद में आज फिर से चला तो ऐसे चला लेके बिया निकाल के अब एक आध गो चीज रहेगा ओकर बिया नहीं चाहेगा कैसे लाके जो यो बातें तो लाके जो यो एक जब रोपला तो बड़ा हो गल तो जो के काट के निकल ला तो नीचे के जब भाग भाग सको ओके तोड़ तोड़ के लेके रोप दे कैसे अब लेकिन दूसरा साल दूसरा कुछ जब बड़ा हुए या तीसरा कुछ जब बड़ा हुए तब सकी आज हाँ तब फूल फेंकी तो वो सकबा फूल छोड़ दे तब ओकर में से भी सकबा बिया निकाले बाद खातिन पुदीना जनबा ओकर चला बुचिया निकाले के बुचिया निकाल के माटी में खोपुस सब डाल के निमन से डाल देब जीत्या जनबा
1: जी
0: उसी तरह जन बातें तो ओकर जो चीज बातें ओके काट के निमन से नीचे से देखा छोटा छोटा छोटा फेंकेला तो नीचे से काट के तो लेके लगा देबा लेकिन ऐसा जब बुचिया वगैरह बा जब माटी में डलबा तो माटी के सूखे नहीं दिया पच पच ने चला के एक छोटा सुन्नी में जीते चला रहे
1: तो अभी बोला था जो बॉकली जो हौजा परी जो सेंटर बातें हौजा परी सकियन छ जाए अब धरला हमके मन बातें अपन घरे जो प्रोपेगेशन बातें करे के एगो जो प्रोपेगेशन चैम्बर जैसे बोलल जाला वो कैसे हम स्थापित करब
0: नहीं घर पे प्रोपेगेशन चैम्बर नहीं चाहला वो आज एगो नर्सरी
1: एगो नर्सरी
0: नर्सरी ऐसा नहीं व्यक्ति बनाए

0: नो कि मन बा ढेर एकदम से करे के ताकि उस हकीकत ने आपको मर्शल रूप से अपन बीज के बीज बीज खातिन ओकर प्रोजेक्शन खातिन ऊ नर्सरी स्थापित करी ताकि उस हकी बेचे घर पे आज हाउस होल्ड गार्डनिंग कहते हैं सर तो हमने कि ऐसा नहीं को कुछ हो गल स्ट्रिक्चर नहीं चाहे ला ऊ जैसे जैसे हम बोली तू रोपाई कर लो में से फल मिलल फल के चुना हाँ बिल्कुल सिंपल ओकर में से फल के चुना ओकर में से बीज निकाला
1: जी
0: जैसे बोलिए भिंडी बाते मिर्च बाते ऐसे ही सब चीज़ में से पगल निकाल के या रसोई घर में आन दिला तब उसे काट के निकाल दिया तब सूखे के छोड़ दिया आई खिड़की के पास कुछ को बोल कुछ में डाल के सूखे दे दिया तब देखे रख दिया।
1: अच्छा हमेशा एगो बात बोली ला स्ट्रेस चाहेला करे के कि नहीं चाहेला करे के तो कैसे करबा जब घरे अपन हाउस होल्ड गार्डनिंग करत हो अभी देख काहे कि अभी घरे सकेला लोगा तो नहीं पे लीची बाटे आम फूलल बाटे फरल बाटे उस सब बाटे तो कौन चीज चाहेला कौन चीज स्ट्रेस कई जना नहीं समझेलन कौन चीज स्ट्रेस
0: फुलाता
1: फुलाता
0: लेकिन सीजन ना नीला सा कन जनवरी महीना उधर होला ना देखा इस हाई स्ट्रेस हुआ ये सब्जी पर है चालू निकल गया।
1: अच्छा
0: सब्जी के स्ट्रेस कर तो तीन महीना एक महीना जिला उतना मर जाए हाँ स्ट्रेस हुआ ये जन है ये जन कैसे लेक्सी के नाम ले ला ता ये लोग के चला स्ट्रेस करे कि ताकि आज आज गन साल भर एगो जन लेक्सी के पेड़ बा ओके तू सिंचाई करते गए ला कन कॉम्पोस्ट फेंकले गैला तारे में ओकर या खाद डलले गैला तो उ गनला सकेला नहीं फुलाए उ जब टेंशन स्ट्रेस ही रहा तब फुला ला तो हाय जब जाने ला हाय लेक्सी की फुलाए के अभी सीजन वा अभी तो जब आवे ता तो चला ही सब चीज नहीं करेगी और भी तू ऐसा नहीं कोई जगह में रहा तो थोड़ा बहुत बरसात होता देखा जाता है लेक्सी के जन पेड़ बा जो पत्ता बा हरियर बा तो एक आवश्यकता ने बा सिंचाई करके छोड़ दिया तब ऐसे ही उस स्ट्रेस रही मौसम मौसम अनुसार स्ट्रेस ऐसे एगो प्रोग्राम कर लीजिए जैसा अभी सर्दी के समय में से लेकिन वर्षा कम होता
1: जी
0: हाँ तो उस स्ट्रेस हुई बात है ये सब प्रकृति जाने ला कौन समय है पानी कमती बरसेला क्योंकि ऐसा नहीं पेड़ बा ओके चला फुलाए के लेकिन जब जब अब पेड़ फुला जाए तब ओकर में तुन फल धरे लगी दिख पर छोटा छोटा गोल गोल फल धरा था तब सिंचाई सब बकाया करे आजे वर्षा हुई थोड़ी हर हफ्ता तने कर लिया लेकिन आज नहीं हुई थोड़ी तो हर हफ्ता तने सुन सिंचाई कर दिया
1: यानी कि स्टेप बाय स्टेप कदम से कदम जैसे बोली ला जाए ओकर जो तरीका बाते ओकर सेवा करे
0: हाँ, के कोई कोई रहेला वो लोग लेके आवजे करते रह लंसा सिंचाई करते रह लंसा बारिश भर वगैरह तब बिलंसा जिस पा बिलंसा दिखा
1: नहीं फूला तानी मन से नहीं फरा तानी मन से क्योंकि
0: स्ट्रेस से नहीं होना पेड़ के साथ स्ट्रेस से हो के फूला खाते हैं क्योंकि उकर में उकर अंदर में वो उकरो एको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बाते ताजा दिखा ता स्ट्रेस से बाद ओके ओके उकरो मन रहा सर्वाइव हो के उकर उकर उकरो गन्ना बच्चा वगैरह वो सब रही था फल करी ना फूल
1: धरल अभी हम बाजार गएली हौजा से कोनो चीज किनली कोहरा कुछ किनली अब हौजा के जोन बिया बाते हम अपन घरे आके रुपाई करब तो वो सेम तरीका बाते कैसे
0: सेम तरीका बाते वो में सकबा खाली जैसे बोलनी जोन इब्रिड बाते ओकर में से नहीं निकल
1: तो कैसे हम जानब वो इब्रिड है कि नहीं
0: एक आध गो चीज जब देखी ला जाता एक आध गो चीज तो पता ही नहीं चली कैसे जोन टमाटर जोन लोकल बाते और जोन इब्रिड बाते कबो कबो अंतर ने लौकेला तो उन्हें जानब
1: जी
0: अब गनला कैसे बोली सा करेला की तो जान जेब पिपंगाई की तो जान जेब कदुआ के जान जेब कोहरा जोन बाते तो हमने के जोन कोहरा रहेला जान वो एकदम से फेयर रहेला फोंसे डार्क ग्रीन रहेला इप्पी रहेला इसे लापू तो वो जान जेब लोकल वो में तब थोड़ा इब्रिड भी आता उसी उसी प्रकार से लेकिन ऐसे ही आज जन चीज के पहचान कर दिला तो ऊपर से बिया निकाल दिया आज कोनो मिस्टेक भी हो गना इब्रिड में रहा तो लेकिन निकल ला तो बिया निकल ला अब रुपाई कर ला तो एक दो महीना के बाद जब फुलाए के समय फर धरे के समय
1: जान
0: जेबा तो हर ये भी अच्छा गलती करल भी अच्छा है क्योंकि ओकर से अनुभव भी मिलेला
1: जी तब हमने सिखब सा हमने के कार्यक्रम के अभी समाप्ति के लगभग हो गए सा जाते जाते हम

0: और से पूछती हमने जैसे बोला मोनोकल्चर ने चाहिला करी कि अब घरे धरला तनी जगह बाती ढेर नए बातें मैं समझ सकम सर जो साथ साथ जो जो दूसर जो चीज बार उपाय करे कि जैसे पल दामुन संगी कौन चीज चाहिला हो के हो संगी कौन चीज
1: चाहेला हाय मोनोकल्चर नहीं ही करे के घर पे भी नहीं करे के थोड़ा थोड़ा सब चीज चना रोपे के कैसे घरे टमाटर रोपा संगे गोभी रोप दे
0: अच्छा
1: बहुत बढ़िया से होला गोभी टमाटर के साथ बहुत बढ़िया से होला
0: जी
1: और जब जब रोपाई करबा तो चला घर पे जगह कम है ना तो चला जो जितना भी जगह बा चला उपचिमीजे करे के तो जो बो में बाजे बाहर में हुई तो बो में सकबा जा अपन जितना हो कोची मजे पीस कैसे लाके जो यो बाते पुदीना बाते जितना बाते सब सब
0: के चाहेला इस्तेमाल करे के
1: बो में सकबा कर दे जैसे ब्लॉक बा ब्लॉक में मोटा मोटा हो रहेला ना तो ब्लॉक में सकबा जा कंपोस्ट भर के हो में सब अपन लाके जो यो जितना सब वगैरह
0: ढेर तरीका बाते
1: ढेर तरीका बाते ताते कंटेनर रख देबा या तो प्लांसेट जोन बाते प्लांसेट के लेके खड़ा कर देबा दुगो प्लांसेट तब पत्थर वगैरह से सकबा ओके ठीक से खड़ा कर दे हो में सकबा निमन से नीचे में जोन लकड़ी के जोन चिपिंग बात चिपिंग बाते लकड़ी के सूखल पत्ता बाते कोंपो सब में डाल के तब सकबा ऐसे रोपे
0: ढेर चीज बा हमने बूटे प्लास्टिक के बात कर रहे थे सने चाहिला बिगे के वो सब रिसिकले चाहिला हाँ। करके काट के में माटी डाल के छत पर करेला से ढेर तरीका बा
1: लेकिन छत पर करबा जा आज एक कंटेनर रखा तो बता छत के कंटेनर से भर जाए क्योंकि जब माटी
0: माटी रही हाँ हाँ
1: वही पानी सब दबे तो भारी हो जाला तो छत पर कंटेनर जो रखत हुए कोनो प्रकार के
0: चला
1: जहाँ पर बीम जाला बीम जो बिला सा ओकर पर चला रखे के ऐसे सोलिड एगो अच्छा जगह पर रही जाए तब प्लाफोन फाटी नहीं
0: तो इस सब के अलावा धरला अब घरे बगीचा बनावा था स्थापित करत हुआ अब विविध बैक्टीरिया जो पेस्ट कंट्रोल वो कैसे हुई
1: नहीं हुई अच्छा विचार रही कैसे बोला सा शुद्ध विचार रही पॉजिटिव एनर्जी रही तो नहीं हुई और रबी करी तो जैसे हम बोला कैसे एगो से नींबू के पेड़ बा या अमरूद के पेड़ बा ओकर में देखा तो कोनो तरह के पिलुआ आल बा या बीमारी आल बा देखो कौशल के लेके खाली धो द हर महीना एक बार खाली में डाल द पत्ता पर कुछ लगकर पत्ता तोड़ के निकाल द खाई तरह बा करके जहाँ जड़ी बा दिखबा तनी सुन ज्यादा सिंचाई कर ले तो कुछ लेके भोंक भोंक के माटी के हिला दिया तो मैं आए आशो रही
0: माने कि निमन से ओकर देखभाल सेवा करबा हाँ। तो कोनो प्रॉब्लम नहीं रही
1: नहीं रही
0: तो चला यही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने के आज के चर्चा कार्यक्रम के हाइजी पर समाप्त करे थे जब बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय संभू जी फागी दाने से और जितना जना हमने संगे जुड़ल हवन आप लोगन के भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनते रहिए देखते रहिए फिर से मिलब सर प्रणाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त

समाचार। ये दुखद खबर जो कल रात सामने आई, एक दर्दनाक हादसा। कल रात गोशवा में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला। हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है। उसे कल रात ही पोर्टविनोव की सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकार किया कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया। उसने कहा कि उससे कुछ शैतानी आवाज़ें सुनाई दी। उसने ये भी स्वीकारा कि उसने ड्रग्स दिया था। कटर को जब्त किया गया। आज सुबह जीतू अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया। कल बच्चे का अंतिम संस्कार होगा। हत्यारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया है। बच्चे की मां ने पुष्टि की कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था। इस दुखद हादसे को लेकर कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आर्यना वर्माही ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की औपचारिक शुरुआत 7 अक्टूबर को मॉरिशस में की जाएगी। ये फैसला अफ्रीकी संघ के स्तर पर चलाए गए एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद लिया गया। मॉरिशन सरकार के अनुसार इस महाद्वीपीय रेटिंग एजेंसी की मेजबानी के लिए मॉरिशस का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में देश की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। साथ ही इससे अफ्रीका की वित्तीय व्यवस्था में मॉरिशस की भूमिका भी सुदृढ़ होगी। मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इस फैसले पर गौर किया। विदेश खबरों में, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बाद अब न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र वाले नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहां की सरकार द्वारा इस के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। इस पहल का मकसद है नौजवानों की सुरक्षा करना, खासकर सोशल मीडिया के खतरों के खिलाफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी होगी नौजवानों की उम्र का आश्वासन लेना। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आपके सितारे
4: सोमवार 24 अगस्त घड़ी मिला लीजिए सपैर के 4:04 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें कैसे हैं आप सभी ठीक है ना तो चलिए अभी से लेकर शाम के जो है 6 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं इन आपके सितारे और आपके सितारे में आप सोच ही रहे होंगे कि आज किन के गाने हमको सुनने को मिलेंगे तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज जो है हम बात करने वाले हैं ऋचा शर्मा के बारे में। ऋचा शर्मा जो है एक बहुत ही पॉपुलर प्लेबैक सिंगर है। प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ डिवोशनल गाने भी ये गाती हैं। 29 अगस्त 1974 को इनका जन्म हुआ था और चलिए इनसे जुड़ी कुछ बातें करेंगे, ढेर सारे गाने आपके लिए चलाएंगे और जहां कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बागबान फिल्म के इस गाने के साथ जिसे हम सुनेंगे अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा जी की आवाज़ों में।
5: You're listening to RM3 Radio Mana.

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है

0: आपके सितारे
1: चलिए आपके सितारे और आपके सितारे में आज हम बात कर रहे हैं ऋचा शर्मा जी के बारे में. आने वाले दिनों में शिल्पी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन 29th ऑफ अगस्त. सो इनकी बात करें तो इन्होंने जो तालीम है वो हासिल की है पंडित आस्करण शर्मा जी के तहत, और साथ में जो है ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक में भी इनकी जो है काफ़ी खासियत है. वहीं पर गज़लें, फिल्मी गाने, पंजाबी गाने, राजस्थानी फोक सॉन्ग

0: कहते हैं कि इन्होंने जो है बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आज वो पहुँची हैं, और इन्होंने जो है काफ़ी भजन भी गाए अपने करियर के दौरान, और जो है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक समय ऐसा भी था जहाँ पर इन्हें अपनी एजुकेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन जो है इन सभी सैक्रिफाइसेस के बाद जो कामयाबी इन्होंने हासिल की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है वो 1996 की फिल्म जो है 1996 की फिल्म सलमा पे दिल आ गया, सावन कुमार जी की फिल्म थी, इस फिल्म के गाने से की थी। और उसके बाद जो है इनके करियर की जो बड़ी हिट रही है वो जो है ताल, इस फिल्म के गाने से जो है इन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। और इनकी जो आवाज़ है अपने आप में इतनी कमाल की है, काफ़ी रियलिटी शोज़ में ये एज अ गेस्ट आती है, नज़र आती है, और लोग इनकी आवाज़ को, इनके गानों को बहुत बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए, ऋचा शर्मा जी की बात हो रही है तो उनकी आवाज़ में ताल फिल्म का ये गाना हो जाए जिनके ज़रिए जो है इन्हें कामयाबी हासिल हुई थी।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: आपके सितारे।
1: चलिए कल हो ना हो फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना आप सुन रहे थे, ऋचा शर्मा, अलका याग्निक और सोनू निगम जी की आवाज़ों में। साल 1994 में ऋचा शर्मा जो है मुंबई आई थी और उसके बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआती दौर में कुछ भजन गाकर जो है अपने करियर की शुरुआत की, जहां पर एटलीस्ट ये अपना जो है गुजारा कर पाती थी। और उसके बाद बड़े ही स्ट्रगल के बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था सलमा पे दिल आ गया इस फिल्म से। और जैसे कि हमने कहा, ताल इस फिल्म के जरिए इन्होंने जो है अपने करियर की सबसे पहली और बड़ी हिट दी। और ताल इस फिल्म में ऑब्वियसली यार रहमान जी का संगीत। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, काफ़ी बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। कंपोजर्स की बात करें तो एआर रहमान, अनु मलिक जी जैसे बड़े बड़े जो है कंपोजर्स, देन वी हैव शंकर एहसान लॉय, देन वी हैव विशाल शेखर, मोंटी शर्मा, आनंद राज आनंद जैसे बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ इन्होंने गाने जो है गाने का इन्हें मौका मिला उनके कंपोज किए गाने का। और इनके करियर के दौरान जो भी गाने इन्होंने गाए हैं, शी हैज़ बीन वेरी सिलेक्टिव। इनके गाने बड़े कमाल के होते थे, आम कमर्शियल गानों से ज़रा हटके हुआ करते थे। चलिए अभी के लिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं।
2: RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: चले गानों को आप एंजॉय कर रहे हैं और आज ऋचा शर्मा जी के गाए हुए गाने हम आपके लिए चला रहे हैं इस समय। कविता जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। 5250 6200 पर हमारा साथ देने के लिए आप चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 402-8070 पर, और बताइएगा कि ऋचा शर्मा जी का कौन सा गाना आपको पसंद है या कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। अभी के लिए जो अगला गाना है लज्जा फिल्म का ये तराना होगा अलका याग्निक ऋचा जी और सोनू निगम जी की आवाजों में।

0: चले इन खूबसूरत गानों को आप एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चले गानों का ये जो कारवा है इसे हम आगे ले जाते हैं, और आज हम ऋचा शर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, और ताल फिल्म का ये जो अगला गाना है आप सभी के नाम डेडिकेट करते हैं।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: यस रेडियो मनोरंजन पर ये है आपके सितारे और अगला जो तराना भी चल पड़ा है ये जो है दीवानापन इस फिल्म से लिया गया है ऋचा शर्मा जी और सुखविंदर सिंह जी की आवाज़ों में। और चलिए यहाँ पर कुछ और बातें हम ऋचा शर्मा जी के बारे में बस जोड़ते रहेंगे और आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहे ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर आपके सितारे।

0: Park Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आपके सितारे
4: चलिए आपके सितारे के इस सेकंड आवर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें दिस इज योर आपके सितारे और आज हम बात कर रहे हैं ऋचा शर्मा जी के बारे में

आने वाले कुछ दिनों में शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे और ऐसे गानों के साथ साथ ये टेलीविज़न की बात करें तो इन टेलीविज़न प्रोग्राम में एज अ कंटेस्टेंट ये पहली बार के लिए नज़र आई थी एक जो है रियलिटी सिंगिंग शो में धूम मचा दे वहीं पर अन्य प्रोग्रामों की बात करें रियलिटी शोज़ की बात करें तो अंताक्षरी ये प्रोग्राम आया करता था जिसे ये होस्ट किया करती थी अनु कपूर जी के साथ वहीं पर ये बतौर जज काफ़ी रियलिटी शोज़ में ये नज़र आई है जैसे जो जीता वही सुपरस्टार वहीं पर रियलिटी शो में गेस्ट सिंगर के रूप में इंडियन आइडल में भी ये नज़र आई है सारे गामा पा सिंगिंग सुपरस्टार में भी बतौर गेस्ट सिंगर इन्हें देखा गया है और कई अन्य जो है ऐसे रियलिटी शोज़ का ये हिस्सा बनी हुई है तो चलिए अभी के लिए खूबसूरत गानों का ये सिलसिला आगे ले जाते हैं दिस इज़ योर सेकेंड आवर ऑफ आपके सितारे जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और गानों को एंजॉय कर रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद

0: तो चलिए माही वे ये जो गाना अभी आप सुन रहे थे कांटे फिल्म से लिया गया था और इस फिल्म के इस गाने के लिए ऋचा जी को अवार्ड भी मिला था।
1: आपके सितारे
0: जी हाँ, अवार्ड की हमने बात की है तो माही वे कांटे फिल्म का ये जो तराना है 2003 में ये मूवी आई थी और इस गाने के लिए जो है ऋचा जी को अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। और अवार्ड्स की बात करें तो एक और तराना है जो काफ़ी पॉपुलर है, माय नेम इज खान। इस फिल्म का जो अगला तराना हम आपके लिए चलाने वाले हैं सजदा, इस गाने के लिए भी ये अवार्ड ले गई थी मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर और साथ ही जी सिने की अवार्ड जी सिने अवार्ड्स की ओर से भी इन्हें बेस्ट फीमेल

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो चलिए सजदा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे. माय नेम इज खान इस फिल्म से लिया गया और इस गाने के लिए ऋचा शर्मा जी को अवार्ड मिला था. तो चलिए अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं. इस समय जो है बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स होते हैं ना वो किचन में काम करते करते रात के डिनर की तैयारी करते करते गानों को सुन रहे होते हैं, गानों का मज़ा उठा रहे होते हैं. तो चलिए आपका साथ यूँ ही मिलता रहे और इस अगले गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं. दिस इज़ योर आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन.

0: के सितारे।
1: चले आपके सितारे इस प्रोग्राम में ऋचा शर्मा जी के गानों को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे चले आपके सितारे इस प्रोग्राम में ऋचा शर्मा जी के गानों को आप एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋचा शर्मा जी जो है अपने आप में एक कमाल के सिंगर तो है ही, और बहुत ही लाजवाब पर्सनालिटी भी है इनकी, लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है। कहते बाबुल फिल्म का ये जो गाना है बिदाई 2006 में आया था, वो बॉलीवुड का एक लॉन्गेस्ट ट्रैक है, और जिसे गाने का मौका इन्हें मिला था। और फिल्मों की बात करें तो जुबैदा, साथिया, हेरा फेरी, खाकी, तरकीब, बागबान, सोच, रुद्राक्ष, कल हो ना हो, गंगाजल, पॉपकॉर्न, सावरिया, ओम शांति ओम, कांटे जैसे बड़ी फिल्मों में इन्हें गाने का मौका मिला। चलिए अभी के लिए खाकी फिल्म की हमने बात की है, तो खाकी फिल्म का ये तराना हो जाए आप सभी के नाम। और खाकी फिल्म के इस गाने को आप सुनेंगे ऋचा शर्मा और कैलाश खेर जी की आवाज़ों में।

0: आपके सितारे।
1: ऐसे ऋचा शर्मा जी की बात करें तो फिल्मों के लिए तो इन्हें प्लेबैक सिंगिंग की ही है, बॉलीवुड में गाने गाए ही है, भजन और गज़लें भी इन्होंने गाई है। वहीं पर इन्होंने जो है काफ़ी प्राइवेट एल्बम्स में भी गाने गाए हैं। फिल्मों के अलावा काफ़ी एल्बम्स इनके जो है काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। एल्बम्स जैसे कि नी मैं यार नू सजदा कर दी, पिया, विंड्स ऑफ राजस्थान जो 2004 में रिलीज हुआ, और इन सभी एल्बम्स के ज़रिए जो है इनकी वर्सटैलिटी इनकी गायकी में और भी ज़्यादा झलकती है। और वहीं पर इन्होंने जो है हिंदी के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं। अभी के लिए जो गाना अगला हमारी लिस्ट में है उमराव जान फिल्म का, ये इनके करियर के बेहतरीन गानों में से एक है। आप भी सुनिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे।

0: और चलिए यहाँ पर अभी के लिए 5:50 हो गए हैं और इसी के साथ जो है हमारा आज का आपके सितारे प्रोग्राम ख़त्म होने को चला और अब बारी है हमारी धरोहर इस कार्यक्रम की जिसे हम सुनेंगे किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे एक भोजपुरी गीत और फिर आज का जो हमारा अब जो है 6:00 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो ऐसे ही साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन पर, हमारा साथ दीजिए।
1: आपके सितारे
2: You're listening to RM3 रेडियो मन

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर बात करब जा, विश्व फोटोग्राफी दिवस जोन की हर 19 अगस्त के मनावल जाला। विश्व फोटोग्राफी दिवस के उद्देश्य दुनिया भर के फोटोग्राफर लोग के एकजुट करे के हा। साल

2009 में ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोट्सकी द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना के शुरुआत हो रहा 19 अगस्त 2010 के विश्व फोटोग्राफी दिवस पर पहला वैश्विक ऑनलाइन गैलरी के आयोजन हो रहा। फोटोग्राफी शब्द के उत्पत्ति ग्रीक शब्द फोटोस यानी प्रकाश और ग्राफिन यानी खींचे के से मिल के होलबा। 1939 में वैज्ञानिक सर जॉन हशरेल पहला हला इस शब्द के इस्तेमाल कर ले रलन और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई जैकोस और मेंडे फोटो तत्व खोजे के दावा कर ले रलन सा। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी नेगेटिव पॉजिटिव प्रोसेस खोज ले रलन। साल 1834 में टेल बॉट लाइट सेंसिटिव पेपर के इन्वेंशन ओकर आविष्कार कर ले रलन जेकर से खींचल फोटो के परमानेंट रूप में रखे के सुविधा हासिल होल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो 7 जनवरी 1839 के फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस खातिर एगो रिपोर्ट तैयार कर ले रलन। फ्रांसीसी सरकार ये प्रोसेस रिपोर्ट किन के ओके आम जनता तक पहुँचावे के घोषणा करलन 19 अगस्त 1939 के। यही कारण है कि 19 अगस्त के विश्व फोटोग्राफी दिवस मनावल जाला। बोलल जाला कि अमेरिका के फोटो प्रेमी रॉबर्ट कॉर्नेलियस ऐसन हस्ती रलन जे दुनिया के पहला सेल्फी क्लिक कर ले रलन। 1839 में उ ई करके इतिहास रच दिलन। हाँ, लेकिन उ ई नहीं सोच ले रलन कि जोन क्लिक उ करलन आगे चल के एके सेल्फी नाम देवल जाए। ये तस्वीर आज भी यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट में उपलब्ध बा। वैज्ञानिक तरक्की के संगे संगे इंसान अपन साधन बढ़ावे के शुरू कर लग और कितने आविष्कार इन्वेंशंस के साथ साथ आर्टिफिशियल लेंस भी एवौते कर लग। यही कोशिश के कामयाबी होला दिन के हमने फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनावी ला जा। फोटोग्राफी के आविष्कार से जहाँ दुनिया के एक दूसरे के करीब लावे के कोशिश करल गल हुए एक दूजे के जाने के ओकर संस्कृति के समझे के और इतिहास के समृद्ध बनावे में भी ये बहुत बड़ा सहायक रहल बा। आज अगर हमने घर बैठल दुनिया के सुंदर सुंदर हर कोना के तस्वीर देखिला जा तुरंत ही तो ये फोटोग्राफी के बदौलत ही है। फोटोग्राफी धरोहर के एगो बेमिसाल उदाहरण है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिलाते चलिए शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार, इस सायंकालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। रोशबा में कल शाम 7 महीने के एक शिशु एड्रियानो के पिता ने चाकू से वार करके उसकी हत्या की। आज दिन के दौरान जॉन डैनियल पेरिन को अदालत में पेश किया गया, उस पर हत्या का आरोप दर्ज। कैंसर के मरीजों के लिए जिन दवाइयों की अभी कमी है उन्हें जल्द से जल्द मंगवाया जाएगा। इस बीच पीड़ितों के इलाज में कोई रुकावट ना आए इसके लिए नेशनल कैंसर सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू। किम ले कोपियना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस का नाम रोशन किया। मॉरिशस की साइक्लिस्ट ने कल टूर ऑफ ब्रिटेन जीता। विदेश में ईरान ने आज चेतावनी दी है कि देश उसके खिलाफ अमेरिका के आर्थिक दबाव वाले अभियान में शामिल होंगे, उन्हें इसकी नतीजे भुगतने होंगे। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार अब विस्तार से। इस दुखद घटना के साथ बुलेटिन की शुरुआत, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रोशबा में कल शाम 7 महीने के एक शिशु एड्रियानो के पिता ने कटर के साथ उस पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। इस व्यक्ति

0: व्यक्ति ने ये अपराध किन हालातों में किया इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं। आज दिन के दौरान जॉन डैनियल पेरिन को अदालत में पेश किया गया और उस पर हत्या का आरोप दर्ज किया गया। उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। बच्चे का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा।
1: परिवार के सदस्यों को इस बर्बर हिंसा के बारे में स्पष्टीकरण देने में मुश्किल हो रहा है। आदियानो केवल 7 महीने का था। ये ट्रासेडी कल रविवार को रोशवा में घर पर हुई। संदिग्ध हमलावर की बहन मारी सांड्रा लियोपोल ने कहा, इलाके में इस हादसे पर लोग भावुक एवं हैरत
2: हैं। Qu'une passe dans la tête, qui l'esprit, qui l'ipé. Il est vraiment sacré. Maurice, il a peine à faire long.
1: Jean-Daniel Perrin, qui a été fait pour lui à Dalet, mais pêche qui a gagné. Et il a été fait à Gaste de Kirasset, mais il a été fait à Jaïga. La police n'a pas été sur la chaque lié, mais il a été fait à Rihai par Apati Jatai. Chichou qui m'a été fait à Rihai par Apati Jatai. पुलिस जांच जारी है। शिशु का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा।
0: डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वामारी ने इस अपराध का कड़ा खंडन करते हुए इसे घिनौना बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुश्किल कि इस घड़ी में उनका मंत्रालय संबद्ध परिवार को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए तत्पर है। उन्हें सुनते हैं।
3: Il est bien triste, hein? Il est bien triste pour penser que tous les gens sont choqués par sa manière qu'il savait bien là, il est tué, il tient sur la vie. Donc tous les gens condamnent ça, sa situation là, fin arrivée. Donc nous condamnons ça, nous condamnons ça fortement. Donc nous espérons qu'il n'y ait pas de pour aux enfants qui est tué atrocement comme ça.
0: अफ्रीकी संघ की तरफ से की गई कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद अगले 7 अक्टूबर को मॉरिशस में आधिकारिक तौर पर अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लॉन्चिंग की जाएगी। मॉरिशस सरकार के अनुसार इस कॉन्टिनेंटल एजेंसी की स्थापना के लिए मॉरिशस का चुना जाना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के तौर पर देश की विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है और अफ्रीका के वित्तीय ढांचे में मॉरिशस की भूमिका मजबूत करता है। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इसका जायजा लिया। जरा विस्तार अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट में विवरण गीता सुनारान का।
4: अफ्रीकी संघ के कई सदस्य देशों की भागीदारी वाली एक प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद मॉरिशस को अफ्खा यानी अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय की मेजबानी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चुना गया है। इस एजेंसी का काम अफ्रीकी देशों और आर्थिक संस्थाओं की स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग देना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मूडीज और SNP करती हैं। इसी सिलसिले में मॉरिशस में अगले 5 और 6 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर को टापू में अफ्खा की औपचारिक लॉन्चिंग की जाएगी। इस पहल को आगे बढ़ाने वाले अफ्रीकन पीयर रिव्यू मैकेनिज्म के अनुसार मॉरिशस का चयन उसकी वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में रखे गए भरोसे को दर्शाता है। डॉक्टर मिशेक मुती से कहते हैं,
5: Rightly so, it will be a best place to
4: मॉरिशस एजेंसी की शुरुआत के लिए उचित जगह है। हम इसे एक महत्वपूर्ण चरण मानते हैं और प्रगति भी। हम मॉरिशस की ओर से मिले समर्थन के लिए आभारी हैं।
5: I think this is a very complimentary move.
4: मॉरिशस की सरकार के लिए इस नई महाद्वीपीय संस्था की मेजबानी करना अफ्रीकी वित्तीय व्यवस्था के केंद्र में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक अतिरिक्त अवसर है। वित्तीय सेवा मंत्री डॉक्टर ज्योति जीतन कहती हैं, 7 अक्टूबर को अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष इस नोटेशन की जिम्मेदारी मॉरिशस के प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, ये दिखाने के लिए कि ये एक उच्च स्तरीय पहल है अफ्रीकी संघ के लिए। मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम सिर्फ अफ्रीका के लिए एक मंच नहीं, हम अफ्रीका के निर्माण में भाग लेना चाहते हैं। अफ्खा से काफी उम्मीदें हैं। ये अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी जुटाने और उसे

0: ही दिशा में लगाने में मदद करेगी। साथ ही निवेशकों के लिए उपलब्ध जानकारी को बेहतर बनाने और वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान करने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। ये एक बड़ी चुनौती है जिसे नई एजेंसी अगले अक्टूबर से मॉरिशस में अपने भविष्य के मुख्यालय से पूरा करने का प्रयास करेगी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के बीच स्थित होगा।
1: कैंसर के मरीजों के लिए जिन दवाइयों की अभी कमी है उन्हें जल्द से जल्द मंगवाया जाएगा। इस बीच पीड़ितों के इलाज में कोई रुकावट न आए इसके लिए नेशनल कैंसर सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है। दवाइयों की कमी दूर करने के उपायों में तेजी लाने और सप्लाई श्रृंखला पर फिर से गौर करने के वास्ते आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आपातकालीन बैठक लगाई गई। मंत्री अनिल बिजू ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की प्रशासनिक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले अक्टूबर महीने से देश में सामानों की एक नई श्रेणी पर शुगर टैक्स लागू नहीं होगा। बजट 2026-2027 में घोषित इस कदम को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। ये फैसला तब लिया गया जब अधिकारी गण छोटे व्यवसायों पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। ग्रुप डेंटरप्रेन्योर सोलिडेयर टूस एंसेंबल के सदस्यों ने आज 24 अगस्त को इस सिलसिले में मंत्री आदिल अमियामिया के साथ एक मुलाकात की। किम लेको पियना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस का नाम रोशन किया। मॉरिशस की साइक्लिस्ट ने कल टूर ऑफ ब्रिटेन जीता। उन्होंने अपने स्टेज जीत के दौरान बनाई गई बढ़त को आखिर तक बनाए रखा। इस तरह वे अफ्रीका महाद्वीप की पहली साइक्लिस्ट बनी जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने उनसे इस जीत की खास सराहना की। हमारी सड़कों पर सावधानी मात्र सजा के डर से नहीं बल्कि ली जानी चाहिए, बल्कि नागरिक कर्तव्य उससे ज़्यादा ज़रूरी है और चालक को इसका एहसास खुद होना चाहिए। यही अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज का मकसद है जिसने हाल में ADPS रोड सेफ्टी प्लेज नामक अभियान की लॉन्चिंग की। ज़रा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो रोजाना हमारी सड़कों पर सफर करता है। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश के तहत अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज अपने रोड सेफ्टी प्लेज अभियान के तहत सीधे कर्मचारियों से उनके कार्यस्थल पर जाकर मुलाकात कर रहा है। विभिन्न कंपनियों में प्रेजेंटेशन और बातचीत के जरिए संगठन के प्रतिनिधि वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की याद दिलाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात अच्छे और सुरक्षित व्यवहार को लगातार अपनाने पर जोर दिया जाता है। जेरी अनुदय कहते हैं, अन्य चालकों राहगीरों पर भी ध्यान देना चाहिए, गाड़ी की जाँच करनी चाहिए। योगिनी कंदन कहती हैं, गाड़ी चलाने से पहले खुद को तैयार करती हूं कि मैं गाड़ी चला सकूंगी या नहीं। कर्मचारियों के बीच इस संस्कृति को लगातार याद दिलाना हमेशा अच्छा होता है। सड़क पर कुछ गलत व्यवहार से जुड़े खतरों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और जानकारी देने के सत्र आयोजित किए जाते हैं। ओशन ट्रैशर के एडमिन अकाउंटेंट्स मैनेजर कनेन अनिया काउंटन कहते
2: हैं,
0: हमारी कंपनी में कई चालक हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज के लिए जागरूकता फैलाने का मतलब केवल नियमों या उल्लंघन की स्थिति में होने वाली सजाओं को याद दिलाना नहीं। अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज की प्रोग्राम डायरेक्टर दीक्षा रामदवा कहती हैं, इस प्लेज पर हस्ताक्षर करने से खुद से वादा करते हैं कि ऐसे व्यवहार अपना रहे हैं जो उचित हो और इसका हमेशा पालन करना चाहिए। हमारी सड़कों पर व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सोच में बदलाव भी जरूरी है। इस अभियान के जरिए अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज ज्यादा जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है।
1: विदेशी खबरों ने ईरान ने आज चेतावनी दी है कि जो देश उसके खिलाफ अमेरिका के आर्थिक दबाव वाले अभियान में शामिल होंगे उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जल्द ही ये स्पष्ट करने वाले हैं कि अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव कैसे बढ़ाएगा। ये इस संघर्ष के छठे महीने पर पहुँचने के बाद किया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।

0: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात मौसम अच्छा रहेगा, देर रात को बादल घिर आएंगे, बर्फ और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह मौसम अच्छा रहेगा, दोपहर बाद को बादल घिर आएंगे और पश्चिम में कहीं कहीं बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:25 पर सूरज निकलेगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। कोलाबू मोतायलोंग में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्डर की श्रीमती सुललिता बलदाओ जो मैडम पतिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 उनके बेटे अविनाश रामप्रसाद के मकान कोलाबू मोतायलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफगया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। सुभाष रोड मोसेल मोहम फुल बोमोंग प्लेंडी पपाई में चौंसठ साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रेमिला कासावेन पैदाशी नाम लक्ष्मण प्रसाद और जो प्रेमिला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:00 उनके बेटे विजेंद्र कासावेन के मकान सुभाष रोड मोसेल मोहम्फल बोमोंग प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनुस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। नंबर 7 सेंट क्वा पोटवी में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे लाशा पैलाव दौंते मुखार रॉयल रोड पर सितविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज लिसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमसर्स में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपक रघुबर जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके बेटे उदय रघुबर के मकान लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमसर्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: SBC Radio 24 hours a day.
1: सेवी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 26 अगस्त को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक ईडीसी ग्रीग्री में, विलाज दे ग्रीग्री और डोमेन ग्रीग्री सुयाक में, और कल मंगलवार 25 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक बोकलीमा और आसपास के इलाकों में और ला फ्लोरा में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मौसल वीओएस और एनएचडीसी दे ग्रांड बोआ में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सोमवार 24 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। चलिए हम आ गए हैं एक बार फिर आपका साथ देने के लिए नई सोच इस प्रोग्राम को लेकर जो चलेगा अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो चलिए आप बिल्कुल अच्छे हैं ऐसी उम्मीद हम करते हैं, दिन भी अच्छे से बीता होगा। मंडे का दिन बहुत से लोगों को थोड़ा हेक्टिक लगता है क्योंकि वीकेंड के बाद मंडे ऐसा लगता है कि कब दिन शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, इंतज़ार मानो ख़त्म नहीं होता। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छे से बीता होगा और अभी से लेकर 7 बजे तक नई सोच ये प्रोग्राम चलेगा और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो जुड़ जाइए इस खूबसूरत म्यूज़िकल सफ़र में हमारा साथ देने के लिए। और अभी के लिए नई सोच इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म से लिए गए इस खूबसूरत तराने के साथ।

चलिए हमारे आपकी मुलाकात तो अभी यहाँ पर हो रही है इन नई सोच ऑन रेडियो मनोरंजन, और मैं हूँ सुमी, आप सभी का साथ दे रही हूँ। और कहते हैं ना कि एक दूसरे का साथ देने से ये जो ज़िंदगी का सफ़र है बहुत अच्छे से कट जाता है, और ये सफ़र बहुत अच्छे से कटे आपके लिए भी ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और यहाँ पर जो है प्यार भरे गाने तो है ही आपके मनोरंजन के लिए, और साथ ही 7 बजे से दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम की शुरुआत भी होगी। तो बस साथ देते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई ना कोई साथ देने वाला हो ना तो ज़िंदगी का ये सफ़र आसानी से कट जाता है, क्योंकि ज़िंदगी के कई पहलुओं में हमें अपनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम खुश हैं तो इस खुशी को बांटने के लिए किसी की ज़रूरत है, अगर दुख है तो दुख को कम करने के लिए किसी अपने की आवश्यकता पड़ती है, और जब कोई साथ नहीं होता तो बस अकेलापन महसूस होता है। तो बस यही उम्मीद करेंगे कि आपके जीवन में आपके अपनों का साथ हो, अच्छे दोस्तों का साथ हो, कोई आपका हाल पूछे, कोई पूछे कि आप कैसे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है कि बस कोई दो बातें कर ले, प्यार भरी बातें जो है, इसी से ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है और ये सफ़र आसानी से कट जाता है।

0: नहीं सो।
1: चलिए अभी के लिए तो हम आपसे जुदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रात के 9 बजे तक जो है हम आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं। लेकिन नई सोच इस प्रोग्राम के इस आखिरी गाने की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, और इस आखिरी गीत के साथ जो है नई सोच ये सेगमेंट समाप्त हो जाएगा और इसके तुरंत बाद शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। सो हमारा साथ यूं ही देते रहे, और चलिए जो खूबसूरत म्यूजिकल सफ़र है इसे आगे ले जाते हैं मेरी जंग फिल्म के इस गाने के साथ, और इसे आप सुनेंगे लता जी और नितिन मुकेश जी की आवाज़ों में।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सोमवार 24 अगस्त घड़ी मिला लीजिए शाम के 7 बज रहे हैं और एक बार फिर से आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम है, स्वागत है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन इन योर दिलों की आवाज। मैं सुमी यहां पर आप सभी का साथ दे रही हूं। रात के 9 बजे तक विल बी हियर विथ यू ऑल और खूबसूरत

गाने तराने ऑब्वियसली यहाँ से तो डेडिकेशंस की शुरुआत होती हैं और 7 बजे नहीं कि आपके मैसेजेस हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिलना शुरू हो गए हैं. सो थैंक यू सो सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए. नॉट टू फॉरगेट 4028070 है नंबर हमारा for your phone calls. Saath hi you can send your messages on 5250600 par and thodi der mein will be live on our TikTok page also. So chaliye yahan par saath dete rahiye in your radio manoranjan in dilo ki awaaz aur is khoobsurat gaane ke saath dilo ki awaaz is safar ki shuruaat karte hain.

कहते हैं ना कि बाहर का मौसम अच्छा हो तो मन का भी मौसम अपने आप में अच्छा हो ही जाता है, और ऊपर से गाने ऐसे हैं कि अपने आप में ये जो एटमॉस्फेयर है बदल ही जाता है।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए, दिस इज़ योर दिलों की आवाज़। और बहुत सारे लिसनर्स इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट, यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर। और यहाँ पर गानों का ये जो सिलसिला है, चलिए इसे हम आगे ले जाएंगे। और बड़े ही प्यार से जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस बने रहिएगा रात के 9 बजे तक। और अगला जो तराना है यशुदास जी की आवाज़ में होगा। और यहाँ पर ये जो गाना है चिच्चोर, इस फिल्म से लिया गया है। इस समय उमा जी क्यूपीप से साथ दे रही है, कह रही है कि नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच उमा जी गानों के इस सिलेक्शन को पसंद करने के लिए। और यशुदास जी की आवाज़ में, यशुदास और हेमलता जी की आवाज़ में, आवाज़ों में ये गाना खासकर आपके लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: जी हाँ, हिना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे, आजा बे माही तेरा रस्ता ओ देख दिया। चलिए अभी के लिए तो हम भी यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके मैसेजेस तो हमें मिल ही रहे हैं, ऐसे में अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। प्यार इश्क और मोहब्बत, इस फिल्म का ये जो अगला गीत है खासकर स्वेनल आपके नाम जाता है। आपकी ओर से गाना आपके भाई श्रवण के लिए, भाभी कृति है, विहाब अभिनव, कियान, नव्या, सभी तिलक फैमिली के लिए, और खास कर ये गाना आंतिश रामसरन के लिए जो इस समय स्विट्जरलैंड से हमें सुन रहे हैं।

एक्चुअली आपके दिल की जो आवाज़ है वो हम तक पहुंच रही है थ्रू योर डेडिकेशन, थ्रू योर फरमाइशें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगला जो तराना है समंदर फिल्म का ये गीत होगा, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। ये गाना जो है बड़े ही प्यार से, इस गाने की रिक्वेस्ट आई है अनीता जी की ओर से। उन्होंने लिखा है कि कैसे आप बहुत प्यारे गाने हमेशा चलाते हैं। ऐसे तो अभी के लिए मैक्सिमम गाने जी यहाँ चल रहे हैं, आपकी फरमाइश पर चल रहे हैं और आपको गानों का सिलेक्शन अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो सो मच। तो चलो अगला गाना आपके सभी फ्रेंड्स के नाम, आपके सभी फैमिलीज के नाम, हमारे रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम के लिए थैंक यू इसके लिए। और ये गाना खासकर अनीता जी आपके लिए भी हम करते हैं।

0: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा।
1: पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्दाने RM2 अने RM3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ।
2: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
3: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु।
4: इनिय मुदल आंडु निरेवु नल्वाटुकल ऑरेंज फ्री RM2।
5: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
6: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।

0: दिलों की आवाज
1: चले दिलों की आवाज इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं। कुछ ही क्षणों में हम सेकंड आवर की ओर बढ़ने वाले हैं। आज सोमवार है और श्रवण मास का आज अंतिम सोमवार है। बहुत से भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। भगवान शिव की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे जीवन पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और श्रवण मास का ये जो सोमवार है, इसकी अपने आप में बड़ी ही महिमा है। हर कोई व्रत करता है, पूजा प्रार्थना करता है, मन में यही आशा लिए, मन में यही प्रार्थना लिए कि ईश्वर उनकी कामनाओं को पूर्ण करे। तो चलिए, भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। और ऐसे में अगला तराना जो है घूंघट फिल्म का तू ही मेरा शिवा, गुलशन जी की ओर से इस गीत की फरमाइश आई है। सभी शिव भक्तों के नाम, सभी कावर्थी गणों के नाम जो गंगा तालाब की ओर श्रावण के इस सोमवार के दिन बढ़ रहे हैं पूजा प्रार्थना करने के लिए। और यही गाना जाता है मामा प्रभा के लिए, सिस्टर दीक्षिता, आयशा, सभी बोला फैमिलीज के नाम। हर हर महादेव, आपको भी गुलशन जी और साथ देने के लिए धन्यवाद।

0: दिलों की आवाज।
1: चले दिल की आवाज सुनते सुनते बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। और ये जो अगला तराना है, सचिन जी इस समय पॉपुलर से हमारे साथ कनेक्टेड है। मेरा जवाब फिल्म का ये जो अगला गीत है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो चलिए गाना खास कर सचिन जी आपके नाम हम करते हैं, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ों में।

0: खुशियों की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर तरकीब फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत सा तराना भी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह जी और अलका जी की आवाज़ों में। और इस समय हम हमारे टिकटॉक पर लाइव भी है, आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं कौन कौन है। ऐसे तो हमारे लवली लिसनर्स तो हमारे साथ है ही, जेवीना इस समय हमारा साथ दे रही है। थैंक यू सो मच जेवीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। आफीज़ा, हेलो आफीज़ा, कैसी है आप? हाय मनोज किस, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित जी, हेलो रोशन जी।

गुड इवनिंग आपको भी, थैंक यू अफीजा आपके इस लवली मैसेज के लिए। अगला गाना जाता है विक्रम, कियारा और स्वीटीना के नाम। दीप्ति गंदावरी जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनुषा जी नमस्ते आपको, कैसी है आप? हाय माधुरी, हेलो। और अगला गाना हमारी प्यारी माधुरी और हमारी प्यारी परी के लिए। थैंक यू माधुरी जी हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। अनु, हाय अनु नमस्ते, आप कैसी है? रोजीदा, हाय रोजीदा जी, हाउ आर यू? वी लव RM2 एंड RM3 बेस्ट रेडियोस, थैंक यू सो मच। मैं कुछ काम कर रही थी माधुरी जी, मतलब रेडियो पर तो हम लाइव ही थे, लेकिन यहाँ पर आते आते वाकई में हाँ थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि कल बहुत कुछ होने वाला है तो उसको लेकर तैयारियाँ काफ़ी चल रही हैं। तो बस आप लोगों का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हाय मीरा, हाउ आर यू? कल आपके बेटे का जन्मदिन है, ओके। सो आपके बेटे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे आपने अपने बेटे का नाम नहीं बताया, आप नाम बता देते हो तो हम उनका नाम जोड़ देते हैं ना। और दीप्ति गंडावरी जी नमस्ते, थैंक यू गानों को पसंद करने के लिए। देन वी हैव शाहिद इकबाल खान, आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। हाय तैयब बोला जी राका, थैंक यू सो मच। आप ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ कनेक्टेड है। आशुतोष जी नमस्ते, विद्या जी आपको भी नमस्ते, आई एम वॉचिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। विनकई जी, कैसे आप विनकई जी? थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाय नर्मदा जी, कैसी है आप? अगला गाना आपके नाम और आपके हस्बैंड सुभाष के लिए। तिलक कुमार जी, हाय कैसे हैं? विलनुआ से रंबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कैन यू प्लीज़ प्ले डम डम डिगा डिगा, इज इट ये गाना आपने कहा नाजिया जी? चलिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू रेखा जी हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। शर्मिला बुधन जी, कैसी है आप? हाय रचना जी, अगला गाना आपके लिए होगा। राजेश जी कैसे हैं? राजेश जी ओके राजेश जी। और थैंक यू जितने हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इसके लिए। राज, हाय राज, कैसे हैं आप? और इस अगले तराने को खासकर हम रिहाना जी आपके नाम करते हैं। फिनिक्स से आप हमारा साथ दे रही है लव फिल्म का ये जो तराना होगा, SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा जी की आवाज़ों में। ऑलराइट मीरा जी, आपके बेटे का नाम रोमेश है, तो उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की ओर से।

0: खुशियों की आवाज की आवाज।
1: और चलिए जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे फॉलोअर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अगला तराना आप सभी के नाम होगा। और खासकर ये जो गाना है ये जाता है भाई दिवेश तोरल के नाम, जिनका आज बर्थडे है। बेस्ट विशेज आपको डैड संदेश की ओर से, मामा कल्याणी की ओर से, और आपके सिस्टर है लेशिता की ओर से, लेशितेरू से। सभी तोरल परिवारों ने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं दिवेश जी। और जितने भी हमारे लिसनर्स और फॉलोअर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अगला तराना आप सभी के नाम हम करते हैं।
2: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: और चले दिलों की आवाज़ में इस समय विद्या जी हमारा साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी आपके इस प्यार भरे साथ के लिए और आपके इस प्यार भरे मैसेज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। और चलिए बहुत सारे यहाँ पर फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहर, कल आप महज कल आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस आपको। और ये अगला तराना आपके नाम हम करेंगे। हाय विशा, कैसी है आप? थॉमस आर्थर, कैसे हैं थॉमस जी? वे एम आई फ्रॉम? अभी तो हम मॉरिशस में हैं, आप MBC रेडियो मनोरंजन सुन रहे हैं। और यहाँ पर जस्ट फॉलोड यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल जी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच उज्जवल जी। दीप्ति गंदावरी जी, आपने कहा बाजीगर फिल्म का गाना, मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। ऐसे आज हमारा लाइव थोड़ी देर से शुरू हुआ है तो चलिए हमारी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट आप सबके नाम को हम जोड़ पाए। रुखसार जी हमारा साथ दे रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अगला गाना यहाँ पर सुविधा जी आपके नाम भी हम करते हैं। गैम्बलर फिल्म का ये तराना है, पुरानी वाली गैम्बलर नहीं, ये नई वाली गैम्बलर है। कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में।

0: तो चलिए इसी के साथ दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम के लगभग हम अंत तक आ गए हैं और 6:30 से अभी तक आप लोगों का साथ हमें मिला, इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। इस सफ़र को जितना हमने एंजॉय किया, इस म्यूज़िकल प्रोग्राम को जितना हमने एंजॉय किया, उम्मीद करते हैं आपने भी किया होगा। और जाते जाते ये खूबसूरत सा तराना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम करते हैं, हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम करेंगे जिन्होंने टिकटॉक लाइव में हमारा साथ दिया। और इसी के साथ हम आपसे जो है विदा लेंगे और कल आपसे मिलने हम फिर लौटेंगे। जी हाँ, हमारे आपकी मुलाकात कल फिर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और 9:00 जो है रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम यहाँ पर आप सुन पाएंगे। तो बस ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। कल हमारे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती दोनों ही रेडियोज़ की फर्स्ट एनिवर्सरी है और बहुत कुछ होने वाला है इन दिनों में। तो आप साथ देते रहिए हमारा, आपका प्यार आपका विश्वास हमारे साथ यूँ ही रहे। इसी के साथ हमारी ओर से नमस्कार, और इस खूबसूरत गाने के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं। और जाते जाते बस यही कहेंगे कि ये प्यार आप हमेशा हमारे साथ जो है यूँ ही बांटते रहे, ये जो अपनापन आपसे हमें मिलता है यही हमेशा हमें मिलता रहे। इसी के साथ अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में इस गाने से जो है आपको गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और रेडियो मनोरंजन से यूँ ही कनेक्टेड रहिए हमेशा।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: अपने 19 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
3: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का।

सब संगतियों के आज ही प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। ये तो हमारे मनपसंद रेडियो चैनल्स रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में तुमने की देखा था हुआ रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ पर यानी कि AM बैंड पर और रेडियो मनोरंजन FM मोड पर हमने की सुना था हुआ सब संगतियों के स्वागत करते जा ये हतल के पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुर का अभी से लेके रात के 11 बजे रही और आज है लेंदी की रात लेंदी 24 अगस्त साल 2026 मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर पर घुमाइया का जगह दे हुई जगह विद सैंक या फिर SMS करिए हमने के रेडियो मोशस के टिकटॉक पेज पर एक से एक बेहतरीन एक से एक लाजवाब भोजपुरी गीत जबरदस्त म्यूजिक और ढेर मना कुछ नहीं से कार्यक्रम में ये कार्यक्रम मनोरंजन भी है और शिक्षा से भी भरल प्रोग्राम है देर कुछ मिली सीखेगी प्रोग्राम के दौरान और मनोरंजन भी होते रही लेंदी की रात यानी कि गमत की रात और जय प्रताप सिंह सितालू के साथ जब बोला था संगत आज के दिन कैसे रहा आज है लेंदी वेंकट उत्त चराली से और हाई तो दैनीय सीमेंट है महीना के हाउ सीमेंट से सप्ताह के महीना में चला आप सर तो चला शुरू कर ही रह जाए हमने के भोजपुरी तरका प्रोग्राम के गीता का जादर के गावल गीत के साथ गीत के बोल है हंगामा और गीत में चाहते से सब संगतिया का नाम सुनने के साथ जुड़ल होवन जा और आप होवन जा लिस्ट काफी लंबा बा अरे देखते हैं यस प्रिया नरसिमलु है गीत और खातिर श्याम छत्री माला चिनन देवी नबी से सर केशवदीन फिर प्रीति फरजीना अमारा करुणा सब शीला और देवी नबी से सर आकाश चेतन हेलो आकाश भाई कैसे समाचार और मीला चिंगानी गीत और नाम नितेश अनिता लाल जी मैरी जेन लिहास मुकाम्बो ब्रेंडा शशि तुलसी श्वेता कालू कुमार राय और बुल्ले राजा मितु बिरेन निर्मल खोदी कैसे बा भैया और है गीत श्रुति सुधा सुखी तैयब भोला और राम हृदय दीपक जब्बू रामू छेत्री निशान देवेंद्र नेपाल से हवन अनिता प्रताप जी गीत और नाम कविता अनु नमस्ते जी और सुशांत जी तारा शिवचरण इंदिरा पुर महमन है गीत और नाम चले सुने हंगामा

कभी कुछ निकली जाओ सके को इंसान के जान ले रहे हमने देख रहे से देख कोई फजर के जैसे नींद से उठे रन से तुरंत जान से साल डिबे में नहाई या देख कोई एक्सरसाइज करके आवे रन से तुरंत साल डिबे में हेरी रन से नहाई के ये एगो बहुत बड़ा जो गलती करेरा कह के हमने के शरीर के जो तोपे आचे है और बाहर के तोपे आचे पागल नहीं रहेरा तो का होला जब नींद से उठकर तुरंत साल डिबे में जब नहाए तो तोहर दिल के धड़कन सकेला रुक जाए सकेला आगे कौजा को जाए और कर से जान भी चल जाला दिल को एग्जर्सिस करके आवेला खूब ट्रांसपीरेबल से और तुरंत साल डिबे में हेल जालन से तो ई तुरंत नहीं चेहरा साल डिबे में हेले के फजर के जब उठब नींद से मान ला पाँच बजे उठला तेगो पंद्रह मिनट ले थोड़ा मौस हो गया चल गया फिर गया तब जाके स्नान कर गया या फजर के उठला गेरा एग्जर्सिस करे एग्जर्सिस करके अला तगो पंद्रह मिनट ले थोड़ा सुन बैठ गया या मौस मौसे हो गया और बाद तू जाइए नहाए जब ऐसे हमने नहीं कर अब से तुरंत जब से नहाए तो अक्सर होला हमने कि दिल के दौरा पड़ जाला और इंसान की जान चल जा रहा तो इंसान की जान कोई नहीं सकेगा हाँ प्लास्टिक करे ये खातिर जहाँ जाने की सब बात कहे कि कभी कभी भुला जाए सा और दिख रहा सा कैसे प्रॉब्लम हो जा रहा चल अभी को गीत सुना जाए दो लेनी तीन रुपये सौंत पुजोत विशाल मंगरू और साथी कलाकार एम जे आई के धीमा नोटिस से गीत हो गए लगभग और एक गीत बड़ी सुंदर भाई दर्शावेरा कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि हमने के देशों को बहुजातीय देश है बहुभाषी देश है पर सब कोई मिलजुल के जी रहा सन वी आर प्राउड टू बी मॉरिशियन हाँ कि नहीं तो चले की तो समझा दल इंडिया ने पिछले सौंत पुजुद विशाल मंगरू और एम जे आई के कलाकार लोग गीत गावत वन है गीत चलावत इस खास हम खास इस सब संगत यालो के नाम मारिलूद फिर हैदर और फिर हेमंत राणा है गीत चली केंजन खतेर पक खतेर फिर एमा शाजे दीप रमेश सुरेखा रमसर मंगरू प्रिंसेस पू पदविन शाह लीना चेदी पद्मिनी उदय रोज इलोशा फिर है गीत चली अनिश व्यजिनी लामा प्रवीण मोंग देवंती जेनिफर अंतन फेजा सुनात

ton jauge, Satyadevramu, Puja, Zafi, Vishal, Arti Devi, Fir Hawan Ova, Prem, Badi Raja, Malini, Nitish Gulab, Leila Hassan, Firha, Ganesh, Shakira, Kavya, Puja Thakur, Hayigitali, Lion Nir, Kiara, Yeshna, Bebs, Kanti Devi, फिर सिवचन रामचा आयुषी गोंदामा राजीव येशना रान्या कुमावादी और चंदानी शावरी हानाज मिस्टीना साथ में करुणा मांडा पूरन देवी गुलाम हुसैन बेग रुपेश कपिल देव मना शमीम जमन नित्या सुनीता सिचन विमी सान्या फाब्युला लक्ष्मण राहत जहान सोफिया निहा शेख बीब्स रामचरण सिवचन लुई आशा नितेश जॉय तिहाई सब संगत आलोक हमने की टिकटॉक पर देखा था और सुना था और साथ में हेल गीत जुन्हा हमने चलाओ सर अनिता लाल जी के नाम हवन मौदाल वैसे सब इतु परिवार सब लाल जी परिवार के नाम अनिता जी फ्लाक से हवन शोभा पॉम्पले मुझसे चित्र और ज्ञान विश्राम मौदाल वैसे प्रभावती लोल हवन नोवेल फ्रांसे कर बेटा पतो बेटी दामाद सब चीज़ों हवनों के नाम ललिता कुशल थ्रियोले से पीतों से अमृता गणेश संजय हरिचंद गीत तो हर खाती तो घवरी संध्या तो बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम और जितना कोई हमने सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई टिकटॉक पेज पर हमने की देखा था लाइव तो है गीत तो लोग के नाम डॉन लिनिटे निपेसोंट पुजोत लिनिटे में हमने और तो लोग एक साथ लिनिटे में है गीत गावत है संगे संगे लिनिटे के मतलब है एकता

संगत्यालोग हाई सुख के लिए फैंसी टूट के हमने मनाओ अपसा रक्षा बंधन यानी कि भाई बहन के त्योहार तो कादू दो किनले रहिया कंजूसी नहीं करिया कहे कि भाई बहन के त्योहार है तो चेला कादू दे के भाई के बहन के भाई के भी और जो त्योहार दुनिया भर में मनावल जा रहा तई दिन बहन लोग जो है बहुत प्यार से अपन भाई लगे जा रहा अपन भाई की कलाई में राखी बांधे रहन सा और भाई आशीर्वाद देवे रख के अपन बहन की रक्षा करी जीवन भर तई हमने के त्योहार है जरूर प्यार से मनावब जा और मिलजुल के त्योहार मनाओ जा। सो एमबीसी के पूरी टीम की ओर से रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती कुल एफएम एम आज मुगसे जो मॉरिशस की टीम की ओर से सब कोई के रक्षाबंधन के ढेर मना शुभकामना ढेर बहन लोग जुना भी सही गातो तैयार करते वन सब बुंदिया लड्डू गुलाब जामुन खाजा गातो तीन चार दिन आके तैयार करते वन सब ताकि जयन सा सुख के अपन भाई के राखी बांधे। अब जेकर भाई नहीं बात है तो अपन कुजन के बांधेला और जो लड़का लोग के बहन नहीं बा तो लोग के कुजिया राखी बांधे हमरो बहन नहीं बा हमारे को कुजिन नावेलन राखी बांधे और प्यार से राखी बांधेरा और ई दिन जो है प्रतिज्ञा भाई प्रतिज्ञा करेगा कि जब ले उजी वो अपन बहन के रक्षा करी जहाँ ले सकी तब भाई बहन के त्योहार सबको के बहुत बहुत अभिनंदन चला भी एगो रक्षाबंधन के गीत सबसे लड़ी जाकर चाधर के आवाज़ में है गीत चली सासी बुनो माली खातिर और घरोली कर बेटा विवेक बेटी दामाद और सब बुनो माली परिवार के नाम है गीत उदय धनी राम के नाम रहेलन कवियापोस किशन गुड़ियाब जी प्रीतम राज जी मीना कवियापोस से वन अश्विन बच्चन और सब बच्चन परिवार प्रेमिला हवन कैटोबोन से और है गीत चली प्रताप की ओर से कर बेस्ट फ्रेंड कर जी गिदो शिरीष नारायण के नाम हिरीश नारायण रहेलन मिडलैंड माता जी रीता की ओर से गीत चली अनुष्का शैलेश और स्वस्ति खातिर फिर रानी की ओर से बेटी परी खातिर राधा सी बालक है गीत औरों खातिर और देविका रामगति है गीत औरों नाम जितना कोई रक्षाबंधन मनावी इस सुख के याद फिर से याद रहते तो वैंचवित उत याद रखे दत्वा बोन गजी वैंचवित उत के हमने दुनिया भर में और मॉरिशस में रक्षाबंधन मनावते है गीत चली रित्या खातिर चित्रा सुनीता सीचन विमी सानिया फाबियोला लक्ष्मा रहत जहान शेख फिर

ये चली आशा श्वेता चतुरी नीला फिर गीत मोहन रोशन देवी नारायण और है गीत चलावते इस खासम खास मिलियनेयर खातिर अपन नाम लिखा बा टिकटॉक पर मिलियनेयर तो मिलियनेयर बोल से ना अपन नाम दिलक बा मिलियनेयर है गीत चली कर्मा इंद्रानी सब बिहारी परिवार के नाम योगेश सिबोरन और सब सिबोरन परिवार कौची मिलती है से मानी हम के साथ देवधवन मिस्टर परफेक्शन निर्मला रमन और फिर हरिराम यादव है गीत हो नाम प्रेमिला गजादू है गीत हो नाम चौधरी साहब है गीत हो नाम इंदा हुसैनी लेडी जागो बिस्ता सुभाष भावना अंजू नगेंद्र चौहान पुसेत प्रियंका राय अक्षय दर्शिनी हंसा राजाबाली और माधुरी तो जितना कोई हमने की दिखा था सबको की हैप्पी रक्षाबंधन रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना

भाई बहन के प्यार जब ले रही, रक्षाबंधन के त्यौहार तब ले रही, जब ले सूरज रही, सितारा रही, चांद रही, तब तक भाई बहन के प्यार हमेशा मर रही। और इतिहास बतेलक बा कैसे कृष्ण भगवान चुनहर द्रौपदी की रक्षा करेगा, तो एगो भाई हमेशा अपन बहन की रक्षा करेगा। सच्चा भाई अपन कर्तव्य हर हाल में निभावेगा। आपके 9 बज के आधा हुआ था, तुझ सुन तो रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन और जय प्रताप सिंह सीतालू के साथ प्रोग्राम है भोजपुरी तड़का। और ये प्रोग्राम चली रात के 11 बजे ले। और मन करा था कोई गीत मांगे के, तो SMS करिए हमने की टिकटॉक रेडियो मोशन के टिकटॉक पेज पर, या फिर का जाओ दे विद जाओ विद सैंक पर। और बोली जा सकती है काल के आगे कोई के बस नहीं चलेगा, जब समय आई दुनिया छोड़ के जाएगी तब कोनो भी बहाना नहीं बनी, रोते हुए दुनिया से आने से और रोते हुए दुनिया से जाप से, यही नियति है यही विधि के विधान है, और जे भी दुनिया में आलबा ओके परी संसार के छोड़ के जाए के। यही कहती बोल जैसा कि चोला के ठेकान नहीं बा, तो शिकवा गिरा नहीं करिया, मन मुटाव नहीं रखिया, मान लो तोहर बहन तोहर से 10 बरिस नहीं बचे लग, पर ई राखी के दिन तोहर बहन तोहर द्वारी में थाली लेके आल, अपन भाई के राल राखी बांध दे, तो अपन बहन के नहीं लौटेगा, अपन बहन के जेल रख लिया, अपन बहन से राखी बंधा लिया। और अभी चेगो चकाचक भोजपुरी गीत चली, दुल्हन के दादी, बाप रे बाप, दुल्हन की दादी कहा बोला था, चले एक साथ सुने हैं गीतवा चलावते हैं। ऐसा रीता और रेणुका की ओर से लोग के दुगो भाई बा संदेश और प्रीतम, और अपन भाई की बहुत प्यार करे रन साइरन की ओर से और बहन रीना खातिर। और है गीतवा चलावते ऐसा अक्षय दर्शिनी, मनसा राजाबाली, पुसैत माधुरी, फ्रेडेरिक वाको, सेल्विना मुन्ये, कॉपन एंड पेमाल, डैनियल लुइज, हर्षा, बीबी अफरोज, माला बजन बंजन, कविता सिदीहू, केश जोयराम, और विधि मीला दाउतल, प्रमा प्रमा, मुकेश कुमार, मीरा सुबी, लुलू आनंद, हैगी तोरोनाम नौशिन हेलो, और विली जीवमार, लकी गर्ल जयंती पांडु, लकी वुमन शीला सीता, और गोहाबाई मोसा, राजदत्त बोजू, चाची रुबीना, नाम रत्ना, श्यामा, लकी वुमन गीत मांगा था, अंतिश, अंकुश, स्नेहा, आप हो नालमाटी से सब दुलार परिवार के नाम, हेलो जी, अमन मोहन, फिर अनिता लाल जी, शोभा दुकोरन, हेमंत लक्ष्मण, जॉन, राजेश्री, और अंतिश सीचन, बेनी सुनील, हुसैन, जया, निर्मला बाई, वसंती जोदू, सेवियर एंजल, माला चिनन, आरती। और जितना कोई अभी हमने के टिकटॉक पर देखा था, हमने के सुना था और रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर हमके साथ देवाते हुआ था, चले एक साथ नाचे दुल्हन के दादी के संगे, दुल्हन भी नाची, दादी भी नाची, और हमनियों भी संगे संगे नाचप सा।

0: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस, रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन के एक साल हो गल जिनों एमबीसी के रेडियो चैनल है जहाँ पर हमने के चकाचक प्रोग्राम चले रहा और हमने के जितना श्रोता लोग हमने के अभी देखा था टिकटॉक पेज पर, रेडियो पर सुना था, बहुत बहुत धन्यवाद है दुको रेडियो के नंबर वन स्टेशन बनाए खातिर। और हमने के जो रेडियो डायरेक्टर है नर्मदा जी, ओके भी धन्यवाद कि है दुको चैनल खोल लग बा सब मॉरिशन लोग खाते, दुनिया भर के लोग खाते जितना कोई संगीत में दिलचस्पी रखेगा। सो हैप्पी बर्थडे रेडियो मनोरंजन, हैप्पी बर्थडे रेडियो मॉरिशस, एक साल हो गया। तो लोग के आशीर्वाद, तो लोग के प्यार से इसी साथ देते रहे, नचते गई रहे, अब सब कमर भर डुलाइती रहे। अब सर अगला गीत गीता का ज्यादा बोला तो आई लव यू बोलेला है गी देवन नदी वाला जी के नाम आप होवन वैनकूवर कनाडा से गीता हमके साथ देवत होवन। और है गीत करण भवानी राज

फिर लिंबू, रेशमी बंधु, विजयलक्ष्मी दिया, जयवंती बीपत, वनिता मोहिपत, निर्मला रमन, हेमा धनु, आशा सबरना, इंदिरा नौबत, प्रकाश भगवत बिहारी और जितना कोई भी हमके साथ जुड़ल बा, देखा तो वन सामने के टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर श्याम बेकर जी और देवन नदी वाला बोलाता है प्रताप जी आज तो मस्त के मूड में नाचे तो हाँ जी हम तो नचते गए रहेला और तुलो के भी नचाईला गवाईला आई लव यू बोले अब के आई लव यू बोलता है बाप भी है आई लव यू ढेर से नहीं सुनने हाई तैगी चली प्रतिमा टीना दीना सी शंकर गंगू व्यापेन अपाया सहजू गोसाई केत एडू और सेंट थॉमस एसएस कॉलेज के सब स्टाफ वहाँ के डायरेक्टर ने और सब स्टूडेंट्सों के नाम सत्यम सनु है गीतोरों नाम मुकेश और सूरज गंगा सब सिरोतन परिवार के नाम विशाल विशेषर उकर पत्नी उकर बेटा और सब विशेषर परिवार के लिए आप हवन लाफ्लोगा से वरुण लक्ष्मी सिबरत अब लाफोंस में हवन और हमने के साथ दुआ थवन अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से रंभा की ओर से उकर पति उकर बेटी और सब उकर परिवार के नाम जोन लास्विस में हवन सा तो चला भी कमरवा डोलाओ आई लव यू बोलेला आगे कौन सी बोलेला चल एक साथ सुने

0: शादी के पहले तो ये सब बड़ा बड़ा बात बोला था ला मुगाते बोलेला मुकोता बोलेला मुलड्डू तो मुसी रोजाना तो शादी के बाद कहा जा रहा हो और संगतिया लोग भोजन बनाए के भोजन तैयार करे के एगो कला है कुकिंग इज एन आर्ट और ये समय लगेला खाना पकाए के पर खाना अगर प्यार से पकाई बता सब कोई जो है प्यार से खा रहा पर हाथ से जो खाना तू बनाई वो एकदम अच्छा रहेगा कह के तू जन में कितना नमक कितना तेल डाला था वह और आसान बा खाई बनाए के अगर नहीं जाता सोशल मीडिया पर जाइए यूट्यूब पर जाइए टाइप करिए कैसे चला खाना बनाए के और हर प्रकार के खाना बा वेज नॉन वेज बा और अपन हाथ से एक दिन पका के देखे था बम की बोलिया और जेंडर पर नहीं आधारित था पुरुष से दोनों से खेला पकाइए दोनों के कहे जब दोनों जना खा रहा था दोनों के छा पकाए के भी जाने खाए नहीं एक जना खाई पकाए एक जना खाई खाई तो एक संगत लाइन पर कैसे मिले कल्याणी बॉस अगर से हेलो कल्याणी
1: नमस्ते
0: कैसे समाचार
1: अच्छा है
0: ढेर दिन के
1: छह दिन से बचाते हैं
0: ढेर दिन के भाग
1: सबसे अच्छी है हमारे बोले जैसे जे हो रहा ना हमारे भाई
0: आयो मामा बफासिल नहीं बारा
1: भी हाँ हाय जीता का देख किसून आ आंधी
0: हाँ तो राजू ढेर जोर डाले वह गंती कमती कर दे प्लीज राजू को बोले मध्य हम कह बोले हैं राजू आ कमती करे के बना नहीं सकब से बताए माफी चाहता है पर जब धरो राजू जो से हम की कान ये कलाती होला प्लीज और आगे की चलावत है इस मनीता जी के नाम मनीता जी है गी तो हर खातिर आगे चली तो हर माँ सुमंती बहन आरती सचिता बबीता रेखा भाई सत्यम भाभी उषा और यादव और केशा खातिर और हे गीत हमने चलावत इस विश्वानी दुमन के नाम आप हिरन वाकवा और गीत चली कर बहन इंदिरा शारदा सहरी नीला प्रतिभा शोभा और सब संगतिया के नाम और हे गीत तो हमने चलावत इस प्यार से शालिनी हीरू के नाम आप हवन नाफलोगा से और गीत कर घरोला विशाल कर दुगो बेटी कर भाई कृष्णा और सब हीरू परिवार के नाम लावेनिया सैंपिया से आफेज हवन कैसे बाफेज एक गीत और नाम रोजीदा हवन हाईलैंड से हाय रोजीदा फीलिंग से रिहाना हसन अली हमने के सादे वन और बहुत प्यार से उनके सुनत हवन भाई आबू हवन बाकवा से और भाई राफिक मोहित हवन तायाक से तो चल एक साथ सुनने हैं गीत थोड़ा जी ले थोड़ा गा ले खाली काम नहीं करिए था सुन गमटो करिए था सुन नचिया गैया जिंदगी के मजा लिया कहे कि दो दिन के जिए के बाद कब कब वो इतना समय बीत जाला कि हमने के पता भी नहीं चला कि कब उम्र बीत गया और चल समय चला वाला दुनिया से जाए कि तो जब ले जी अब से थोड़ा सुन गमट करिए नचिया गैया जब तुम्हारा मूड हैप्पी रही तू हैप्पी रह खुश रह तो सकब और कोई के खुश रखे पर तुम्हारा मूड भी नहीं अच्छा रही तो कैसे कोई के खुश रखब तो अगला गीत चली धुरंधर खातिर माला खातिर मालावन बबासा से राज मुक्ता ने गीत थोड़ो खातिर दिवसा काजिमी है गीत थोड़ो नाम अंजू अंजू को लिख के अभी जाकर रहता टिकटॉक पर बहुत धन्यवाद

बहुत ही प्यारा इमोजी है लिखे दिल क्या बात है। और कल्याणी बाशी से अवन बहुत प्यार से इनके सुना था वाले गीत और नाम कल्याणी जब टेलीफोन कर तक हाजवा के वॉल्यूम कमती कर दिया वरना बात नहीं सकम सकल चले साथ सुने थोड़ा जी रे गीतवा एक बहुत ही मस्ती भरा गीत है गीतवा गलेवन मोहम्मद खालिद बंधु और गीत सब श्रोतालों के नाम सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगतिया के नाम।

भोजपुरी हमने की भाषा है हमने की धरोहर है और आई बरिस 26 सितंबर के लगी द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में रात के 7 बजे से और इकर होस है अनविदिता और मां कवनीश और आई जुन है कॉन्सर्ट वा चली इस सब कलाकार के साथ रंभा राम तो है नीरज गुप मधु किशोर खिमिया कुणाल हिरीलाल रोशन सदा सिंह कृषि मोनिक और डीजे जोवारे है नील स्पाइकी डीजे वकील डीजे अभी और डीजे अनी और प्रीसेल टिकट है 500 रुपया और डो पर है 700 रुपया तो जरूर आइए जाए जलसा की रात है फर्स्ट लाइव भोजपुरी कंसर्ट रही मॉरिशस में लिवेंसिस सप्ताह के तब भूले नए परिवार के साथ लयकारों के संग सबको यह जग गमट करे हमने के संग त्या कुणाल हिरीलाल वहाँ पर रही हमने के नचाए हमने के गवाए तभी ओकरे आवाज़ में चला आपसे गीत जोली छोकरी से प्यार करी रहा और एक गीत चलावती से आत्माराम जी के नाम हेलो जी आत्माराम है गीत तोहर खातिर दीपा तिवारी दुखित जो कनाडा में हुआ आजकल मॉरिशस में हुआ है गीत तोहर खातिर तोहर पति केविन तोहर बेटा और तोहर सब दुखित परिवार के नाम तिवारी परिवार के नाम टीना बुदना रहरन दबेल है गीत तोहर खातिर तोहर घरुला तोहर दुगो बेटी और सब बुदना परिवार खातिर और है गीत चलावते ऐसा जितना कोई रात के भी हमने की सुनाता है बहुत बहुत प्यार से टिकटॉक का पेज समाप्त होकर कहे कि छाज फिनी होगल कोई बात नहीं अभी रेडियो पर हमने तो लोग के साथ रात के 11 बजे चला गीत सुना जा जोड़ी छोकरी से प्यार करी जा

0: 819 kilohertz. This is
1: Radio Marches. Radio Marches.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
4: रात के 10:10 हुआ बार दूसरा तो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। रेडियो मनोरंजन FM मोड पर और रेडियो मॉरिशस AM मोड पर। इन दोनों चैनल MBC के रेडियो चैनल है जिन मौका से प्रसारित हुआ था। और जी प्रताप सिंह सितालू के साथ भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे रे। और संगतिया लोग आजकल बॉलीवुड में जो है नया नया मूवी आई कि बा हाई सीमेंट के जो है उत के महीना समाप्त हुआ था और हाउस में से सितंबर के महीना शुरू हुई तो ढेर मना फिल्म रिलीज हुई के बाद जैसे कि मिर्जापुर हैवान दायरा वाइब भारत देश है हमारा इवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की और बेशक है सब जो फिल्म है ये सब फिल्म उत की फिनिशों या सितंबर की शुरुआत में इस फिल्म बड़े पर्दे पर मॉरिशस में भी सब जाए देखे तो याद रखे जा फिल्म के नाम मिर्जापुर हैवान दायरा वाइब भारत देश है मेरा व्यान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट और महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की। और मिर्जापुर में तो देख पंकज त्रिपाठी अली फजल और दिवेंदु के। हैवान में देख अक्षय कुमार सैफ अली खान श्रेया पिलगांवकर और सैमी खैर के। दायरा में दिख करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन के। वाइब में दिख कुनल केमू प्रीति जिंता के और इवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया और महाकाव्य श्री राम कथा श्री राम के सन देओल रणबीर सिंह और ढेमना कलाकार है ये रामायण की जो है फिल्म रही। तो ढेर कोई खुश सिनेमा जाए कि फिल्म देखे के बड़ा पर्दा पर फिल्म देख रहा है कोई दूसर एक्सपीरियंस हो कि नहीं। और रात के 10:12 होता हमें जाने से तो लोग जो है बहुत प्यार से उनके सुनत हो जाए और जितना कोई काम करता अभी बों को खाज और आजकल तीसरी तिमाही चला था ख्वाजम टेम चला था लड़का लोग अपन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे हुआ था उनसे अच्छी बात बात खासकर घाट नफ घाट ओंस घास घाट थैज घाट नफ यानी कि फॉर्म फ्री घाट ओंस फॉर्म सेंक और घाट थैज एच एस सी तो ऐसे बड़ा एग्जाम्स है लड़का लोग छी मन से काम करेंगे ताकि रिजल्ट अच्छा हो तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया जाए। कितना समय रगल बा एक महीना ने रगल बा रिविजन कर बाद जो है एग्जाम्स ऑल द बेस्ट गुड लक हमने के शुभकामना तो लोग के साथ बा निमन से काम करिए और अपने माँ बाप के नाम रोशन करिए। गीत गवायु में चले के बाद चलो गए चंदा बीच में होती संपत्ति गीत वगैरह वन और एक गीत हमने चला होते सब प्यार से नेहा खातिर फिर डॉक्टर अंजू के शुकर मंगेतर और सब परिवार के लिए और है ये गीत चाहो जी सरेहाना जो नहर नोत्र दाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत चलाओ तो ऐसा रोशनी के और शेकर घरोला को तीन गो बेटी और सब परिवार के लिए और है गीत चली MGI कॉलेज जो मौका में स्थित है वहाँ के सब स्टूडेंट्स अध्यापक रेक्टर और वहाँ के डायरेक्टर के नाम भी चले एक साथ सुने गीत गवायु में चले के बाद चलोगे चंदा

ये दुनिया में अगर डर के चाहते चाहे भगवान से डरे के कहे ओका से बड़ा दुनिया में कोई नहीं भाई भगवान वे हमने के माता पिता हमने के संगचाय खाती वैसा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव कि भगवान तू ही हमर माता पिता हुआ तू ही संगचा हुआ तू ही सब हुआ और भगवान के जब पूजा पाठ करी जा सकता हमने के शरीर छना पवित्र मन भी छना पवित्र हमने के वचन भी छना शुद्ध रहे के तब भगवान तो घर में वास करी और भगवान के मर्जी के बिना को पत्ता भी नहीं हिलेला और जो भगवान चाहेला वही होला दुनिया में हमने ढेर कुछ योजना बनाएला सर कि हाई करप सर हाउ प्लॉन्ग करप सर पर जो भगवान चाहेला अंत में वही होला हो कहती बाय गो एगो कहावत बना वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है तई कहावत सच है भगवान के मर्जी के आगे कुछ भी नहीं सकेला हुई तो हमेशा याद रखिए कोनो भी काम करते हुआ कोई के फौसे नहीं करिया कोई के दिल नहीं दुखिया कोई के करा बोली नहीं बोलिया तू सकब ढेर पूजा करे दान करे पुण्य करे पर अगर तू एक व्यक्ति के दिल दुखा दिला या कोई व्यक्ति को बात बोल दिला वो रो दिलक तो थोड़ा सब पूजा व्यर्थ में चल जाए तो हमेशा याद रखिए कि कोनो भी बात बोले से आगे कोनो भी काम करे से आगे सोचिए एगो भगवान बा और भगवान सब देखता जितना हमने कर्म करेला सर हर कर्म के फल मिलेगा अच्छा कर्म करब तो अच्छा फल मिली बुरा कर्म करब तो बुरा फल भी मिलेगा और चेला भोगे के यही धरती पर यह परी स्वर्ग है यह परी नर्क है तो कोनो भी काम करे से आगे कोनो भी बात बोले से आगे अच्छी तरह से अपन मन में डालिया कि दुनिया बनाई होला रचनाकार भगवान है और वो सब देखता वो सब टिप्पणी करता के का बोला था के कौन सी करता और एक दिन परी जो है ऐसा के अथी करे कि जब अंत समय में आई तो भगवान तौर से पूछे कि हाई वक्त तू का कर ले रहा के का बोल ले रहा तो कोनो भी काम करे से आगे कोनो भी बात बोले से आगे अच्छी तरह से सोच समझ के बात करिया सोच समझ के काम करिया कहे कि जो करने के जो जितना हमने काम करे ऐसा कर्म करे ऐसा ओकर फल जरूर मिलेगा तो भगवान भी तो कर्म करेला सृष्टि बनेला बा फजीर के घाम उठेला सांप के घाम सुतेला और एगो लिया पानी बरसेला एगो लिया घामा रहे थे सब भगवान के बनावल चीज है और भगवान के आगे इंसान कुछ नहीं सकेला करे तो हमेशा याद रखिए कोनो भी कर्म करे से कोनो भी बात बोले से आगे भगवान के नाम लिया जा चल ऐसा में सुनब जाएगो प्यारा सन गाना गीत तो आप बोलता हम कैसे जब तो हर बिना कब कब प्यार में से हो जा कि तू कोई के ढेर बना प्यार करे रहा और व्यक्ति तो हर दिल तोड़ के चल जा चला जा रहा दूसर को संगे तो हर दिल रोवेला अरे वो नहीं कोई और से कोई और नहीं तो कोई और से ही अब ओके सोच सोच के रोबा तो डिप्रेशन में पड़ जेबा उदास हो जेबा भुला जा वो तो हर तू खुशी रहला वो तो हर दिल तोड़ के चल गल कोई बात नहीं सकेला भगवान ओकर से जोड़ी व्यक्ति तोहर खातिर रख लग बा दुनिया में और जे भी दुनिया में आल बा ओ लोग के जोड़ी कहूँ न कहूँ अवश्य बनल बा कैसे जी अब कमला गणेश के आवाज़ में गीत चलावत ऐसे गीत चली सब हर को परिवार के नाम आप रहलन महाराणा प्रताप ले त्रियोलिथोबिश जीराखंड परिवार कलकतिया परिवार त्रियोली से और है गीत रतन निहाल के नाम हवन गौबे से पापा विजय पत्नी करुणा और सब परिवार के नाम शैलेश महावीर है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर दुकुरेका तोहर पिताजी जीवन सब महावीर परिवार के नाम माया महावीर है गीत तोहरों नाम प्यार से

संगतिया लोग ट्यूमर से सहमत हुई बचा कि आज की दुनिया में पैसा के बड़ा ही बोल बालाबा दुनिया भर में पैसा पैसा पैसा जहां भी देखो आदमी पैसा के पीछे भागता भागता और ये पैसा जो है ऐसे ने कुछ चीज है जिकर बिना कोई नहीं सकेला रहे और पैसा खातिर इंसान सकेला अपने आप के भी बेच दे इतना जरूरी है पैसा और पैसा जो है आज के आधुनिक समाज में कर बहुत ही योग्यता बा और पैसा चहला पैसा नहीं रही तो कोनो भी काम नहीं सकबा करे जी नहीं सकबा भाई बेसिक नीड्स है रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान के चहला और पैसा नहीं रही तो न रोटी मिली न कपड़ा मिली न मकान मिली और हमने कहे काम करी रहा सपन परिवार के अपन लड़का लोग के पालन पोषण करे खातिर तो मेहनत और लगन से काम करिए पैसा कमाइया पैसा रही तो सकबा ढेर भोगे करे पैसा नहीं रही जेब में भैया तो कोई तो हर हाल नहीं पूछी पैसा अगर तुहर पास है तो बोले हेलो जी कैसे हो और जगह लगे पैसा बस सबको ओकरे गदाने रहा सबको आगे पीछे घूमेला पर

दोन दिन पैसा फिनगल भैया त जानी रहा कौन छोला त जोन पैसा है बहुत जरूरी है और ढेर कोई खुशी रहेला मिलियनियर बने के करोड़पति बने के जैसे अंबानी है मुकेश अंबानी जो ना भारत के सबसे धनी व्यक्ति वा इतना पैसा वकर लगे आ हा हा सोने पे सुहागा वाली बात काश सब कोई मुकेश अंबानी की तरह रहत तो हर घर में नौकर चाकर रहत बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला ऐशो आराम की जिंदगी ओए होए हमने ये थोड़ा सपना दिखा होते इसे सपना ही सपना सकेल हकीकत बदले अगर तू मेहनत से काम कर बा लगन से काम कर बा तो एक दिन तोरो लगे ढेर मना पैसा रही तो चले गीतवा समझा पैसा के पीछे ना भाग हो चंद्रदेव चुबुदन गीतवा गई रे वन और एक गीत चलावते इसे हमने विष्णु के नाम विष्णु के उसकर पत्नियों को डुगुलई का सब परिवार के नाम आप हवन राम लखन परिवार कौतवल से प्रणव दुखन है गीत और खाते तो और पत्नी तो लड़का लोग खाते साथ में है गीत चलावते इस इंदिरा चिंताराम माता जी इंदिरा चिंताराम के उसे बेटा अजय बहु पूनम बेटा चंदन बहु प्रिया बाल गोपाल सलोनी और सब चिंताराम परिवार के नाम और जितना कोई भी हमने के साथ हुआ था अभी रात के रेडियो मॉर्शस रेडियो मनोरंजन पर गीत लोगों के नाम पैसा के पीछे ना भाग हो

तो पैसा के पीछे भगते भगते उम्र गुजर जाला और सब कुछ छोछार के परेरा जाए के धन दौलत बैंक बैलेंस नौकर चाकर सब गिरा जाला खाली हाथ आला वैसा खाली हाथ जाए बस पर जब ले जी बस पैसा चहला अपनी बात कर अनार फल के बारे में और अनार एगो एगो स्वादिष्ट और पौष्टिक पौष्टिक फल है एक अंग्रेजी में पोम ग्रेनेट बोला जला अनार के दाना लाल रसदार स्वाद में मीठा खट्टा भी रहेला और अनार में पावल जला ये सब पोषक तत्व अनार में वा विटामिन सी शरीर के सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली खातिर अच्छा विटामिन के शरीर के कई सामान्य प्रक्रिया में शरीर के इधर करेला विटामिन का फोलेट बा कोशिका के सामान्य वृद्धि या विकास में मददगार रहेला पोटाशियम बा अनार में पोटाशियम पोटाशियम शरीर के सामान्य मांसपेशी और तंत्रिका कार्य में भूमिका निभावेला फाइबर बायकर में पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेला और एंटीऑक्सीडेंट बा यानी कि अनार में पॉलीफेनाइल जैसन प्राकृतिक यौगिक भरपूर मात्रा में होला दिल खातिर बहुत अच्छा है जिन व्यक्ति लोग के दिल के बीमारी रहेला तो वो लोग से कैंसर अनार खाए उ दिल के जो न रक्त संचार में मदद देवेला और जो न दिल के अच्छा है पाचन खातिर डाइजेस्टिव सिस्टम अनार के पूरा दाना में फाइबर होला पर्याप्त फाइबर वाला भोजन पाचन के सामान्य रूप से ठीक रखे में मदद करेला और शरीर के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला तो है अनार जो है कैसे खाल जला सकबर कर ताज़ा दाना निकाल के खाए फल के सलाद में डाल के खाए दही के साथ भी खाल जला ताज़ा रस के रूप में भी पियल जला पूरा दाना खाए पर फाइबर भी मिलेला जबकि रस में फाइबर बहुत कम हो जाला बाजार के बहुत मीठा सा अतिरिक्त चीनी वाला जूस के बजाय बिना अतिरिक्त चीनी वाला विकल्प बेहतर होला त अनार जो है स्वादिष्ट है पौष्टिक है और एंटीऑक्सीडेंट बा विटामिन बैकर में और संतुलित भोजन में अच्छा खाए के और अनार जो है इस स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक रहेला वो चाहे लड़का हो बड़ा आदमी हो जिनेस हो त्रिलोक सकबस अनार रोज के को अनार खेब तथा लासों एकदम टकाटक रही

गणेशन हरि के गावल हरि गीत खोज खोज खोज के संगे ही भोजपुरी दर का प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभिलेम के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कैसे मैं सर फोन कॉल करती धन्यवाद और हमके टिकटॉक पर देख ला रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमकी सुन ला शुक्रिया। रात के 11 बजे सुन बजा गिनीशा से सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 11 से 12 बजे सुनहरे पल और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों की मुलाकात हुई कल मंगलवार की रात के 8 बजे से 11 बजे ले 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। आज लिखा प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का तक कल तक हमने की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ Wishing all of you a very good evening. Namaskar और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेडियो मॉरिशस पर. हाँ जी, आपका अपना पसंदीदा शो सुनहरे पल में. वैसे जिंदगी की भाग दौड़ में अगर दिल को सुकून देना हो तो पुराने बॉलीवुड के गीतों से बेहतर और क्या हो सकता है. तो चलिए मिलकर यादों के उस हसीन सफर पर चलते हैं जहां हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक खूबसूरत सा एहसास. आपका अपना सुनहरे पल गिनेशा के साथ.
1: दीवाना

दिल को सुकून देने वाले गीत, जी हाँ दोस्तों, और यादों से भरे लम्हे, बस इसी का नाम है सुनहरे पल। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। आज फिर बजेंगे वो गीत जो कभी हर घर की पहचान हुआ करते थे। बिल्कुल दोस्तों, हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर हाजिर है ऑन रेडियो मॉरिशस, आपके सुनहरे पल में।

वैसे आज की रात को यादगार बनाई और उन गीतों के साथ जो आज भी दिलों पर राज करता है, ये है सुनहरे पल। यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान। जी हाँ, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए, हमारी तरफ से आपके नाम।

संगीत का वो दौर जहां दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, तो चलिए उसी दौर में चलते हैं सुनहरे पल के साथ। दोस्तों, हर गीत एक रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा भी रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल में।

अगर आपको पुराने गीतों से मोहब्बत है मेरी जान तो ये महफिल बिल्कुल ये महफिल आप ही के लिए है। साथ रहिए और गीतों का मजा ले लीजिए। पुराने बॉलीवुड संगीत का जादू आज फिर बिखरने वाला है, सो दिल खोलकर सुनिए और यादों में खो जाइए, क्योंकि ये आपका सुनहरे पल हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके दिल को बहलाएं और पुरानी यादों में फिर से खो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं आपको।

जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ देने के लिए। तो बस यूं ही गिनिशा का साथ देते रहे। मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हो, मॉरिशस में हो, मॉरिशस के बाहर हो, काम पे हो या घर पे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं से भी मेरी जान आप साथ दे रहे हो। तो ये अगला नगमा स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट आपके दिल तक। तो चलिए ये आपके नाम

दोस्तों, वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल, हम भी इस बात को मानते हैं क्योंकि वो गीत तो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते फिलहाल के लिए इस वक्त होगी निशातू से गुड बाय। हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बाखैर।

0: आपके साथ।
1: अक्कन की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: एबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं कर